सिदक सबर की लड़ाई जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वर गला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, इत्थों तक आखिया कि तुहानूं पी

कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर, बाणी विच महाराज कहते हैं कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए, बड़ी कोशिश की इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते। इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान किया है

चमकदा नूरे मुहम्मदी चमकदा आया, नूरे मुहम्मदी चमकदा आया, अर्श फरश ते चानन लाया, अर्श फरश ते

सभी को प्यार आ गया। आया इसी दिन अहमदे मुख्तार आ गया, और घर आमिना के सैयदे अबरार आ गया। खुशियाँ मनाओ गमजदो, गम खा

गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्राडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official Media Partner, Sunrise Radio.
5: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
6: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
5: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
6: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
5: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonaz Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news, the been beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन beautiful गानों को और enjoy कीजिएगा इस beautiful start Sunday morning की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
4: ऋषि's Vision presents आनंद उत्सव with आनंद मूर्ति गुरुमा in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

Welcome back on for the classic flashback. Williams and Rise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. दिस इज एवी दिस साइड. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और वंस अगेन अ बिग बिग बिग गुड मॉर्निंग टू यू. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी। नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना, कानस लाने ना 1 पौंड। छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165, Raman 078 341778666, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन एसएमएस वीडियो 103.2 एफएमएल राइट नाउ. मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार व्हिच इज आफ्टर द न्यूज, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: हुसैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
4: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
5: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord You can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज़ ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है।

0: जो कि 103.2 FM स्टेडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने-कोने में सुनाई देता है और 100.6 FM पर भी आप पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुन सकते हैं। अगर आप DAB पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीथले, लिकली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों प्यारी सी अनाउंसमेंट आपके लिए, द सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून, celebrating their businesses, organizations, venues and artists you love. Voting will be exclusive to Listeners Club members. So join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: ये दोस्तों अभी आपने कुमार सानू की मत भरी आवाज में बहुत ही प्यारा सा हिट ऑफ द आवर की शक्ल में गीत सुना। फिल्म का नाम था प्यार हुआ बदनाम। तो जनाब इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:16, यानी कि 16:11, और कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा। चौधरी मुजफ्फर साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके, और आप अपने तमाम दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं, तो उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के बाद जो कमर्शियल के बाद जो गीत होगा वो आपको और आपके दोस्तों को जरूर पसंद आएगा। उसके बाद तनवीर अख्तर साहब, आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, और आप अपने दोस्तों के लिए स्पेशली तारिक ज़ुल्फ़ी साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो उनके नाम भी होगा। तो चलते हैं, आप दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत होगा, और ये गीत हमें ले चलेगा जनाब क्या कहते हैं उसको, उन यादों में जब आदमी की कुछ इस लिहाज से उम्र होती है, प्यार होने का ख़तरा होता है, तो उसके लिहाज से ये गीत है जनाब कि कई दोस्त डरते हैं प्यार होने से, उन्हें प्यार ना हो जाए, लेकिन जब प्यार हो जाता है तो वो कुछ देखता नहीं, हो जाता है बस। तो ये उदर नारायण और अलका यग्नि की आवाज़ों में आप दोस्तों के लिए गीत होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। कमर्शियल के बाद गीत होगा।
2: You're listening to Sunrise Radio.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
6: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों इसके साथ ही हमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, कमर्शियल का टाइम भी हो गया है। कमर्शियल के बाद अजीब चौहान साहब, आपने काफ़ी फ़ोन किए, मदद चाहते आपसे बात नहीं हो पाई, तो जनाब आपके नाम गीत करेंगे आने वाला, और आपकी जन्म से आपके तमाम दोस्तों के नाम, स्पेशली चौधरी फरियाद साहब और चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब जो है दीगर दोस्त उनके नाम, और आप सभी सुनने वालों के नाम। और उसके बाद जनाब जरीना साहब, आपने भी फ़ोन किया, अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, आपके नाम भी करेंगे। मुना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

अभी आपने अनुदा पडवाल और अमित कुमार की प्यारी सी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और अयूब चौहान साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी पसंद का एक गीत तो जरूर हम प्ले करेंगे, थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा। और इसके साथ साथ ये गीत तमाम सुनने वालों के नाम करूँगा जो इस वक्त सन रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।

0: जी दोस्तों अभी आपने प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और नदीम मंसूर साहब बहुत शुक्रिया फोन करने का जनाब, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, बात करके अच्छा लगा। अय्यूब चौहान साहब आपका भी शुक्रिया जनाब। और अय्यूब चौहान साहब आप जो गीत है वो मैं नहीं प्ले कर सका, लेकिन क्या है कि अब कमर्शियल के बाद जो गीत होगा बहुत अच्छा गीत है, जैसे आप है ना तो ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए वो गाना भी ऐसा ही होगा कि जैसे आप हो ऐसा कोई भी नहीं। तो जनाब उम्मीद रखता हूँ अय्यूब चौहान साहब आप इस गीत को पसंद करेंगे। और उसके बाद नदीम मंसूर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज टाइम नहीं था आपसे पूछते, क्योंकि हमेशा आप फरमाइश करते होते हैं, लेकिन क्योंकि गाना ख़त्म होने वाला था और जल्दी में फ़ोन रखना पड़ गया, इसलिए आज आपकी फरमाइश तो नहीं पूछ सका मैं। लेकिन जो आने वाला गीत है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में है, सारे शहर में आप सा कोई नहीं। तो जनाब यकीनन आप दोस्तों को ये गीत पसंद आएगा। और एक और गीत था जो मैं प्ले करना चाह रहा था, मन कर रहा था वो भी सुने, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, मुकेश की आवाज़ में। तो चलिए कोशिश करूँगा ये दोनों गीत आपके लिए प्ले कर दूँ, अगर नहीं तो एक दो अब प्ले करूँगा ही, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, क्योंकि अय्यूब चौहान साहब आप सा कोई नहीं जनाब, सारे शहर में पूरे ओल्डम में आप सा कोई नहीं जनाब। तो आप के नाम वो गीत करेंगे और आपके साथ साथ जनाब अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे और चौधरी मुजफ्फर साहब स्पेशली आपके नाम करेंगे, आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम करेंगे, और उसके बाद जावेद मीर भाई के नाम करेंगे और जनाब सफ़ीउल्लाह भाई के नाम करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले टाइम चेक कर लेते हैं जनाब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:45 है, यानी कि 45 मिनट्स पास्ट 11। फैंसी अ बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर। सो प्ले नाउ एट sunrise.radio एंड जॉइन द फ्री सनराइज लिसनर्स क्लब टू अनलॉक इवन मोर। तो चलते हैं दोस्तों अब कमर्शियल की जानेब, कमर्शियल के बाद दोस्तों प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और याद रखिए इसी आवर में डेडिकेशन है, 12 के बाद जो 2 घंटों का सफ़र होता है वो लाइव कोर्स का होता है, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो मदद चाहते हैं इसी गीत को, पाकिस्तान मीर पर शहजाद आप सुन रहे हैं और आप जनाब आसिम भाई ओल्डम में उनके नाम करना चाहते हैं गीत। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: And improve their home at the same time. Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
2: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा, आशा भोसले और मोहम्मद रफी मरहूम की आवाज़ में। तो अब मैंने गाना लगाना था जनाब कोई और, लेकिन अयूब चौहान साहब की पसंद पे ये गीत सुनते हैं जनाब, तो एंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं जनाब। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी जनाब इस आवर में अगर गानों का मौका मिला तो अच्छे गाने प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो अब जनाब जो प्रोग्राम होगा वो लाइव कॉल्स का होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो ये सिलसिला प्रोग्राम के आखिर तक यानी कि 2 बजे तक चलता रहेगा। अगर आप भी शायरी का शौक रखते हैं या गीत गुनगुनाने का तो जरूर आइएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों प्रेम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त संडा रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: Hit of the Hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने साधना सरगम और बाबल स्प्रोयो की प्यारी सी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13, यानी कि 12:13, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। और कमर्शियल के बाद, जैसा कि हमने कहा, हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब, आयू चौहान साहब ओल्डम से और एम खान साहब ब्रेडफोर्ड से। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद इन दोस्तों से मिलते हैं।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
4: 24 hours a day.
5: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम कमर्शियल पे जाने से पहले कहा था कि जनाब हमारे साथ ओल्डम से जुड़े हुए हैं अयूब चौहान साहब और ब्रेडफोर्ड से एम खान साहब। तो चलते हैं ओल्डम में तालियों की गूंज में, जहाँ जनाब अयूब चौहान साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। अयूब चौहान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, ठीक हैं आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
6: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने क्या जबरदस्त आखिरी दो गाने लगाए, दिल गार्डन गार्डन हो गया।
5: गार्डन गार्डन हो नहीं था ना, आपने पिछले आवर में जो आखिरी गीत था वो तो आपकी फरमाइश पे था।
6: हाँ, वो क्या के प्रेनिका चोपड़ा की फिल्म थी, अंदाज उसका था जबरदस्त, उसने काम किया था। तो वैसे किसी जमाने में प्रेनिका चोपड़ा की फिल्म आती थी तो मैं कभी मिस नहीं करता था।
5: अच्छा,
6: अच्छी अदकारी करती है।
5: क्या बात है, और कोई एक्ट्रेस नहीं, खाली प्रेनिका चोपड़ा ही है।
6: नहीं, आपको पंगा लेने की कोशिश ना करा करे, अदकारी की तारीफ में कर रहा हूँ। तो खैर, उसके बाद जो पहला था सारे शहर में, तो सारे शहर में के क्या, मुझसे बड़ा भी एक है, मेरा जिगरी दोस्त है अफजाल खान।
5: अफजाल खान, और वो तो है, वो उसमें कोई शक नहीं है जनाब। लेकिन एक और आपके दोस्त हैं, पता नहीं क्या जादू कर दिया उन पे भी आपने, वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी, बोलते हैं बस यार दोस्त हो तो ऐसा ये तो वो, पता नहीं। मैंने बोला कितनी, वो चौधरी मुजफ्फर साहब हो सकते हैं और कौन हो सकता है?
6: चौधरी मुजफ्फर, हाँ वो उनके साथ बड़ा अरसे से लगाव है ना, जब
5: इसीलिए नहीं, अभी पहले भी लगाव था लेकिन अभी मेरे ख्याल में कोई पता नहीं क्या बात है कि वो तो गुण गा रहे हैं आपके।
6: नहीं मैम, वो कहते हैं ना कि साढ़े ना रोगे तो ऐश करोगे।
5: वो की ऐश कर देने बेचारे, वही तो ब्रेडफोर्ड बैठे, तुम ओल्डम बैठे हो।
6: तो आपको भी हमने बहुत दावत दी है लेकिन आप हमारे साथ,
5: मुझे पता है ना, मुझे पता है चाय की प्याली भी घर से लेकर आनी पड़ेगी, तो फायदा क्या है, इधर से चाय उठा के उधर जाऊँ अयूब चौहान के पास, और फिर
6: घर से नहीं लानी पड़ेगी, वहाँ पर चाय वाली दुकानें बहुत सारी हैं।
5: अच्छा,
6: किसी जगह पर मैं ले चलूंगा।
5: अच्छा अच्छा,
6: वो क्या के
5: बुला घर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि किसी चाय की दुकान पे जाके चाय पिलाएंगे।
6: तो आप घर से लाएंगे तो बेहतर है, दुकान से वो स्पेशल चाय,
5: दुकान से पीनी हो तो यहीं पी ले ना, वहाँ इतना खर्चा करके ओल्डर में आने का क्या फायदा हुआ।
6: तो मैंने आपको कब बुलाया कि तुम ओल्डर में?
5: आप कितनी बार तो कह चुके हैं, आने कह चुके हैं आप कितनी बार। आप आते नहीं आते नहीं है
6: नहीं आते आप आते हैं मुझसे मिलते नहीं है ना मैं ये नहीं कहा
5: अच्छा अच्छा
6: आप आते तो आप तो आते हैं आपके यहाँ चाहने वाले बड़े
5: नहीं मेरी तो बहन वहाँ होती है नहीं मेरी बहन वहाँ होती है वहाँ तो हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते में जाना होता ही है मेरा एक ही बहन है मेरी
6: आप मेरे घर के नजदीक से
5: तो मुझे पता होता है ना वहाँ टाइम वेस्ट करने वाली बात है वो बुक उठा लेंगे कुछ शायरी की शायरी शुरू करेंगे तो वो वहीं शाम हो जाएगी
6: अच्छा चलो ठीक है आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही सही तो ये तो बात थी तो खैर क्या कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त बस यही कहते हैं कि आप हमारे साथ आप भी हमारे साथ रहा करें तो फिर बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाएगा
5: अच्छा
6: तो चौधरी नदीम मंसूर साहब जब उन्होंने गाना गाया था ना चाय का जिक्र किया तो उसी दिन मैंने टोन में जाके वो चाय पी थी कश्मीरी चाय इतना दिल कर रहा था मेरा
5: क्या बात
6: तो उम्मीद है आज कोई खाने की बात ना करेंगे
5: क्यों फिर खाना खाने जाना पड़ेगा
6: हाँ कुछ स्पेशल खाने भी होते हैं ना
5: अच्छा अच्छा अच्छा
6: तो ठीक है जी सबको हमारी तरफ से चौधरी मुसफर साहब को चौधरी फरियाद साहब को हीरा साहब को एक और साहब भी हैं वो जितनी भी आपकी सनराइज की फैमिली है सबको हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम
5: सही
6: तो मैं शायरी शुरू करता हूँ
5: जी जरूर
6: समुद्र में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह क्या बात है
6: तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह यूब साहब
6: तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छीन गई जब से कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह वाह क्या बात है
6: तेरी यादों की खुशबू खिड़कियों में रक्स करती है
5: वाह
6: तेरे गम में सुलगता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: बहुत खूब
6: मैं अज के जी लेता हूँ जिदाई की सभी रस्में
5: वाह
6: गले जब उससे लगता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह वाह क्या बात है
6: न जाने हो गया हूँ मैं इस कदर एहसास में कब से किसी से बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह वाह जी वाह क्या बात है
6: अब मुझे वर्का चेंज करने दो
5: ओए होए
6: वो सब गुजरे हुए लम्हात मुझको याद आते हैं तुम्हारे खत जो पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह
6: मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहता हूँ मगर यूं ही कदम चौकट पर रखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह जी वाह क्या बात है
6: बड़े लोगों के ऊंचे बदनमा और सद मलूम को गरीब आंखों से तकता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: हाय हाय हाय हाय क्या बात
6: हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर
5: वाह
6: वसी में जब भी अस्ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं
5: वाह जी वाह क्या बात
6: एक और है तुझसे जो गाँव मिले हैं दिल से लगा लेते हैं कितनी लजत है तेरी जात के गम पीने में
5: वाह वाह क्या बात
6: अब लतीफों की तरह चलते हैं
5: जी जी जी उनकी तरफ मुख मोड़ ले
6: अच्छा ये इसमें एक साहब अपनी बीवी के हमरा शॉपिंग करने के लिए निकले सामने से आने वाली एक खूबसूरत लड़की ने उनसे देकर कहा हेलो जो जवाब में उन्होंने भी आस्ते से कहा हेलो तो जब जरा रुक गई और आगे बढ़कर बीवी ने नाराज होकर पूछा ए जी सुनते हो वो लड़की कौन थी जिसने आपको हेलो कहा उन साहब ने बड़े गुस्से से जवाब दिया चुप रहो तुम्हें अपनी पड़ी है खाई जा रही है कल क्लब में जब उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा
5: अच्छा
6: एक मन चला बस स्टॉप पर लड़कियों को तंग कर रहा था
5: अच्छा
6: आते जाते लड़कियों को तंग कर रहा था एक लड़की जब पास से गुजरी तो उसने गुनगुनाते हुए कहा अख लड़ी बदो बदी ड्यूटी पर मौजूदा कॉन्स्टेबल उस पर काफी देर से नजर जमाए हुए थे अचानक उसने कलाई पकड़ते हुए कहा पुत्र मौका मिले कदी कदी चलो ठीक है जी,
5: ठीक है सर,
6: बहुत जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे
5: बात होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां यू चौहान साहब के लिए जनाब, और तालियों की गूंज में ही खुश हमदीद वेलकम जी एन सत बिस्मिल्लाह कहेंगे एम खान साहब को। एम खान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी तरफ से आपको, सब सुनने वालों को, खवातीन व हजरात जितने सुन रहे हैं, अल्लाह सबको सलामती अगले साल दगाई का दिन फिर अता फरमाए।
5: आमीन।
0: समेत जितने सुनने वाले हैं मुझे भी अल्लाह ये नियमत अता फरमाए।
5: आमीन आमीन आमीन।
0: आपने होल पर लाया तो उस वक्त तक मैं कान के बिल को करीब रखा टेलीफोन, ऐसा हुआ मैं किसी चाइना टेलीविजन पर टेलीफोन कर रहा था।
5: अच्छा।
0: एक दोस्त साहब की तरह उसके साथ में एक दो बुजुर्ग हमारे, उनके खिलाफ बर्मी गांव में था, तो उन्होंने बहुत सारी गालियां निकाली। सुनने वालों के लिए सबक है, तो हमारे खिताए कश्मीर के सब लोग जानते हैं साहबजादा हबीब रहमान और वानी जमीयत तबलीग इस्लाम को बहुत सारी गालियां निकाली। जब मैं ब्रैडपुर आया तो उन दोनों से कहा, साहबजादा हबीब और रहमान मदजर अली से कहा कि हजर आपको गालियां निकाली। कहने लगे आप जी, मैं कहा जी अगले एम पे तुसा परेशान हो रहे होने होने वाले एक कितने माड़े ना ने कितने आदमी आख्या हजारा ने साहब उस अगले क्या पता केड़े की गाल कर दी है तुसा क्यों परेशान होने हो। फिर बानी जमीन तबलीग
5: सर सर सर सुने ना, इन हस्तियों का नाम ऐसे ना लिया करें, अगर कोई ऐसी बात हो गई है आप समझदार हैं पढ़े लिखे हैं तो उसको नशर करने की जरूरत नहीं होती है। आपने बात शुरू कर ली तो मैं रोकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती। इस तरह के जो हस्तियां ना उनका नाम नहीं लेना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात है तो उसको ऐसे आने तो नहीं कहना चाहिए ना।
0: इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कौम में
5: नहीं, कुछ और मिसाल दे दिया करें ना, लेकिन हस्तियों का नाम ना लिया करें प्लीज।
0: चलो ठीक है
5: जी।
0: मैं कह रहा इतना लोगों में सबर है, उन लोगों में अल्लाह हमने भी सबर अता फरमाए। मियाँ साहब का बड़ा कलाम है ना, सरकार अल्लामा इकबाल अपनी जुबान में एक मौजूदा जमाने के बारे में इरशाद फरमाते हैं, या कहें तेरी नजर नजर सिफते आशिकाना राज, मेरी निगाहे माया अशूबे अम्तियाज, काबे में बुतकदे में है यकसा तेरी जिया, ने इम्तियाजे दीरो हरम में फंसा हुआ है शान आ की तेरे दोरे स्या में, पोशीदा कोई दिल है तेरी जलवा गा में, जलती है के तू जलती है के तू के भर के तजल्ली से दूर है, बेदर तेरे सोज को समझे के नूर है, तू जल रही है वो तुझे कुछ खबर नहीं, बिना है वो सोजे दरू पर नजर नहीं, मैं जोशे इस तराब से सीमा वार भी आगाहे इस तराब दिले बेकरार भी।
5: वाह बहुत खूब
0: एहसास फरमाते हैं
5: जी जी,
0: इस मौजूदा जमाने के बारे में भी मैं इशारा फरमाते हैं। मियां साहब फरमाते हैं, दिल दर्द लगे ता हाय निकले, कोई रहंदा जार के, दिल बार अपने दी गल कजे औरानू मुंह धर के, जिस विच कुजी रमजन होवे और दर्द मंदा दे हालू ओ बेहतर चुप मुहम्मद बख्शा ओ सुखन अजे नालू जो शायर

0: दे पीड़े ती शेर नौंदा आग बिन दुआन दुखे वेखो वेखी बैत बनावन शेरू खबर न पावन इस तरह ते सिफतां सटां बोते दूम बनावन रद्दी आखरी शेर रद्दी रद्दीफू नाम न जानन काफियू बुदना काई वजन बराबर ठंडदा ठंडदा जुड़दा सिफत रिसमना सिफत रसमना पाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज। ये थे एम खान साहब जनाब, बहुत सारी
0: तारीफ़। पाक लोगों का नाम पाक जगह पे शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: खुशी हुई है आप जैसे दादमंद लोगों कम्युनिटी में, अल्लाह सुबह क्यामत आप जैसे लोगों को बाकी रखे।
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। और ये थे जनाब एम खान साहब। और दोस्तों हमारे साथ पाकिस्तान कश्मीर से जुड़े हुए जनाब चौधरी फरियाद साहब। और अब कमर्शियल का टाइम हो गया है, मिलते हैं फौरन कमर्शियल के बाद।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord you can trust.
4: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना समुदाय रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है दोस्तों। और जैसा कि मैंने कमर्शियल पे जाने से पहले कहा था, हमारे साथ पाकिस्तान कश्मीर जड़ोई से जनाब चौधरी फरियाज साहब जुड़े हुए हैं। और तो अब चलते हैं उनकी जानेब, तालियों की गूंज में उन्हें खुश आमदीद, वेलकम जी अनु कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब?
1: मैं
0: जो प्रोग्राम खत्म करके जाता ना घर, तो फिर मैं फोन ही ऑन रखता गप्पा ही लाता रहा कि मेरा भरा अगर इस तरह ठीक होता है तो फिर ये तो बड़ा आसान नुस्खा है।
1: बेहोश
0: होना ही बेचारा तो साढ़े तीन महीने तो कोई खुराक नहीं मिली ना।
1: अच्छा ही है,
0: चलो अल्लाह बेहतर करे।
1: और जी अल्लाह सारे ना फलियां कर जी अमर भाई जान, दुनिया ना कोई मसला ऐसा हो गया कोई दुनिया में कोई चैन सुकून नहीं, हर पास परेशानियां।
0: सही है।
1: कोई भी बंदा दुनिया में तक ना खुश कोई नहीं, कोई कितना माहौल बेचारा परेशान है, कोई कितना ना कोई बीमारी कोई और मुजफ्फर साहब ने टीम है, परवेज भाई ने टीम है, मेरी टीम है
0: जी,
1: गुजाला बाजी आए या सीमा जी अर्चिका बाजी ने मशीन जी, उन्होंने मेरा स्पेशल सलाम। जिदा मैं ठीक हुआ सब सारिया ने ना किया कर फिलहाल माधर।
0: सही है, सही सही।
1: इंशाल्लाह आज भी तुसने मैं आपसे इससे खूबसूरत शेर पेश करता हूं।
0: जी जरूर।
1: जे ऐसा आप हुआ दुखी दुखी है जे सारे शेर भी होने
0: आए शेर तो अड़े जड़े ने जान कर लेंदे ने जनाब।
1: चलो चलो जनाब तुसने मोहब्बत है आमद भाई जान, मैं सोचना के दुनिया ना तको जिंदगी गुजारने ने लखा बहाने होने, कोई किसे कोई मजदूरी करना, कोई बेचारा किसे मौत जाए
0: जनाब शायरी नाल उन्होंने जिहड़े दिलों में ठंडा पा रहे हो, तो जनाब ये बहुत वड्डी गल है। बीमार होके भी घर बैठ के भी लखां ते लोकां दे विच जनाब दिलों में तुसी अपनी मुहब्बत भरी हुई है, ये बहुत वड्डी गल है सर। घर बैठे तुसी इस तरह ये काम कर रहे हो,
1: असा हूं जिसे गुजरने आना जमीन एक बने बरो पिछलियां यादा अछलियां ने।
0: अच्छा।
1: जमीन दांदा नाल वाने सा ते सिर ते गड्डा चुकिया होना सी ते पसीना पसीने होना सा जे।
0: हां हां सही है।
1: हुण तकने भाई पता ना या माहौल कुछ और बदल गया।
0: वैसे गल्ला तुसी
1: मेरा होता ही है सब की होता ही है।
0: हां वो तो सही गल है, चीजा इथे रहन गियां बंदा नहीं रहेगा। ते मैं कह गल्ला तुसी इस तरह कर दे हो लगदा है कोई 70-80 साल दे बाबे बुड्ढे हो, लेकिन 200 साल बाबे दे जी जवान बंदे हो, तो गल्लां जिहड़ियां बाबियां नहीं करदे हो, पता नहीं की गल।
1: आज दो मेहमान आए मेरे घर, दूरों दा वैसे मैं सुनिया मेरे घर आई है।
0: अच्छा, तो
1: भी आने जी तुसा जवान बंदे हो तो बीमार की होगी।
0: अच्छा,
1: मैं क्या ये तुसा गल भी बड़ी चंगी लगी।
0: अच्छा, सीमा जी ट्राई की थी तो मुड़ के जरा ना फोन कर देता है। सीमा जी तुसी फोन करो ते असी कॉल ले लांगे, ते अपना सीमा जी ने की ये कॉल ते लेकिन फिर वो सोचा ने कि शायद नहीं गल बनी, उन्होंने कट दी है। अच्छा ठीक है, शायद उन्होंने मिस कॉल दी हुई तो सलाम देने वास्ते।
1: चलो जी मेहरबानी, ऐसा की पता होना असें कोई याद करने वाला बंदा कुत्ता कुत्ता होना
0: सही सही
1: जनाब शायरी शुरू करा बिस्मिल्ला
0: जी
1: लिखने ने के मुजरम ना होंदा ते कसम रब दी
0: होए होए
1: मुजरम ना होंदा ते कसम रब दी नहीं सी आका दे मेनू पहचान रहंदी
0: वाह
1: हां मैं चोर इस गलों पे खौफ खावा हां मैं चोर इस गलों पे खौफ खावा वरना उम्र भर चढ़ी कमान रहंदी
0: वाह क्या बात है
1: जांदा किबर ना मेरे शरीर विचों ये ना यार वाल अकृति आन रहंदी दुनिया बागी हो जांदी सदीक साईया अगर ना जा वजा कुदरत आयार है
0: ओए होए होए होए होए क्या बात है क्या बात है क्या बात है चौधरी साहब ये
1: मजाज ने रंगी जनाब उतनी शायरी है हमारे दोस्त अली अमदा साहब ने चांद चार उन्होंने लिखने ने के जेरे लब ना लाऊं ना बोल पाऊं
0: वाह
1: जेरे लब ना लाऊं ना बोल पाऊं ऐसा सितम रसीदा अजीता हूं मैं बैठे तोड़ दम दीदे शफा मेरी जाम गम दम दम पीता हूँ
0: वाह वाह वाह चौधरी साहब
1: कलम कलम को सबर की दे मरम
0: वाह
1: कलम कलम को सबर की दे मरम जख्म जख्म सजरी जुदाई के सीता हूँ मैं
0: वाह
1: पल भर ना जिए कोई अली हमजा
0: वाह
1: पल भर ना जिए कोई अली हमजा जैसे तरह याद में जीता हूँ
0: वाह बहुत खूब
1: फिर लिखने ने के लफ्ज में हो बयान कैसे लफ्जों में हो बयान कैसे है दर्द से भरी कहानी मेरी
0: वाह जी वाह
1: किसने दिल से खेल खेला हुई कैसे बर्बाद जवानी मेरी
0: वाह जी वाह क्या बात है
1: चाल बात से कुछ जमाने वाले
0: हाय हाय
1: चाल बात से कुछ जमाने वाले डूबा खुद कुछ थी नदानी मेरी
0: हाय हाय
1: बन सका ना अपना कोई अली हमजा किसी गम में कटी जिंदगानी मेरी
0: वाह वाह चौधरी साहब क्या बात है क्या बात
1: ये लिखने के रसवा हो जाता मैं दुनिया में रसवा हो जाता मैं दुनिया में रखी लाज न होती जो सबर मेरी
0: वाह
1: मुझे क्या मालूम था क्या होगा
0: हाय हाय
1: मुझे क्या मालूम था क्या होगा लेने आएगा जब तुम खबर मेरी
0: वाह
1: तरस जाएगा शायद दीदार खातर
0: हाय हाय
1: तरस जाएगा शायद दीदार खातर सूरत नजर ना आएगी मगर तेरी
0: हाय हाय
1: ऐसे कूच मैं करूं अली हमजा
0: वाह
1: ऐसे कूच मैं करूंगा अली हमजा ढूंढ ढूंढ तक जाओगे खबर मेरी
0: वाह बहुत खूब
1: मजाज ने अपने पंजाबी कहने ने के बाबा नसीम साहब मेरे बड़े पसंदीदा शायर सन बेचारे पिछले साल उन्होंने वफात हुई है वैसे बड़ी उम्र हुई है अमर भाई उन्होंने मेरे बड़ी शौक थी मैं उन्होंने स्पेशल पटवारी च तकने लग्या मिलने लग्या
0: अच्छा
1: मैं इस बंदे ने शायरी में बड़ी पसंद है इसने मुलाकात करा चलो फिर मुलाकात ही हुई तो उन्होंने शायरी है कि बुते मसवर नो की आखा
0: वाह
1: बुते मुसवर नो की आखा संगे सनम जो ऐसा बनाया जिस दिल कतरा रेम दा पानी फुल गया
0: वाह
1: कतरा रेम दा पानी फुल गया बेमरमत विच पाया जिस दिल
0: वाह
1: कई वजह सा आखने यरा शक्ल ते चंगी कम मारे
0: बंदे सही
1: है यही गल होनी
0: सही है सही है
1: कतरा रेम दा पानी फुल गया बुते बेमरमत विच पाया जिस दिल ओ सजावटा करदा रहया चेहरियां ते
0: वाह
1: ਉਹ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਲਾ ਸ਼ੋਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਤੀ ਨਸੀਮ ਉਹ ਗੌਰ ਤੋੜੀ ਸਿਤਮਗਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸੰਗ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਲ
0: ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ
1: ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਬਸ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਮ ਲਬਰੇਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛਪਾਇਆ ਮੈਂ ਦਿਲ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ
1: ਆਇਆ ਪੇਜ ਅੰਦਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਪੇਜ ਅੰਦਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ऐसा गुंजला विच फसाया मैं दिल उड़ ना ले उस सारे नसीम मेरी ऐसे बेमरवत संग लाया मैं दिल
0: क्या बात है क्या बात क्या बात क्या बात
1: आखिया मस्त होके मदोशी विच दे बैठा
0: हाय हाय
1: मस्त होके मदोशी विच दे बैठा मस्त वेख के नैना मतवालिया नु कीती बड़ी नजानी कुछ सोचिया ना कीती बड़ी नजानी कुछ सोचिया ना दिता दिल पर दिला दिया कालिया नु
0: वाह क्या बात
1: कसम रब दी ना इतबार करदा कसम रब दी ना इतबार करदा जे मैं जानदा इन्हां दीआं चालियां नूं रुलना पैंदा नसीम ना आशकां नूं ओह देंदा नाज जे ना उसन वालियां
0: वाह क्या बात है जनाब क्या बात क्या बात
1: अमर भाई दर्दे इजरान दी चोट लगी दर्दे इजरान दी चोट लगी तां छम छम आंसू रवान होंदे रहंदे तिफल माशूक तां चंगा होंदा रहंदे तिफल माशूक तां चंगा होंदा ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ
1: ਖੈਰ ਪਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੜਕ ਦਿੰਦੇ
0: ਆਹਾ
1: ਖੈਰ ਪਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਗਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ
0: ਆਹਾ
1: ਖਾਂਦੇ ਤਰਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨਸੀਮ ਕੋਈ ਨਾ
0: ਓਏ ਹੋਏ
1: ਖਾਂਦੇ ਤਰਸ ਮਹਿਬੂਬ नसीम कोई ना क्यों जे उन्होंने उच्चे गवान दे
0: हाय हाय हाय
1: आखिरी शेर आने ने के शौकी सनम ने वेख के ना बोला शौकी सनम ने वेख के ना बोला ये बनावटी चेहरे सनम देनी
0: हाय हाय हाय
1: गौर समझ के इन्हानु हाथ ना पा ये जो चमक दे मोती शबनम देनी
0: बहुत खूब बहुत
1: ना मैं खाने ना सागर ना लब साकी ना मैं खाने ना सागर ना लब साकी उन पर जाम कुछ जुलम और सितम देनी दुर्गे ला के नसीम दबान वाले दुर्गे ला के नसीम दबान वाले ये माशरूक चूठे किस कम देनी
0: वाह जी वाह क्या बात क्या बात
1: अमर भाई
0: बहुत शुक्रिया सर बड़ी मेहरबानी और गप लांदा लेकिन राणा नवीद साहब काफी देर तो ओढ़ते ने ना یہ تھے جناب چودھری فریاد صاحب پاکستان کشمیر جڑوئی سے اور آپ تالیوں کی گونج میں خوش آمدید ویلکم جی انہوں کہیں گے رانا نوید صاحب کو سویڈن سے رانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سجنوں مکھنا ملائی دیو پیڑیو کی حال جے
2: اللہ دا شکر ہے امر بھائی تو سناؤ سب خیر ہے
0: دعا کریا کرو دعا فقیرا رحم اللہ
2: ہائے ہائے ہائے دعا ہر ویلے تہاڈے لئی تے تسی سانو سناٹے چ پا تک کال ملا لی تے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی
0: او سر ٹھیک ہو جائے گا بازی مسئلہ
2: اچھا
0: ہاں تے جناب چوہدری فریاد صاحب کہندے سن ایک اسلام دا گل نہیں بنے گی رانا نوید صاحب نو جناب اس طرح کرنا کہ کافی وڈی کوئی بوری جی لے کے اودے پا کے پر کے تے ہاں
2: تے ہری
0: سلام
2: دے دیو ہاں چل چوہدری صاحب نو ساڈا بڑا ادب بڑا تے بہت ہی وڈا سارا سلام سلوٹ
0: جی جی
2: بہت چنگا لگا میں سن نہیں سکیا چلو میں ہن کتے ریکارڈنگ سناں گا
0: تے
2: بہت میرے تمام دوستوں کو بہن بھائیوں کو میرا سلام
0: جی جی
2: یار بھرا اور بارش کا موسم گزرا ہے ساون بھادو آپ کو پتا ہے ہمارے
0: جی جی بالکل بالکل بالکل
2: اس پہ کسی لکھنے والے افتخار احمد صاحب نے لکھے ہیں کچھ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں
0: جی ضرور
2: لکھتے ہیں یہ بارش کیسی بارش ہے غریبوں کو رلاتی ہے
0: ہائے ہائے
2: یہ بارش کیسی بارش ہے غریبوں کو رلاتی ہے کہیں بابا نہیں ملتے کہیں ماں ڈوب جاتی
0: واہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات
2: ہے یہ بادل جب گرجتے ہیں تو خلقت خوف کھاتی ہے
0: واہ
2: ہتھیلی پر بڑی پڑی جہاں ہے عجب ہی بے سباتی
0: بہت خوب
2: اور میرا کچھ مال اور بچے میری کھیتی بھی اور جھونپڑ گزشتہ سال ڈوبے اب بھی قسمت ڈوبی جاتی ہے
0: واہ واہ بہت خوب
2: یہ بارش جب بھی آتی ہے بڑی ظلمت مچاتی ہے جنہیں غربت نے مارا ہو انہی کو موت آتی
0: ہے کیا بات ہے
2: یہ بارش جب بھی آتی ہے بڑی ظلمت مچاتی ہے جنہیں غربت نے مارا ہو انہی کو موت آتی ہے اور غریبوں کی جو بستی ہے وہ زیر آب آتی ہے
0: بہت خوب
2: غریبوں کی جو بستی ہے وہ زیر آب آتی ہے محل گیلے نہیں ہوتے تو کلی بیٹھ جاتی
0: واہ واہ واہ بہت خوب
2: غریبوں کے دکھوں کا کیوں مداوا ہم نہیں کرتے پتا تو ہے کہ یہ بارش یہاں ہر سال آتی
0: ہے ہائے ہائے
2: پتا تو ہے کہ یہ بارش یہاں ہر سال آتی ہے حکومت کوئی بھی ہو زید کی ہو یا بکر کی ہو بنا دے جھونپڑا ایک تو بڑا احسان جتاتی ہے
0: بہت خوب بہت خوب
2: اور یہاں اشرافیہ جو ہے وہ ظالم ہے وہ جابر ہے
0: واہ
2: رہے محفوظ ان کے گھر یہ بند ایسے بناتی ہے
0: واہ واہ
2: رہے محفوظ ان کے گھر یہ بند ایسے بناتی ہے اور جہاں لاشیں غریبوں کے اٹھاتے تھے ابھی کل تک عمارت کا ستم دیکھو وہیں پکنک مناتی ہے
0: واہ واہ کیا بات ہے کیا بات
2: جہاں لاشیں غریبوں کے اٹھاتے تھے ابھی کل تک عمارت کا ستم دیکھو وہیں پکنک مناتی ہے
0: واہ بہت خوب بہت خوب
2: نام امیر بھائی راقب مختار صاحب کے چند اشعار ذرا الگ رنگ میں لکھتے ہیں کہ دار الشفا سمجھ کے دربار پر گئے
0: واہ
2: وہ تو نہیں ہے
0: جی جی
2: میں وہ ہولڈ کر لوں اگر ایسا کچھ ہے
0: نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی نہیں ایسی
2: چلے دار الشفا سمجھ کے دربار پر گئے ایسی شفا ہوئی کہ وہیں بیٹھے مر گئے
0: واہ بہت خوب
2: ایسی شفا ہوئی کہ وہیں بیٹھے مر گئے اطراف میں تو اپنے تھے دشمن اطراف میں تو اپنے تھے دشمن تھا سامنے کیوں تیر میرے جسم میں ترچھے اتر گئے
0: واہ واہ واہ بہت خوب بہت خوب
2: वो कच्चे घर में आज भी रहती है मुतमईन, शहजादे जिसकी चाह में जहाँ से गुजर गए।
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब।
2: अरे आमिर भाई, कमजर्फ लोग आए थे जागीर कैस में, मजनू की जागीर में कमजर्फ लोग आए थे जागीर कैस में, जिंदा पलट के दश्त की तोहीन कर गए।
0: वाह बहुत खूब।
2: और आखिरी शेर है कि वो हाथ मेरे हाथ से छूटे फिर उसके बाद, वो हाथ मेरे हाथ से छूटे फिर उसके बाद, जो हाथ उसके हाथ लगे हाथ कर गए।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो जनाब जी चौधरी फरिया अपने मुजफ्फर साहब मिस करने दे रहे थे, जाहिर है वो पसंद आया होगा आपका, तो सलाम दे रहे होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम खान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए।
3: बच्चा पढ़ना चाहना
0: ना, लेकिन ऑन टाइम नहीं है, अगले आवर च कवर नहीं होना, ठीक है ना, क्योंकि हूँ मैं कमर्शियल से चलिया, कमर्शियल तो बाद वो स्पॉन्सर होया गीत और लाजमी लाना मैं। चलो मैं ला देना, ला देना। तो दोस्तों अब चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
4: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:48, यानी कि 48 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, आप बरकस थोड़ा दुखी गीत, क्योंकि ये अभी जो हमें शायरी सुना के गए हैं जनाब राणा नवीद साहब, तो हमें एक गाना याद आ गया, तो वो गाना जो है वो आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिए।
5: Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: जी दोस्तों, अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा इस गीत को। और अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ एम खान साहब जो हैं वो किसी बच्चे को जो कह रहे हैं आने लें वो कुछ सुनाएंगे। तो चलते हैं तालियों की गूंज में, देखते हैं कौन है और क्या सुनाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम उस्मान है।
0: जी
2: उस्मान।
0: उस्मान, माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले हफ्ते भी आपने कुछ सुनाया था ना?
2: चलो जी।
0: है उस्मान बेटा, यू रेड समथिंग लास्ट वीक इज वेल डिन यू? दस, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाह करें, टाइम बहुत कम है।
1: ये शहर जो कभी पड़ता है कभी है, अंदोज नहीं मालूम के होती है, कहाँ से पैदा वो शहर जिससे लर्जता है, ये पस्ताने वजूद होती है, बंदा होती अजा से पैदा, खुदी का सिर्फ हुए नाला खुदी है देखा लाइला हमला, ये तो अपने पर इब्राहिम सलाम की तलाश में है, सनम कदा है लाइला हमला किया है तो ने मिटाए का सोता करे पे ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता पैमान पुताने हम होते हुए हैं जमा तीर बनाई ना है जमा मका चायला मेरी ताकत है जावे तो होवे दिल की सदा बहार दे इस बागे कदरे मजा ना आवे हो मन पैस हजारा साई हर पुक्का फल खाई खावे पाल चरा इश्क का मेरा रोशन कर दे सीना दिल दे देवे दी रोशनाई जावे विच जमीना। अस्सलाम वालेकुम।
0: खाई ऊपर अपनी बेटा नाव माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप ट्राइंग, गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू, गॉड गिव यू मोर स्ट्रेंथ, दिस इज वेरी नाइस, यू नो लाइक what your relationship with the M Khan Saab?
1: Grandfather.
0: Is your grandfather? So M Khan is your grandfather, Usman beta?
1: Yeah.
0: Very good, mashallah. Keep learning from him. You are very nice, beautiful. You trying to read it, every single word you said, we did understand. And you are only 9 year old, and keep trying it, keep learning it. I'm very proud of you and your granddad as well. So God bless you too. Take care, and all my prayers are with you. Khuda hafiz, khuda hafiz, खुदा हाफिज़। और इसी के साथ ही दोस्तों अब वक्त हमें बता रहा है कि खबरों का टाइम हो गया है, तो चलते हैं सुनते हैं खबरें, तो खबरों के उस पार मिलते हैं और लाइव कॉल का सिलसिला जारी रखते हैं, तो सुनते हैं खबरें।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 1. Ministers say they're taking every precaution to make sure artificial intelligence remains safe and secure. The reassurance comes after the head of Anthropic warned AI could take over the internet within the year unless its development is slowed down. Cabinet Minister Angela Rayner says the UK is leading the way when it comes to AI security.
4: I'm pleased that these companies are also talking about the threats as well as the opportunities that AI presents to us. And we have to work with our international partners, which is what we're doing. And we're world leaders when it comes to the AI Security Institute.
3: Yeah. It's claimed an American diplomat accused of possessing indecent images of children was secretly flown out of the UK. US authorities allegedly raided his London flat last month, taking him to an airbase for removal. Ministers here are understood to be in contact with the American embassy over the incident. Lawyer Rad Seeger led the justice campaign for Harry Dunn's family after the 19-year-old's death sparked an international diplomatic dispute.
5: If this reporting is accurate, that yet again America is behaving like a thug on the international playing field and doing what it likes and getting one of its own assets out of the country, and most countries abide by international law.
3: Reform UK has promised there will be no perks given to its latest donors. The party received a record £72 million from two cryptocurrency billionaires in the space of 2 days. Six people are now known to have died after an Indonesian passenger ferry lost contact with authorities in the Java Sea.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। और अब ये प्रोग्राम का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है जनाब, इसमें भी आप दोस्त आते हैं और प्रोग्राम को चांद लगाते हैं। और अगर बीच में मौका मिला तो कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छा और प्यारा सा कोई गीत जो है आप दोस्तों के लिए पेश करूं। तो एनीवे, अब जनाब क्योंकि वक्त मैं बता रहा है कि अब हिट ऑफ द आवर का जो है वक्त हो चुका है, तो हिट ऑफ द आवर का गीत जो है वो हम अपने तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं उनके नाम जनाब ये गीत करूंगा, क्योंकि डेडिकेशन नहीं है इस आवर में। ये संडे का जो प्रोग्राम होता है 12 से लेकर 2 बजे तक कोई डेडिकेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होती हैं। तो जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत जो है गुनगुना सकते हैं। तो इसलिए ये मैं जहाँ कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं, तो जनाब ये गीत आपके नाम करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर की शक्ल में ये प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12 मिनट्स पास्ट 1। तो चलते हैं, 1:12, यानी कि अब तो जनाब 13 मिनट्स हो गए हैं 1:00, तो 13 मिनट पास्ट 1। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद जनाब दोस्तों से मिलेंगे। नदीम मंसूर साहब हमारे साथ इस लाइन पे मौजूद हैं। पिछले आवर में उनसे बात नहीं हो पाई, उनसे सुन नहीं पाए, तो अब इस आवर में ज़रूर उनसे सुनेंगे। तो जनाब चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, जैसे कि कमर्शियल पे जाने से पहले हमने कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब, और अब हमारे साथ प्यारी बहना गजाला जबीन साहिबा भी जुड़ गई हैं। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में, खुश आमदीद वेलकम जी एनू कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे जनाब नदीम मंसूर साहब को। नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो गाने सुन दे हुंदे आ ते अज कम जिहड़ा साडा पूरा नहीं होएगा, पर चलो कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए।
1: जी
0: तो सुनियो, आज की लेके आए हो?
1: अच्छा, रफी साहब का गीत है कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की।
0: ओए होए होए होए, क्या बात है,
1: खूबसूरत मगर साउंड।
0: क्या बात है।
1: मैंने कहा चलो दासी को थोड़ा सा सेट पे रखता हूँ, कोई रोमांटिक हो जाए।
0: बिल्कुल शोक और चंचल गीत।
1: हाँ
0: जी,
1: चलिए आपकी नजर सबकी नजर।
0: जी जरूर।
1: कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, हाय बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है नदीम साहब।
0: जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत
1: बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप आए। और रफ़ी साहब का ये बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और हंसते मुस्कुराते रखे। आप बहुत प्यारे हैं, गीत भी प्यारे गाते हैं और आवाज़ भी प्यारी है आपकी, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर, मिस किया पहले आवर में, कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दो बार ज़रूर सुनेंगे।
0: इंशाल्लाह जरूर।
1: ठीक है सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या गीत रफ़ी साहब का, नदीम मंसूर साहब ने गाया जनाब, दिल ही खुश हो गया। ढेर सारी तालियां नदीम मंसूर साहब के लिए। और नदीम मंसूर साहब जो है, क्या बात है उनकी। और अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे साथ रोशनदिल से गज़ला जबीन बहना भी जुड़ी हुई हैं और अब जावेद मीर भाई भी जुड़ गए हैं, तो चलते हैं रोशनदिल ढेर सारी तालियों के साथ जहां प्यारी बहना गज़ला जबीन साहबा इस लाइन पर मौजूद हैं। गज़ला जबीन बहना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: कैसी है बहना, ठीक है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत
1: करूँ। अल्लाह हमेशा सलामत रखे मेरी बहन को। और आज क्या शायरी लेकर आई हैं आप?
2: शायरी तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक गिला करूँ
1: मुझसे।
2: हाँ जी,
1: हाय हाय हाय, फिर तो खैर नहीं। मेरी
2: आपसे नहीं, रेडियो की मैनेजमेंट से करूंगी, क्योंकि हमें जब हम ओल्ड पे होते हैं लगता है कि बस सब रिश्ते नाते टूट गए
1: हैं। हाँ, वो ठीक कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप
2: नहीं कर रहे, साल हो गया है। मुझे बुला ले, अगर पास होते तो मैं खुद आ जाती।
1: तो अगर
2: मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स जानती हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
2: ये कोई किल्ली इधर से निकाल के उधर लगानी है या कोई तार डैमेज है,
1: ऐसी बात होती तो कब के कर चुके होते बहना।
2: तो ये क्या चक्कर है फिर?
1: ये असल में वो थोड़ा सिस्टम खराब हो गया है, वो मंगवाना पड़ेगा, वो आ जाएगा, आ जाएगा, डोंट वरी।
2: मुझे बुला लो,
1: आप आ जाएं, हम तो आपको बिल्कुल इनवाइट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आ जाइए आप।
2: नहीं नहीं,
1: इसको ठीक
2: करवाएं प्लीज, वो पता
1: है क्या सही है, वो अच्छा नहीं लगता ना कि दूसरा आदमी कोई क्या कह रहा है या क्या हो रहा है
2: ना, हम उन्हें सुन नहीं सकते।
1: ठीक है, जरूर कर देंगे
2: आपकी, नहीं तो होल्ड पे रखा करना।
1: ठीक है, जरूर जरूर,
2: मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई आई हूं, मीर साहब है
1: ना? मीर साहब,
2: मीर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम, लाला फरियाल को भी, और एक आते हैं मिठा जी, उनको भी मेरा सलाम। मिठा जी आप ही समझ जाएंगे अब।
1: मिठा जी हैं जी,
2: हाँ। और टाइम ना लूं, अमजद इस्लाम अमजद साहब का भी तारीफ पढ़।
1: नहीं, ये क्लियर कर जाए, मैं नहीं समझा ये मिठा जी किसको कहा आपने,
2: ये समझेगा वो ही। लाला रुखसार।
1: अच्छा, भाई रुखसार की बात कर रहे हैं, आज गायब हैं वो, आज गायब है।
2: अच्छा,
1: आज गायब हैं,
2: आ जाएंगे,
1: इसलिए दरबारी चुप करके बैठे हुए हैं ना। जब लाला रुखसार आते हैं तो सारे स्टैंड अप हो जाते हैं, पर जब वो बोलते हैं ना,
2: उनका वो
1: दरबारी स्टाइल है वो, जो
2: बादशाह,
1: हाँ, तो वो दरबारी सारे खामोश, पहले तो मेरी तरफ देख रहे थे तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, भाई मैं क्या करूं, वो आए नहीं है, तो फिर वो अभी वो गर्दने झुका के बैठे हुए, पता नहीं सो रहे हैं या वैसे परेशानी में, नहीं नहीं नहीं है, जाग रहे हैं वो, अब गर्दन उठाई उन्होंने,
2: वो इंसाइक्लोपीडिया है, वो सारे अल्फाज जो होते हैं ना वो हमें सुना के जाते हैं।
1: सही है, सही।
2: अच्छा, मैं पढ़ लूँ फिर, वो मीर साहब मेरे से नाराज ही ना हो।
1: नहीं नहीं, वो नाराज नहीं होते, बड़े दिल के मालिक हैं वो।
2: मेरे हम सफर, तुझे क्या खबर,
1: वाह क्या बात है।
2: ये जो वक्त है किसी धूप छांव के खेल सा,
1: वाह वाह क्या बात है।
2: इसे देखते इसे झीलते,
1: वाह,
2: मेरी आंख गर्द से अट गई,
1: वाह वाह क्या बात है।
2: इसे झीलते इसे देखते मेरी आंख जर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में हो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए,
1: बहुत खूब,
2: मेरे बेखबर तेरे नाम पर, मेरे बेखबर तेरे नाम पर वो जो फूल खिलते थे होंठों पर,
1: वाह वाह क्या बात,
2: वो जो दीप जलते थे बाम पर वो नहीं रहे,
1: वाह,
2: मेरे बेखबर तेरे नाम पर वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर वो नहीं रहे, वो नहीं रहे जो एक रक्त हाथ दरमियां वो बिखर गया,
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब,
2: थैंक यू, वो नहीं रहे जो एक रक्त था दरमियां वो बिखर गया, वो हवा चली किसी शाम ऐसी हवा चली के जो बर्ग थे सरे शाख जा,
1: वाह वाह वाह क्या बात,
2: वो गिरा दिए,
1: क्या बात,
2: वो गिरा दिए वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ा दिए,
1: वाह वाह क्या बात है, क्या
2: वो
1: बात?
2: जो रास्तों का यकीन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे,
1: वाह,
2: वो जो निशाने पा भी मिटा दिए,
1: वाह वाह क्या बात,
2: मेरे हम सफर है वही सफर मगर एक मोड़ के फर्क से, मेरे हाथ से मेरे हाथ तक,
1: वाह वाह,
2: जो हाथ भर खास फासला तेरे हाथ से मेरे हाथ तक, वो जो हाथ भर था फासला, सॉरी आज गला कोई जरा ज्यादा ही खराब है,
1: अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर,
2: मेरे एक मोड़ के फर्क थे तेरे हाथ से मेरे हाथ तक, वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया, उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया, तू मेरे हम सफर का शरीक है, मैं तेरे सफर का शरीक हूँ, जो दरमियां से निकल गया उसी फासले के शुमार में,
1: वाह वाह क्या बात है,
2: उसे बेयकीन से गुबार में, उसकी राह गुजर के हसार में, तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है,
1: क्या बात है,
2: तू मेरे हम सब, तू मेरे सफर का शरीक है, मैं तेरे सफर का शरीक हूँ,
1: क्या बात,
2: थैंक यू भाई, बहुत
1: शुक्रिया बहना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत प्यारी शायरी, तो मिलते हैं जनाब अगले प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया बहना, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ये थी प्यारी सी बहना रोजकल से गजाला जबीन साहबा, बड़ा प्यारा अंदाज, बड़ी जो है वो प्यारी सी शायरी लेकर आती हैं और अपने मखसूस अंदाज में सुनाती हैं, और माशाल्लाह अच्छी लगती है जिस अंदाज से ये शायरी करती हैं, और एक एक लफ्ज़ की समझ भी आती है, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जब शायरी करते हैं तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ, तो एनीवे बहुत शुक्रिया बहना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि जावेद मीर भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के फौरन बाद जावेद मीर भाई से मिलते हैं।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274 733 732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। और दो बजे तक मेरा और आपका साथ है और दो बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में। जैसे कि मैंने कहा था कमर्शियल पे जाने से पहले कि जावेद मीर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जावेद मीर भाई को खुश आमदीद वेलकम जी एनु कहेंगे। जावेद मीर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसे हैं भाईजान?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरे भाई।
0: अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे जनाब।
1: आप कैसे हैं?
0: दुआ चाहिए भाइयों की, अल्लाह का बहुत करम है। ठीक है, मजे में
1: जी
0: जी।
1: अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
0: आमीन आमीन। तो क्या लेकर आए हैं आज?
1: मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, जिनमें आमिर शहजाद साहब हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफी साहब, तकीर शाह, तारिक भाटा, आसिफ रियाज, सतमजद किंग बत्ती, महबूब इलाही, कामरान शहजाद, सलीम भाई, अब्दुल कयूम, परवेज, ताहिर मुकर, सफीउल्लाह, खालिद बट्टी, शरफद्दीन, तारिक जुल्फी हैं, शकील साहब हैं, चौधरी महमूद हैं, चौधरी फरियाद, अमीदा साहब हैं, सादिया बहन हैं, खजाला साहिबा हैं, और चौधरी मुजफ्फर, अतीका साहिबा हैं, और राजी अयूब साहब, चौधरी तारक, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।

0: टीम है भाई।
1: क्या बात है, क्या बात है, बड़ा लंबा गाना ये, और आपने बड़ा जल्दी खत्म कर दिया इसको।
0: क्या करें, आपके पास टाइम भी
1: नहीं, टाइम बहुत है, बहुत होता है आप पर। ये गाना जो है ना, ये तकरीबन तकरीबन 7 मिनट के करीब है, खाली मेरे ख्याल में फिल्म में 7 मिनट कोई 3 सेकंड या 2 सेकंड कम होगा। बड़ा अच्छा और बहुत प्यारा गीत है ये, बड़ा चला गीत 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी अपनापन, तो उसमें ये गाना बहुत चला था। और इसमें वाकई गाने में जो है वो यही है कि जनाब
0: बहुत प्यारे
1: बोल है जनाब, सच्चाई पे मबनी है,
0: मुसाफिर है ना जी, हम सब
1: जी बिल्कुल, जो दुनिया में आया है वो मुसाफिर ही है। जी हाँ, जो आया है उसने जाना है,
0: जाना
1: तो जहाँ जहाँ आते हैं फिर जाते हैं, तो मुसाफिर ही होते हैं ना
0: जी।
1: तो बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया हमें, अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और भूला बिसरा गीत एक कभी किसी ने लगाया भी नहीं रेडियो पे, कभी सुना भी नहीं, और ना मैंने कभी लगाया। चलिए आज सुना देंगे आपकी जानिब से सभी सुनने वालों को। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।
0: तारिक भट्ट साहब के नाम कर दें।
1: किसके नाम?
0: तारिक भट्ट साहब के नाम।
1: तारिक भट्ट साहब ड्यूजबरी वाले
0: जी। हाँ
1: जी, जरूर उनके नाम करें, बस कर दिया आपने, कह दिया उनके नाम हो गया।
0: हाँ।
1: जी बहुत शुक्रिया मेरी जान, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जावेद मीर भाई, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत इन्होंने सुनाया, और इस गीत में बड़े प्यारे बोल हैं। बंदा सोचता है कि दुनिया में जब आता है तो भूल ही जाता है कि एक दिन जाना भी है छोड़ के, और पता नहीं क्या क्या सोच के क्या क्या बंदा प्लानिंग करता रहता है। और गाना बहुत अच्छा है, बहुत ही इसमें अच्छी बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं और सबक देने वाली बातें हैं। तो जनाब इसलिए चलेंगे, अब जो है वो वक्त हमें बता रहा है कि जनाब अब वक्त जो है वो हो चुका है अपना जोहर की अजान का। तो चलेंगे आप दोस्तों की नज़र जोहर की अजान करेंगे, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी बहुत कम रह गया है। और मेरे बाद यहाँ आपके लिए काशिफ जो है आपने मखसूस अंदाज में हल्ला गुल्ला वाला प्रोग्राम लेकर आएंगे जनाब, ज़रूर उनका साथ दीजिएगा। 2 और 5 के दरमियान उनका और आपका साथ होगा, यकीनन एक यादगार साथ होगा। हमेशा की तरह उनका प्रोग्राम जो होता है बड़ा मज़े का होता है, बड़े मज़े की बातें पता नहीं कहाँ कहाँ से वो ढूंढ कर लाता है, उसका जहन कितना तेज़ है ये तो प्रोग्राम करता है तो पता चलता है। बड़ा मज़ा आता है जनाब, बड़ी प्यारी बातें जो हैं वो उसकी होती हैं, और गाने भी बड़े मज़े के होते हैं, तो ज़रूर उनका प्रोग्राम सुनिएगा। तो अब फ़िलहाल चलेंगे जनाब, ज़ोहर की अजान सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों से मिलेंगे।
2: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है, आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी समाइन, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और जो अजान का टाइम ब्रेडफोर्ड में था, जो ब्रेडफोर्ड के लोग हैं उनके लिए। तो जनाब, अब इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, तो चलेंगे पहले टाइम चेक कर लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो है वो बता रही हैं 1:44 है, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 1। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है तकरीबन 15 मिनटों का रह गया है, और उसमें भी कमर्शियल भी आएगी और फिर जनाब और मज़ीद कम होगा वक्त। तो मेरे बाद यहाँ आएंगे काशिफ प्रोग्राम लेकर, उनका ज़रूर साथ दीजिएगा। अगर लाइवली प्रोग्राम देख सुनना है तो काशिफ का प्रोग्राम सुनिएगा, ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा और उनका साथ दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मज़े का प्रोग्राम होता है, बड़ी मज़े की बातें होती हैं, मज़े मज़े के गीत होते हैं। वो प्रोग्राम जो होता है ना, एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आपको बिल्कुल जो है लॉक कर देता है जनाब, आपको रेडियो के साथ। और फिर 3 घंटों का जो सफ़र होता है, आपको और कोई परेशानी वाली बात जहन में नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ काशिफ की बातें ही गूंजती हैं जनाब आपके जहन में। बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम, ज़रूर सुनिएगा, साथ दीजिएगा उनका। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल का वक्त हो गया है, चलते हैं कमर्शियल सुनते हैं। कमर्शियल के बाद वो गीत सुनेंगे जो जावेद मीर भाई ने अभी गुनगुनाया, आदमी मुसाफिर है। तो जनाब उन्होंने कहा कि तारिक भट्ट साहब जीजुबरी वाले हैं, उनके नाम कीजिएगा। तो ठीक है, सबके नाम करते हैं, तारिक भट्ट साहब के नाम भी करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: Music. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official Media Partner, Sunrise Radio.
5: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं, तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
6: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है, मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
5: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
6: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
5: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
7: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: बहुत ही प्यारा गीत अभी आपने आधा भी नहीं सुना क्योंकि अभी चार मिनट और कुछ सेकंड का गाना रहता ये और मन तो कर रहा था आपको ये गीत सुनाऊं लेकिन क्या है कि प्रेम जो है उसका फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है जनाब और फिर आई हमारी प्यारी बहना गजाला जबीन साहबा तो फिर हम कैसे गाने चलाएं उनसे बात ना करें ये तो बड़ा काम खराब है जनाब आइए आइए सजनो की गले
1: गल कमीज है
0: वो तो ऐसे ही है तो काशिप भी आ गया है जनाब चलो अब मजा आएगा थोड़ी देर तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में रोचडेल जहाँ प्यारी बहना रजाला जबीन साहबा इस लाइन पे मौजूद हैं ढेर सारी तालियां उनके लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वंस अगेन बहना
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैंने कहा थोड़ा सा टाइम देता है मैं भी एक छोटी सी पंजाबी
0: बहुत टाइम है थोड़ा ना कहें आप दिल थोड़ा मत करें सुनाएं पंजाबी की जितनी सुना सकती हैं कोई बात नहीं ऐसी
2: मैंने कहा ये पंजाबी शायर का बस
0: और अब ये अब आप भी आई शायरी करने तो वैसे ही बंदा खिल उठता है बहन आए तो भाई को खुशी होती है लेकिन यहाँ जो स्वीट सा आया ना अभी प्यारी सी मुस्कुराहट से जाए अब उसने ये मजा दुबला कर दिया
2: चलो अच्छी बात है मजा अच्छा ही हो सारे सुनने वाले एंजॉय करे तो वही अच्छा लगता है
0: नहीं मैं काशिप की बात कर रहा हूँ वो भी आ गया
2: आवाज सुन ली है
0: वाह जी वाह क्या बड़े पतले कान है मेरी बहन के माशाल्लाह जी पहले शायरी सुना लें शायरी शायरी कर लें पहले
2: अच्छा मैं सुनाती हूँ
0: जी
2: कीते तरले मिनता हाथ जोड़े
0: वाह वाह वाह कीते तरले मिनता हाथ जोड़े
2: परदेश ना जा मैं मर रहा था
0: होई होई
2: परदेश ना जा मैं मर रहा था तू आस है मेरे जीवन दी
0: होई होई होई क्या बात है
2: तू आस है मेरे जीवन दी ते ना आस मुका मैं मर रहा था
0: वाह
2: ते आस ना मुका मैं मर रहा था नित दे परवाइयां
0: वाह
2: नित रोसे
0: हाय हाय
2: जय खाना नुपा मैं मर वैसा
0: वाह वाह वाह वा, बहुत खूब
2: थैंक यू नित बेपरवाइयां नित रोसे
0: हाँ हाँ
2: जय खानू खा मैं मर वैसा
0: वाह
2: कई साल होए
0: हाँ हाँ
2: चन वेख्या नहीं
0: हाँ हाँ
2: कई साल होए चन वेख्या नहीं इस आज इस ईद ते त्या मैं मर रहा
0: वाह वाह क्या बात है क्या
2: ईद ते त्या मैं मर रहा इते तले मिनता हाथ जोड़े
0: होए होए
2: परदेश ना जा मैं मर रहा
0: वाह वाह बहुत खूब
2: ये कोई सुनता है नहीं सुनता हर कोई जो अपनी मर्जी करता है
0: ये और की दसा ये पैर मेरी असी की दसिए ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੋਏ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਸ਼ਿਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ
2: चलो कोई गल नहीं है कि मजा ले लेना अपने
0: मर वैसा मरदा कोई नहीं भैन मेरी एक खाली गल्ला ही नहीं खाली गल्ला होंदिया ने मैं मर जाऊंगा मैं ये होगा मैं वो होगा होता नहीं है ये
2: इन्हें तरला कंडे है तरला
0: मरदा कोई नहीं लेकिन वो जीन का स्वाद कोई नहीं होता
2: हर एक अपने अपने रस्ते निकल आंदे है और फिर जरा वक्त है ना सब तो बड़ा मरण है
0: सही है सही सही
2: ये मरम ला दिंदा है
0: सही
2: अल्लाह ताला सब दे रिश्ते सलामत रखे जेडे फौत होंदे उनां दे बाद भी ते जीना पैंदा
0: है बिल्कुल सही गल सही गल
2: अल्लाह पाक सब ते करम करे
0: सही
2: सब नु मेरे तरफों खुदा हाफिज
0: खुदा हाफिज बहना बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी अल्लाह हाफिज ये थी प्यारी सी बहना रोचल से गजाला जबीन साहबा, दिल से तालियां उनके लिए। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है काशिफ तशरीफ ला चुके हैं, तो मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

घरों के आसपास मौजूद हैं कहीं आप, या बैठे हैं हमारी दरापनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, आई नो वेलकम, खुश आमदीद। कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से जनाब, हाजिर है यहां पे हमेशा की तरह आपके लिए। बिल्कुल जनाब, आपके अपने सनराइज रेडियो पे जिसे आप सुनते हैं 100.6 एफएम और 103.2 एफएम क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर, और दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं सनराइज रेडियो .fm के जरिए। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई का, जिन्होंने हमसे पहले यहाँ पे खूबसूरत सी महफिल सजा के रखी, और हमेशा की तरह हमें भी बड़े बड़े ही प्यार के साथ, खलूस के साथ वेलकम किया, हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए खास शुक्रिया आपका। और जनाब अब बारी है हमारी और आपकी, आपकी और हमारी, खूबसूरत सी महफिल कहता हूं इसलिए होती है क्योंकि हवा पे बिखरती हुई ये आवाज आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक देती है, और आप हैं खूबसूरत, सुनने वाले खूबसूरत हों तो बातें कहते हैं कि खुद ब खुद खूबसूरत आपकी जुबान से अदा होती हैं। तो जनाब ये तालमेल रहेगा आपकी समातों का और हमारे अल्फाज और बातों का और आवाज का, ये चलता रहेगा इसी तरह अगले 3 घंटे जनाब आपका जान लगा देंगे, पूरी पूरी जान लगा देंगे, जोर लगा देंगे, जितना हमारे पल्ले जोर है ना वो सारा लगा देंगे। किस चीज के लिए भला, घबराए नहीं जनाब, कोई आपसे दो दो हाथ करने का मेरा इरादा नहीं, ना लड़ाई करने का, ना कुश्ती करने का, ना कबड्डी खेलने का, ना दौड़ लगाने का, ना जोर लगाने का। जोर हम लगाएंगे, जान हम लगाएंगे, दिल लगाएंगे सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए। और जनाब अगर आपके दिल के तार थोड़े से खड़के, आपके दिल की धड़कनें आपको थोड़ी सी तेज होती महसूस हो, कोई एक आध ख्याल हमारे लिए हमारे हक में गवाही दे, तो ना रोकिएगा अपने दिल को, कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। आप हर वक्त 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 करने के चक्कर में, डबल ट्रिपल करने के चक्कर में हर वक्त रहते हैं, पाउंड्स को, पैसों को, दिमाग से अपने। तो आज दिमाग को थोड़ी देर ब्रेक दें और दिल से बातें करते हैं। दिल किया तो कॉल कीजिएगा, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा, बताइएगा कि आप किसी ने में भी एक दिल है जो धड़कता है, किसी की दिल से निकली हुई बातें सुन के। हम तो दिल से करेंगे बातें बेशुमार, और फिर बार बार अगले 3 घंटे। तो जनाब अगर आपका दिल चाहे, फुर्सत मिले, तो जरूर अपना नाम बताइएगा, नाम नहीं तो काम बताइएगा, कोई गाना आपके लिए प्ले करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आज मौसम बड़ा रोमांटिक है, दिल मेरा बड़ा खुश है, वैसे तो हमेशा खुश होता है, लेकिन ऐसा मौसम जिसमें ना ठंड हो ना गर्मी हो, तो पता नहीं क्या होता है। इस खूबसूरत सी हवा, हवा में कोई मस्ती है। पूछते हैं आपसे भी क्या आपको भी ये हवा छेड़ रही है।

0: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 2:16।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
6: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0043 पर कॉल करें।
1: The Sunrise Radio Listeners' Choice Award 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues and artists you love. Voting will be exclusive to Listeners Club members to join free now at sunrise.radio and keep listening for more details.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: जी जनाब, जैसा कि जिक्र हुआ मौसम का, हवा का, खूबसूरत सी मस्ती भरे इस मौसम में जनाब मस्ती भरी बातें शुरू हो चुकी हैं। बाजी लेके जनाब आज सबसे पहले शमरेज भाई कहते हैं जनाब के किधर गायब रहे आप जनाब। हम तो सिर्फ एक वीक का नागा किया हमने, वो भी लास्ट संडे तो यहीं पे थे, आप गायब थे। खैर, आप कह रहे हैं कि जनाब अभी काम पे हैं और डिलीवरीज कर रहे हैं, साथ में हमें सुन रहे हैं और बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम भी आपने हमारे साथ एग्री किया कि जनाब मौसम खूबसूरत है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ आए थे, उनकी कॉल्स हमसे मिस हो गई क्योंकि पहले तो हम दुआ सलाम में मसरूफ थे आते साथ ही, तो उस वक्त कॉलर्स साथ में शामिल जो हुए उनकी कॉल्स नहीं ले सका। आप आएंगे तो आपका नाम ज़रूर शामिल करेंगे जैसे जैसे आपसे बातें होंगी। लेकिन मीन टाइम जनाब हमारे दोस्त शमरेश भाई जनाब वो कहते हैं कि काम पे हैं और काम अब अजय पख्या कोई नहीं। तो मैंने कहा कब पखता है ये काम? कहते हैं शाम को जो है ना 6 से 9 कम पखी जाना। तो मैंने कहा जिचर कम नहीं पकता आपका तो उतनी देर तक आप हमारा साथ तो देना, हम तो 5 बजे तक यहाँ पे हैं। तो कहते हैं हाँ वो तो हम काम पखा हुआ भी हो तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, निभाते हैं, सुनते हैं। तो खैर जब तक उनका काम पखता है या आपकी तरफ काम पखता है, मतलब आप बिजी हो जाएंगे फिर अपने काम काज रोजमर्रा के, इससे पहले जनाब हम आपके लिए ये गाना लगाते हैं। और जनाब अगर आपका दिल चाहे तो 012-74-306-666 बिल्कुल ये राबता नंबर है आपका और हमारा, 012-74-306-666। और जनाब जैसे जैसे आपकी कॉल्स शामिल होंगी आपके नाम के साथ जोड़ के गीत जरूर शामिल करेंगे, हमारी मर्जी का या कोई आप भी अपनी मर्जी भी बताइएगा। और जनाब कुछ दोस्त होते हैं जिनसे बात करके लुत्फ आता है और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी खामोशी भी कमाल करती है। अच्छा वो बात नहीं करते हैं लेकिन आंखों से देखते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कभी किसी की आंखें भी बोलती हूं, किसी की खामोशी भी बोलती हो, ना बोल के भी सब कुछ कह जाती हो? ऐसा हुआ है या मैं ही इन हादसात का शिकार हुआ हूं अकेला? बेचारा काशिफ आपका। अच्छा आप भी इस हादसे का अगर कभी शिकार हुए हैं किसी की आंखों से, कभी आपने शोले निकलते हुए देखे?

One of my most favorite singers, Diljit Dosanjh. जनाब सामिया हमें सुन रही हैं आज कान लगा के और वो कहती हैं कि जनाब आज अगर दिलजीत दोसांझ जी का गाना शामिल ना गया तो वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे कभी नाराज हो सकूंगी। अगर आपने गाना ना लगाया तो मैं आपसे नाराज हूं, फिर मुझे आपको जो है ना मनाना और राजी करना बहुत मुश्किल है। मैं नाराज होती नहीं हूं, अगर हो जाऊं तो फिर मैं नहीं राजी होती, बड़ी मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। तो जनाब ये धमकियां उनकी तरफ से हमें मौसूल हुई है और कभी भी जो भी जेंटलमैन है ना जनाब मर्द हजरात, वो कभी भी खवातीन की तरफ से, जो समझदार मर्द हैं खवातीन की किसी बात को वो जनाब खास तौर पे जो वो गुस्से में या धमकी या मेज कोई बात कर दे ना तो उसको वो लाइट नहीं लेते हैं, वो सीरियस लेते हैं। वैसे हो सकता है शुगल मस्ती मजाक में वो बात को जाने दें, लेकिन इस तरह के मूड में जब खवातीन बात करती है ना तो फिर नहीं जाने नहीं दिया जाता, फिर उस बात पर चुप करके वो क्या कहते हैं, गुड़ी उर्दू नहीं आती है ना मुझे, सरे तस्लीम खम। जी बिल्कुल, तो वो सरे तस्लीम खम है और जब तक आप हैं तब तक हम में दम है। और ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए सामिया आ रहा है और बाकी सब सुनने वाले भी इसको सुन सकते हैं। आपको अपने कानों में उंगलियां देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सुने मज़ा आएगा आपको। अच्छा गाना है और इस मौसम के हिसाब से बड़ा खूबसूरत चंचल सा गाना है। और मदस्सर भाई जान जनाब उनकी भी कॉल आई, उन्होंने जनाब कहा कि वो भी काम पे बिजी है, टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं और सभी टैक्सी ड्राइवर्स के नाम, सभी सनराइज रेडियो लिसनर्स के नाम उन्होंने कहा काशिफ जी अपनी मर्जी का कोई गाना लगाएं। तो जनाब ये समझे जो सामिया का गीत है ये मेरी मर्जी भी इसमें शामिल है, जैसा मैंने कहा मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं दिलजीत, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा ये गाना सुन के अगर मुझे फुर्सत मिली कॉल्स से। तो बाकी जो है जनाब हाँ ये गाना मुदस्सर भाई के लिए, ये गाना आप सबके लिए और जनाब ख़ास तौर पे जिन्होंने फरमाइश की है सामिया के लिए, और उम्मीद है कि वो अब आइंदा आने वाले टाइम में हमसे नाराज़ होने का जो है ना वो इरादा बिल्कुल नहीं करेंगी।

जनाब हीरा की कॉल। हीरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत दिनों के बाद आपने कॉल की और आप कहती हैं कि आप तो हमें याद ही नहीं करते। मैंने कहा जनाब हम तो याद करते हैं, आपको छींके नहीं आती हैं तो हम क्या कर सकते हैं। कहती हैं कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं आपके जो मोस्ट फेवरेट फूड है वो हमें पता है, मैं वो खा रही हूँ और साथ में दूधपति का कप है। दूधपति का कप तो हो गया, वो तो हम दो दो पी के आए हैं, लेकिन दूसरी बात जो आपने कही उससे हमारा सीना छलनी हो गया है, सीने में दर्द और वो भी करारा। आपने कहा करारे वाली बिरयानी खा रही हूँ और आपको जेलस करने के लिए कॉल की है।

जी जनाब, हमारे साथ कॉलर और कॉलर्स ने शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि लाइन अजी हजूर, ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। आप कहते हैं आपकी कॉल नहीं मिल रही थी, लाइन बिजी थी, ना किया करे। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ना किया करें। और जनाब हमारे साथ तनवीर अख्तर जी हैं, उनको हमने होल्ड पे लगाया है। उन्हें की असा आख्या तुसा होल्ड करो, तो मैं बस इस तरह गया तो ये इस तरह आया। चुटकी की आवाज़ आई है ना। अच्छा जनाब, हमारे साथ मुदस्सर भाई दोबारा आए, उन्होंने ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करी। अभी मजीद बातें करने का उनका भी दिल था, हमारा भी दिल था उनकी बातें सुनने को, क्योंकि जब दोबारा कोई आता है तो वो हमें इज्जत देता है। जो खुद इज्जत वाले होते हैं वो जनाब दूसरों को इज्जत मान हौसला बढ़ाना जानते हैं। आगे बात हो रही थी, एक कॉलर आए थे, उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा जनाब, छोटी सी बात उन्होंने की, मैंने पूछा कहाँ से कॉल कर रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं बताया। मैंने कहा कौन बात कर रहे हैं, ये भी नहीं बताया। कहते बस ये बताने के लिए आपको कॉल की कि आप इस ज़िंदगी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं कॉल करके बताऊं, मेरे दिल को लगा। तो जो आपकी दिल वाली बात थी कि अगर दिल को लगे तो ज़रूर दिल की सुनिएगा, तो मैंने पहली बार दिल की सुनी और रेडियो पे कॉल की आपको ये बताने के लिए कि मेरे दिल को आपकी बातें अच्छी लगती हैं, हमेशा सुनते हैं। आज आपने कॉल की, नाम ना बताएं कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। खैर जनाब, हमें दोस्त ने, मुदस्सर भाई ने आके कहा, कहते हैं कुमार सानू जी का गाना नहीं लगा रहे हैं आप। मैंने कहा जी ये दर्द जो करारा सा मेरे सीने में उठा है, हीरा जी की बिरयानी वो खाते हुए मुंह में चबाते हुए लिचली उन्होंने ना मुंह भरा हुआ बिरयानी से और मुझे कॉल की, और वाकई उन्होंने मुझे जेलस करने की कोशिश की। जेलस कभी मैं होता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कैसे होता है जेलस, लेकिन एक खफगी एक दर्द सा मेरे सीने में उठा बिरयानी खाते हुए जो उन्होंने हमें कॉल की। तो आज हमें मालूम हुआ कि जब आप खुद बिरयानी ना खा रहे हो, कोई दूसरा खा रहा हो और आपको देखना पड़े उसको बिरयानी खाते हुए, तो क्या महसूस होता है। आज

0: इधर आप चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है जी जनाब, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको याद है नहीं याद? चले फिर मुझे भी नहीं याद जनाब। खूबसूरत से गीत आपके लिए आ रहा है, यार बदल ना जाना मौसम की तरह। आजकल तो फिर मौसम का पता लग जाता है हजूर, वेदर ऐप पे आप चेक करें, गूगल करें तो मौसम किसी हद तक अंदाजा हो जाता है। मौसम ऐसे ही बदनाम है कि मौसम बदलता रहता है बार बार, थोड़ा बहुत तो आप प्रेडिक्ट, कितना उखा लफ्ज मैंने बोल लिया अंग्रेजी का फटाफट, रवानी में अंग्रेजी मेरी तेज हो गई है छुरी की तरह, है ना। तो जनाब आप मौसम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कल परसों तरसों तक क्या होगा, पर आजकल लोगों का पता नहीं लगता, अपनों का पता नहीं लगता, दोस्तों का पता नहीं लगता, खून के रिश्तों का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल क्या होगा परसों क्या होगा उनका मजाज। वादे कस्में बड़ी बड़ी और टाइम आने पे बातें छोटी लगती हैं, झूठी लगती। आप ही को ऐसा लगता है या सिर्फ गुजरात वालों को ऐसा लगता है? गुजरात वालों बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कहा गाना लगाना है यार बदलना जाना मौसम की तरह, अभी लगाना है तो मैंने कहा अभी लगाता हूं। अब सोने पे सुहागा उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा समझ गए आप, उन्होंने कहा ये गाना आपके लिए है स्यापा, वो भी मेरे गल में डाला आपने। ठीक है जनाब आप भी कर ले, बच्चा देख के हर कोई चढ़ाई करता है, आप क्यों पीछे रहेंगी, आप क्यों पीछे रहेंगी जनाब। गुजरात वाले, यहाँ यूके वाले, ब्रेडफोर्ड वाले, लीड्स वाले सारे काशिफ पे चढ़ाई करते हैं मौका देख देख के, तो वो गुजरात से क्यों आप पीछे रहेंगे। अच्छा जी, गुजरात वाले भी आए और मुजफ्फराबाद वाले भी आए, सिर्फ इस्लामाबाद वाले नहीं आए, पिंडी लाहौर कराची वाले और पेशावर वाले नहीं आए अभी तक। जनाब बिल्कुल मुजफ्फराबाद से तबस्सुम है, कहती है नेट खोल गया, पहले खाली वाईफाई खुला था अब मोबाइल पे भी नेट खोल गया। हम गज वज के आपका शो सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कहती हैं गाने की फरमाइश क्या करूं, मैंने कहा क्यों। कहती हैं आपको टिकटॉक पे देखते रहते हैं, टिकटॉक पे आपकी वीडियोस में इतने जबरदस्त जबरदस्त गाने आपने बैकग्राउंड पे लगाए होते हैं तो वो सुन सुन के इतना अच्छा लगता है आपको देख के, हाय माशाल्लाह कहा करें देखते हुए। अच्छा आप ही को अच्छा लगता हूँ, बाकी तो ब्रेडफोर्ड वाले यूके वाले तो लगता है टिकटॉक यूज ही नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो काशिफ को देख के ना ऐसे ऊपर स्वाइप कर देते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा, इतने कोजे लगते हैं हम आपको, तो आप अपनी आंखों ऑप्टिशियन की अपॉइंटमेंट बनाए ये मैंने नहीं कहा, ये तबस्सुम ने कहा, मैंने तबस्सुम से यही कहा, तबस्सुम लगता है आप ही मेरी टिकटॉक फॉलो करती हैं, देखती हैं जितने शौक से आप बता रही हैं, यहाँ तो कोई जिक्र नहीं करता यूके में हम बैठे हैं, तो कहती हैं उनको अपनी आप बोलें कि आंखें चेक करवाएं। मैंने बोल दिया तबस्सुम, बल्कि जितना आपने बोला उसके ऊपर दो तीन मिर्च मसाले लगा के टॉप अप करके बोला है, मुझे तो बहाना चाहिए था ना। खैर तबस्सुम ये गाना आपके लिए होगा क्योंकि आप मौसम की तरह नहीं बदलती, लेकिन जनाब जो मौसम की तरह बदल गए हैं, हाय याद आएंगे आपको वो अपने, कंधी च टकरा मार मार रोसो तुसा। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं, आप ऐसे ही ना दिल पे ले लिया करें। जनाब ब्रेक के बाद यही गाना होगा हिट्स ऑफ द आवर में, मीन टाइम
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio.
2: From the Sky News Centre at 3, Elon Musk is among tech bosses who've expressed support for slowing the progress of artificial intelligence. The calls have been led by Anthropic Chief Executive Dario Amodei, who's warned AI could take over the entire internet within months. But US President Donald Trump seems to have no intention of slamming the brakes on.
3: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins. But I think you have a lot of negative forces that are bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
2: The head of the TUC has attacked the £72 million donations to Reform, warning they're causing a crisis in the UK's democracy. Community Secretary Angela Rayner has suggested ministers could still impose a cap on political gifts. Six people are dead and around 130 missing after an Indonesian passenger ship capsized in the Java Sea. It's thought to have sunk in bad weather. A 76-year-old man has been charged with concealing his identity at an anti-immigration protest in Portsmouth yesterday. Police had warned they'd use powers to arrest demonstrators wearing face coverings. A fifth fire in as many years is being investigated at a Grade 2 listed building featured in Peaky Blinders and Downton Abbey. Crews were called out to Dalton Mills at Keighley in West Yorkshire last night. In sport, Manchester City aim to make it four Premier League wins from four when they go to rivals United this afternoon. Boss Enzo Maresca believes a strong display would send out another statement to the rest of the division.
4: We know how important is a derby, especially here for the club, for the fans, for everyone. So it's a special game, and the most important thing that we can do is try to be ourselves in the way we have been until today, and then we see the final result.
2: Brighton have a 1-0 lead going into the second half at Strugglers Coventry. Rangers extended their winning run to five matches with a 3-0 victory at home to Celtic in the quarter-final of the Scottish League Cup. That's the latest. I'm Nick Crashey.
5: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewellers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewellers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274 056 014.

जनाब आगे हम आगे और आपके लिए यहाँ पे मौजूद और क्या करें, सबको राजी रखना होता है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद थे और सबसे पहले बात करेंगे सामिया की। सामिया दोबारा से हमारे साथ शामिल हैं और कहती हैं आज मैं आपके साथ साथ ही हूँ। ठीक हो गया जनाब, अगर आप हमारे साथ हैं तो जी आए नू वेलकम, खुश आमदीद आपको और सब सुनने वालों को जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है। कितने सो तो सी जनाब, लास्ट आवर आपने मिस किया लेकिन सामिया ने मिस नहीं किया। सामिया ने कॉल करके बताया, कहती है काशिफ आपने कहा मुजफ्फराबाद वाले तबस्सम आपको देखती है टिकटॉक पे, तो आपने ये क्यों गलत बात क्यों की है, मतलब यूके वाले नहीं देखते आपको, फॉलो नहीं करते। मैंने कहा क्यों, कौन करता है? कहती हैं हम नहीं देखते आपको, हम सुबह शाम आप ही को तो देखते हैं टिकटॉक में, और आपने हमें इग्नोर किया और आपने गलत बयानी की है। जनाब हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं और हलीमा भी लड़ाई करने आ गई जैसे ही हमने ये बात बोली। उन्होंने कहा काशिफ आपने ये बात बोली कैसे? ठीक हो गया हलीमा, हलीमा भी जनाब मुझे टिकटॉक पे देखती हैं, सामिया भी, और सामिया की मम्मी खास तौर पे सरकार आप बोलें आप बोलें, पीछे रह क्या गया बताने को, गल गई मोक किला गया ठोक। जनाब आप सुन रहे हैं काशिफ को, मस्ती मजाक होता है संडे यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह, बल्कि बच्चों से भी छोटे काकों की तरह की बातें होती हैं, पागलों वाली दीवानों वाली। जी तुसने वारे चे सुनो ना, निस वारे चे बर्दाश्त करो जनाब, और कौन हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा, अब तो हम कुर्सी समेत चुके गए हैं और छत में जाके लगे हैं सनराइज रेडियो के स्टूडियो के, कुर्सी समेत यानी कि हम नहीं कुर्सी भी हमारी जनाब चुकने गई है और जाके छत में वजी है, क्योंकि वजह बड़ी खास है। सामिया की मम्मी आंटी जी हमें सुन रही हैं, आंटी जी देख लें, हमें पता था एक दिन हमारी मेहनत हमारी नियत रंग लाएगी, कोई चन चढ़ाएगी, मुझे पता था। मुझे मेरी मम्मी भी बोलती हैं अक्सर जब वो मेरा शो सुनती हैं तो हंसती हैं और कहती हैं पुत्र काशिफ जड़ी गल्लां तू उत्थे करना ना ना करया कर। मैं कहा क्यों मम्मी जी? कहती हैं पुत्र नजर लग सी आ। मैंने कहा मम्मा मैं दुआ शुआ करके जाता हूँ और मेरे पीछे आपकी भी दुआ होती है। कहते नहीं पुत्र नहीं, मुझे डर लगता है तुम्हें नजर लगेगी। अच्छा मुझे यकीन नहीं आता था, मैंने कहा माँ जी हैं वालदा हैं तो ऐसे ही दिल बड़ा करती हैं हौसला बढ़ाती हैं, माएँ तो बच्चों की बेवकूफियां भी कहती हैं मेरा पुत्र। ओ हमारे डैडी कहते होते हैं कि पुत्र डाकू भी हो है ना, तो माँ कहती है हाय मेरा पुत्र, नाना मेरा पुत्र तो मासूम है, मेरे पुत्र जी सादा तो कोई है ही नहीं। तो मैं जनाब ये सोचता था कि हमारी वालदा हैं तो इसलिए उन्होंने ना वैसे ही हमारा दिल शेर बब्बर शेर का करने के लिए ना तारीफ करती रहती हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन आज जनाब कुर्सी समेत काम चुकने गया है ये सुन के कि सामिया की मम्मी भी हमें सुन रही है और वो कहती है काशिव तेरी इतनी उम्र नहीं है पर ए कदा कदा तेरे अंदर केड़े बुढ़े नी रूह आ चढ़ी। कहती है कि कहां से कहां से कैसे ये तुम इतनी बड़ी बड़ी और काम की और गहरी बातें इस छोटी सी उम्रिया में नदानी वाली उम्र में कैसे कर लेते हो। सामिया हंस रही है और सामिया की अम्मी भी हंस रही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आप सुनती रहे ये गाना खास तौर पे आपके लिए, और बिल्कुल मेरा मूड आपने बना दिया। और यकीन करें आंटी जी सामिया से अक्सर बात होती है, अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा लगता है पता है, पर आपके बारे में कि आज आप भी हमें सुन रही हैं और हमारे बारे में आपके जो विचार जो ख्यालात जो आपकी थॉट्स हैं और कितने गौर से आप हमें सुनती हैं ये सुन के पता है मेरा दिल एक ही दिल था, आखिरी आखिरी पीस था मेरे पास, और वो पता क्या हुआ आपको,
बता दूं, सबके सामने बता दूं, जब से मुझे ये पता लगा ना चंद मिनट पहले कि आप मुझे इतने गौर से सुनती हैं, मुझे लगता है मैं ऐसे टटोल टटोल के देख रहा हूं बाईं तरफ अपने सीने पे हाथ लगा लगा के, मुझे लगता है मेरा दिल चोरी हो गया है, सीने में दिल रहा ही नहीं। आंटी जी आपकी वजह से मुझे मेरे सीने में दिल महसूस ही नहीं हो रहा। और क्या सुनाऊं कहानी, बाकी आप समझदार हैं।

0: Sunrise play and help Raj race back to the studio in Sunrise Studio Rush. Test your film knowledge with our Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more.
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300
4: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
0: जी जनाब कॉलर आई हमारे साथ उन्होंने कॉल की नाम नहीं बताया लेकिन उन्होंने कहा कि आपके गीत भी बड़े अच्छे होते हैं शायरी भी कभी जब आप करते हैं अच्छी लगती है लेकिन आपकी बातें आपने कहा जो सामिया की मम्मी ने आंटी जी ने जो भी आपके बारे में कुछ कहा कि आप कभी कभी बड़ी गहरी बात कर जाते हैं और पता लगता है कि वो आप दिल से कर रहे हैं तो आपने कहा कि आप बहुत कुछ सीखती हैं हमसे बेड़ा गर्क ठीक है जनाब आप सीखती हैं मान लिया बहुत शुक्रिया आपने दिल हमारा बब्बर शेर का कर दिया थैंक यू सो मच शॉर्ट एंड स्वीट कॉल और ये गाना मेरी मर्जी का खास तौर पे आपके लिए और आपके इन चंद खूबसूरत से जो सेकंड्स थे जो आपने हमें दिए और खूबसूरत सी बात उसमें आपने जैसे एक माला में फूल परोते हैं आपने उस तरह से चंद सेकंड्स में मैं देख रहा था टाइम कि आपकी बड़ी स्वीट सी शॉर्ट सी कॉल थी और आपने अपने मतलब की बात किस तरह से हमारे दिल में उसको नक्श कर दिया बहुत शुक्रिया थैंक यू अच्छा वैसे आपको यहां होना चाहिए मुझे लगता है मेरी जगह कुछ लोग वो क्या कहते हैं कूजे में बंद कर देते हैं आए हाय गाली मुका देते हैं और मुझे अपनी बात समझाने के लिए आपको कितनी देर लग जाती है ना हाय कुछ सादा भी ना हो सादा हो तो सीधा ना हो बिल्कुल जलेबी की तरह मेरी तरह जनाब आपने कॉल की और हमारा ध्यान आपकी बातों से हट ही नहीं रहा जादूगर हैं आप लेकिन कोई बात नहीं हम भी जादू चलाएंगे काला जादू नहीं सीखा हमने पर ये बातों का जादू कुछ करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो आप दोबारा कॉल करेंगे आपने वादा किया जाते जाते आपके वादे ने पता नहीं क्यों जज्बात बदल दिए ऐसा साथ बदल दिए तनवीर अख्तर जी तुसा बीमार हो तो फिर भी तुसा कॉल की सी थोड़ी देर पहले थोड़ा लेट हो गया लेकिन क्योंकि तुसा आज बड़े मूड हो पता नहीं मौसम की वजह तू या बीमार हो तो वास्ता कोई तुसा आखने हो कि जेरे गाने कुमार सानू ने गाने लाए ना तुसा वो बहुत मजा करने पे तै और भी गाना लाओ कुमार सानू ना तो मैं कोशिश करसा जी जेरे बीमार ने उन्हें वास्ते दुआ है कि रब तुसा की सेहत दिया है तो माड़ी कोशिश ही होनी है बाकी रब नीयत जानना अगर किरे कोलो ना गल होनी पी सी कोई ना तो भुली ना गया कोई है सही सी कोलर मेल कोलर थे जनाब हमारे साथ एक अब मैंने उनका नाम तो सबका लिया लेकिन अब मुझे याद नहीं हो रहा कि ये बात मेरी किसके साथ हुई है मैं यही कह रहा था उनको भी कि नीयत रब जानता है कोशिश होती है कि खल्के खुदा को थोड़ी देर के लिए खुश किए जाए जितनी रब ने इजाजत दी है कोशिश तो ये है कि आपकी जिंदगी के सारे गम हमेशा के लिए आपको बुला दिए जाए, उनका हल किया जाए, लेकिन जितनी रब ने इस्तेआत दी है कोशिश है कि उतने चादर में पांव फैलाएं और आपको कुछ देर के लिए बिल्कुल आपकी तकलीफों से, गमों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, स्ट्रेस से, परेशानियों से दूर ले जाऊं मैं आप, बस ये कोशिश होती है। अच्छा, इतना सा मेरे दिल में ये ट्रिक सीक्रेट और ये नियत जिस पे मैं अमल करता हूं और बस कुछ बात बन जाती है थोड़ी बहुत। बाकी आपका, आपकी कॉल्स, आपका हौसला, आपके लफ्ज मुझे हौसला देते हैं। अच्छा, हौसला देने के लिए, साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए जनाब एक ज़र्फ चाहिए होता है, और ये ज़र्फ सच्ची बात कहूँगा ओनियर हर किसी के पास नहीं होता है। कहने को आपके दोस्त बेशुमार होंगे, मैंने भी ज़िंदगी देखी है। जैसे सामिया की मम्मी ने गेस किया कि शायद कुछ चोटें, कुछ बातें, कुछ हालात में से हम गुजरे हैं, या कुछ किताबें ज़्यादा रगड़ के घोल के पी हैं, तो उनको वो तजर्बा उनका ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो उनको महसूस हुआ कि कोई बुढ़ी रूह मेरे में उतर जाती है इस उम्र में। तो जनाब जब आप हालात से गुजरते हैं, कुछ लोगों को नज़ारे देखने का शौक होता है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को दुनिया घूमने का शौक होता है, कुछ लोगों को रुपया पैसा प्रॉपर्टीज बनाने का शौक होता है, कुछ लोगों को लोगों की खूबसूरती जाहिरी देखने का शौक होता है। अपनी बात करें हम तो, हमें शौक है लोगों को, हालात को किताब समझ के पढ़ने का। तो शायद इस वजह से, या कुछ रब का करम, या माँ बाप की तरबियत, या आप सबका साथ जो इतने सालों से आप सबसे भी बहुत कुछ सीखा, अभी भी लगता है बहुत कुछ सीखना है आपसे, वक्त से, हालात से, जिंदगी ने जितनी मोहलत दी है उससे। लेकिन जनाब जिंदगी की इस मोहलत में, जिंदगी की इस जर्नी में, जिंदगी के इस रास्ते में, जिंदगी के इस सफर में कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, शामिल होते हैं, कुछ साथ निभाने वाले निभाने के लिए आते हैं, और कुछ आपको कुछ आजमाने के लिए आते हैं, है ना? दिल को बात लगेगी, अगली बात सुनिए। लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको कुछ या बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। याद रखिएगा, इस बात से आपको बड़ा हौसला होगा, कुछ टूटे दिलों को, कुछ जख्मी दिलों को, कुछ पुरानी चुभती हुई कड़वी यादों को, आज के बाद आप मेरी बात याद रखें तो आपको ये कड़वी कड़वी नहीं लगेंगी, चुभेंगी नहीं वो बातें, वो लोग, उनकी बेवफाई, उनके वो झूठे वादे आपको तकलीफ नहीं देंगे। याद रखिएगा, जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है, हमेशा साथ रहने वाली जात सिर्फ रब की है। सब पे भरोसा करें एक हद तक, सबकी बातों, वादों, कसमों पे इतबार करें एक हद तक, बिना हद और बेहद एतबार, प्यार, यकीन सिर्फ रब का, जिसने आपको क्रिएट किया। हमारे वालिद साहब हमें अक्सर एक स्टोरी सुनाया करते थे, आप बीती है वो आपके साथ स्टोरी की तरह शेयर करता हूं। आज के बाद ये कहानी आपने याद रखनी है। मेरी बर्थडे थी, जी जी बिल्कुल मेरी बर्थडे, तो मेरे वालिद साहब को मैंने कहा कि मुझे मेरी बर्थडे पे, मेरी सालगिरह पे, मेरे सारे दोस्त, जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, वो मुझे मेरी बर्थडे पे चाहिए इस बार, मेरी ख्वाहिश इतनी सी है। उन्होंने कहा ठीक है। जब मेरी बर्थडे का दिन आया तो मैंने एक दिन पहले उनसे कहा कि वादा याद है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स सारे होने चाहिए मेरी बर्थडे पे। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, मेरी बर्थडे वाले दिन स्कूल डे भी था, छुट्टी नहीं थी, मुझे याद है। अच्छा, छुट्टी के बाद शाम को हमारी आंटी थी, उनके बच्चे भी स्कूल जाते थे सेम स्कूल में, तो जब वो हमें ले के घर पहुंची तो डैडी ने कहा था कि आगे तुम्हारी बर्थडे और तुम्हारे फ्रेंड्स और सब कुछ रेडी होगा। तो हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे सिर्फ 3 दोस्त घर पे मौजूद हैं यूनिफॉर्म के साथ, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ। और हम भी यूनिफॉर्म में घर पहुंचे, हमने सोचा था कि बड़ा गहमा गहमी बहुत सारे दोस्त होंगे। और ये देख के जनाब हमारा चेहरा उतर गया, मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ, उदास हो गया मैं। तो मैंने डैडी से नाराजगी का इजहार किया कि आपने वादा खिलाफी की है। मैंने कहा था मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स मेरी बर्थडे पे होने चाहिए। उन्होंने कहा मैंने तो सबको बुलाया, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स मौजूद हैं। तो मैंने कहा ये तो सिर्फ 3 हैं। तो वो मुझे थोड़ा साथ वाले रूम में लेके गए और उन्होंने कहा कि बेटा जब मैं तुम्हारे दोस्तों को इनवाइट करने गया, बेस्ट फ्रेंड्स को जितने भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, जहां जहां स्कूल में मोहल्ले में सबको मैंने इनवाइट किया था, और मैंने ये कहा था क्योंकि तुमने कहा था बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैंने उनको जाके ये कहा कि काशिफ की सेहत बड़ी खराब है, तो आजकल वो बहुत बीमार रहता है, ना किसी से ज्यादा बात करता है, ना कुछ स्कूल से आता है, तो वो पता नहीं क्या उसको हो गया है, तो बुझा बुझा ना बात करता है ज्यादा, ना कुछ, ना खाता है ना पीता है, उदास रहता है, तो बीमार बीमार सा लगता है। तो आपने घर पे आना है आज शाम को और उसका पता करना है, उससे दो चार बातें करनी है ताकि उसको अच्छा फील हो। तो कहती है मैंने तुम्हारे तमाम दोस्तों को, जितने भी 40-50 तुम्हारे दोस्त थे, सबको यही बात कही कि काशिफ बीमार है तो शाम को आपने घर पे आना है, तो उसके पास थोड़ी देर आप बैठ जाना। मैंने ना उनको इनविटेशन का, पार्टी का बोला, ना बर्थडे का बोला, ना सेलिब्रेशन का, ना खाबे, ना खाना पीना, ना कुछ भी नहीं। तो यकीन करो उन 40-50 तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स में से सबको इनवाइट जब मैंने इस तरह किया, तो सिर्फ ये 3 तुम्हारे दोस्त आए हैं, बाकी सारे नहीं आए हैं। ये सोच के, ये समझ के कि बीमार बंदे के लिए हम जाके शाम को थके आ रहे स्कूल के बाद क्या बोर होंगे। अंकल बता रहे हैं कि ना वो बात करता है, सीधे मुंह बुझा बुझा रहता है, ना कुछ खाने को होगा ना पीने को, तो इस वजह से उन 40-50 दोस्तों में से तुम्हारे ये सिर्फ 3 दोस्त आए हैं। ये सोच के, ये जान के कि ना कोई पार्टी होगी, ना खाबा, ना खाना, ना पीना, ना सेलिब्रेशन, सिर्फ बीमार दोस्त का पता करने जाना, उसका दिल बहलाने के लिए, उसका मूड अच्छा करने के लिए, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम यहां मौजूद हैं। तो मेरे बेटे काशिफ और मेरे सादे, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि तुमने कहा था कि बेस्ट फ्रेंड्स आने चाहिए तुम्हारी बर्थडे पे। तो बेटा तुम्हारे 40-50 दोस्तों की लिस्ट में से यही रहे तुम्हारे 3 बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ समझे आप? बात लंबी थी, बड़े काम किए आपके लिए, बात करने वाले, कसमें उठाने वाले, वादे करने वाले, बड़े बड़े बोल बना के आपको यकीन दिलाने वाले बड़े मिलेंगे आपको। काशिफ जैसे, मेरे जैसे कई आएंगे और कई जाएंगे। याद रखिएगा, साथ निभाने वाले आपके डाउन टाइम में, आपके बुरे वक्त में, आपके रेनी डेज में, आपके सख्त और मुश्किल हालात में साथ नहीं छोड़ेंगे वो, ये वक्त आपको बताएगा। ये मेरा जाती कॉल है, वक्त आपको सिखाएगा, आपको पहचान कराएगा कौन कीचड़ में हीरा है
5: तुझे प्यार करते
0: का। और कौन कांच की तरह बस चमकता रहा, कांच का टुकड़ा था, आप हीरा समझते रहे।

0: जी जनाब तेनू सूट सूट करदा जबरदस्त गीत और जनाब सोनिया ने हमें फरमाइश कर रखी है जनाब गाना था बलमा मूवी का बलवा या बलमा समथिंग लाइक दैट मैंने लिखा तो है आप वो क्या कहते हैं लिखे मूसा पढ़े खुदा है ना कोई इस तरह की बात तो जनाब मेरे से अपनी खुद की हैंडराइटिंग पढ़ी नहीं जाती है इसी वजह से लास्ट वीक भी सोनिया का जो गाना था ना अगर जिंदगी हो तो अगर जिंदगी हो तो बलमा मूवी का गाना है गालबन तो वो रह गया था याद है ना आपको अगर आपने सुना हो मुझे गौर से तो मैं लब रहा था ढूंढ रहा था अपने इस सामने जो मेरे पेज पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं आपके नाम लिखता हूँ जो जो कॉल्स आती हैं और वो एक खिचड़ी सी बन जाती है जनाब हमारी हैंडराइटिंग की तो मुझे ऐसे लगता है कि कीड़े मकोड़े से टुर रहे हैं एक पेज के ऊपर तो वो जनाब ज़रूर मैं अभी इस वीक फरमाइश आपकी पूरी करूँगा वो लास्ट वीक का उधार है ठीक है तो उधार वैसे रखना नहीं चाहिए अपनों में कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची होती है अब मोहब्बत का पता नहीं हमें कि मोहब्बत क्या होती है जिनको होती है उनको पता होगा कि मोहब्बत क्या होती है क्या बला है सुना है हमने मूवीज में बहुत बार गाने सुनते हैं गानों में भी सुना है इसका जिक्र आता है बार बार पर है क्या आपको पता है बताना चाहे हमें सिखाना चाहे समझाना चाहे इस मुश्किल से हमें आप भी अगर चाहें तो निकालना चाहें तो बताइएगा मोहब्बत क्या है 01274306666 बलमा मूवी का अगर जिंदगी हो लेकिन उससे पहले जनाब हमने एक और जिम्मेदारी उठा रखी है सामिया जनाब कॉल पे कॉल तारीख पे तारीख तो वो जनाब वो उन्होंने कहा है कि गाना है जनाब काशिफ पता नहीं 70s का है 80s का है 60s का है ये मुझे नहीं पता तो उन्होंने कहा है कि जनाब मोहब्बत के बारे में जब हमने सवाल किया है कि मोहब्बत के बारे में आप हमें बताना चाहें कि ये क्या बला है तो एकदम से जनाब हमारी जो फ़ोन लाइंस हैं दोनों की दोनों वो बिल्कुल बिजी हो गई हैं और उन पे दोस्त आ गए हैं और आना आके बताना चाहते हैं समझाना चाहते हैं अपने इस दोस्त काशिफ को इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं कि मोहब्बत क्या है चलो उनसे जानता हूँ मैं जब तक आप बताएंगे मुझे अपने तरीके से अपने सादे से अल्फाज में कि मोहब्बत क्या है तब तक उन्होंने कहा है सामिया ने सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे नूर जहां जी का गाना है तो वो जनाब इससे अच्छा मौका मुझे मेरे हाथ में आएगा नहीं वैसे तो मेरे हाथ में कभी कुछ आया ही नहीं जो भी हम ने चाह के हमारे हाथ आ जाए कुछ भी जिंदगी में तो वो जनाब हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है पता नहीं क्यों या उस कुछ में मसला है रेत की तरह है या हमारे हाथों में या हमें वो हुनर ही नहीं आया जैसे लोगों को आता है कि जो भी आए बस ऐसे जकड़ लें पकड़ लें हाथों से वो जाने नहीं देते हैं हम जो भी पकड़ते हैं पकड़ना चाहते हैं वो रेत की तरह फिसल जाता है हाथों से ऐसा क्यों होता है ये कोई हुनर है या ये क्या है चले बताइएगा बहुत सारे सवाल आपके साथ छोड़े हैं बहरहाल सामिया को हमारे दिल वो जो हमने कहानी बताई बर्थडे वाली बेस्ट फ्रेंड्स की खरे लोग सच्चे दोस्त आपकी ज़िंदगी में कम ही होते हैं कहने को ज़माना आपके साथ होता है पर बड़े कम लोग होते हैं जनाब जो आपके लिए आपके साथ होते हैं सच मानिएगा वरना कोई ना कोई किसी ना किसी की देख लें आप गौर कर लें अपनी जिंदगी में गर्ज के साथ लोग आपके आप पे वारी वारी और जान नसारी करते हैं आपसे वारी वारी जाते हैं कुर्बान जाते हैं किसी गर्ज के लिए बिना गर्ज के बेगर्ज होके शायद ही कोई आपके साथ चले तलख हकीकत है कड़वी बात है क्या करें अब जो है वो है एनीवेज जनाब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद आएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे. सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो में इस वक्त घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो गया है दिन के 3:46.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
4: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया.
5: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना.
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 pound ना कानस लाने ना 1 pound छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन
6: 01274488935. Energy bills and improve their home at the same time. Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

चीज अब मैं ता हो गया कुर्बान वे जनाब मुझे कुछ मतलब क्या कहूँ क्या ना कहूँ क्या करूँ क्या ना करूँ ठंडा ठार पानी पी भी मरूँ बड़ी देर बाद आके आज ऐसे लगा इस मौके पे कि आपका ये जो काशिफ है ना इतनी बातें करने वाला स्पीचलेस मोमेंट आ गया और यकीन करें कि रब नहीं जानता है मेरी कि एक तो आपको मैं एंटरटेन करने दिल से बिना किसी लालच गर्ज के वो रब जानता है लेकिन जब कोई मुझे आके आप सभी कॉल्स करते हैं आप सबकी बातें सर आंखों में बड़ी प्यारी दिल से बातें करते हैं लेकिन यार कोई बंदा आता है उफ कभी ना कभी ऐसी बात करता है कि मेरी आंखें भीग जाती हैं इमोशनल हो जाता हूँ सच में पता लगता है कि वो रब वाकई देख रहा है हर जगह और सुन रहा है और मेरी कबूलियत जिस नियत से मैं खलके खुदा की खिदमत करने आता हूँ अपने तरीके से वो रब शायद कबूल कर ले ऐसे यकीन सा वहम सा हो जाता है। अच्छा जी मैं बात क्यों ये कर रहा हूँ ये स्पीचलेस मोमेंट बड़े दिनों के बाद बड़े टाइम के बाद क्यों आया आज शादिम हुसैन शादिम उस वक्त कॉल पे मैं अपने इमोशंस का वो ऐसे ना एक बंदा फ्रीज सा हो जाता है एकदम से जब कोई आता है आप सभी आते हैं लेकिन फ्रीज नहीं होते हम भी इंसान हैं लेकिन आप जब कोई बात ऐसी करते हैं ना कि मेरे जैसा बंदा इतनी बातें बनाने करने वाला मानता हूं मैं इकरारे जुर्म करता हूं इतनी सारी बोंगियां जो बनाता हूं मैं आप ही के लिए बनाता हूं भाई साहब जो मर्जी कह लें इसको जो मर्जी नाम दे लें आपको खुश करने के लिए कोशिश करता हूं। अच्छा मैंने ये लफ्ज़ बोंगियों का जब इस्तेमाल किया ना शादम भाई के सामने क्योंकि वो तारीफ किए जा रहे थे और मैं कह रहा था तारीफ रब की मेरे दिल में भी यही होता है तारीफ रब की होती है अल्हम्दुलिल्लाह ऑल प्रेजेस फॉर अल्लाह लेकिन जनाब जब उन्होंने मेरी ये बात सुनी मैंने कहा यार मैं तो ऐसे ही कोई बोंगियाँ शोंगियाँ मारता हूँ कि आपका टाइम गुजर जाए तो जनाब वो एकदम से उन्होंने कहा नहीं काशिफ भाई हाय कहते हैं काशिफ भाई आपकी बातें इतनी पायदार और इतनी लेसन वाली मैं हैरान उनकी बातें सुन के अभी भी हैरान हूँ कहते हैं इतना सबक होता है उसमें और दिल को जाके आपकी बातें लगती हैं और इसी वजह से मैं संडे मेरी छुट्टी होती है काम से टैक्सी ड्राइव करता हूँ शादम भाई ये कह रहे हैं कि वो टैक्सी ड्राइव करते हैं माशाल्लाह और पूरा हफ्ता काम करते हैं लेकिन संडे उनकी छुट्टी होती है एक दिन कहते हैं लेकिन मैं घर से यकीन करो अल्लाह जानता है कि मैं आपको सुनने की वजह से सिर्फ 3 घंटे काम करता हूँ और साथ में आपको नॉन स्टॉप सुनता हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं सुकून से आपको घर से बाहर आके काम पे आपको सुनता रहूं और हंस के आपने कहा है यही बात है ना शादम भाई रब गवाह है इस बात का और यहाँ शादम भाई तो उन्होंने कहा कि साथ में 4 पैसे भी बन जाते हैं और साथ में आपको सुनता भी रहता हूँ और इसी वजह से मैं सिर्फ अपनी छुट्टी वाले दिन यकीन करें बाहर आता हूँ और आपकी बातें उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ बहुत कुछ समझ आती है और बड़ा मज़ा आता है बहुत लुत्फ आता है बस आप ये ना कहा करें कि आप बोंगियाँ मारते हैं कमाल हो गई है यार कमाल हो गई है अब बोंगी को बोंगी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ये तो मुझे भी पता है लेकिन शादम भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी उन्होंने बड़ा दिल खुश किया और मैं उस वक़्त कॉल पे उनको इतना कुछ नहीं उस चीज़ का इजहार कर पाया कि मेरे दिल को कैसे वो बात आपकी ना जाके ठा ठा करके लगी है बहुत अच्छा लगा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी जेन्युइन बातें आपकी लगी साजिद भाई आपने कहा जनाब मोहब्बत का आकाशिव आपको बताएं ये पागलपन होता है मैंने कहा आपको कैसे पता कहते हैं यार हमारे साथ हाथ हो चुका है हमारा पाला पड़ा है इससे मैंने कहा अच्छा ये बात है मैंने कहा मुझे तो नहीं अभी हाथ लगे कहते हैं रब करे आपको हाथ ना लगे मैंने कहा अच्छा खुद खा पी के हमें कहते हैं हम ना कहीं पीछे रह जाए हम ना कहीं खा लें हम ना कहीं कुछ पी लें
तो कहते हैं काशिफ जी जिसने लाहौर तक किया वो भी रोंदा है, तो जिन्हें नहीं तक किया वो भी रोंदा है, तो बाज आ जाओ तुसी।

खींचना। जी आखां में जी आखां में वारी वारी जावा सदके जावा थड़ियां गल्लां सुन के जमीन तो सीधा उड़ के मैं चन्न ते जावा।

0: स्पेशल पोते तुसी कहंदे हो सारे प्रेजेंटर सारे बड़े चंगे पर तू जिहड़ा ना कह दूं कहते तू मेरा स्पेशल पोते मेरा निक्का जिहा स्पेशल पोत किन्नी वारी तुसी कहा मैनू वाला पुत मैं गिणदा पिया सी रिकॉर्ड होंदियां ने साडियां कालां छे वारी तुसी कहा मैं हाले तीन वारी दसिया ते मैं ते इंज ना लाडो लाड होया पिया वा तुसी है भी मेरिया मावां वर्गे हो ते तुसी हमेशा मेरिया मावां वर्गे सो ते इंज ही रहोगे तुसी कहंदे हो मैं गुरुद्वारे तू काशिफ संडे सीधा घर आनी हाँ किते होर रस्ते च मैं रुकदी नहीं हाँ पता तैनू क्यों पता मैनू हैगा सी मैं तुहाडे नाल एवें फिर ना भोला जिहा बन के ना ते मैं क्या क्यों सीधा तीर तुसी गुरुद्वारे चो फिर आंदे हो मैनू मजे आंदे ने ना रेगुलर तुसी इन्ने सालां तू दसदे हो ते मैनू क्यों नहीं पता होएगा पर मैं जान बुझ के फिर ना कुछ सादा कुछ होर एक्सट्रा सादा बन के ना मैं तुहानू क्या फिर क्यों आंदे हो गुरुद्वारे तू सीधे घर तुसी क्या मैं आनी हाँ ते आ के फटाफट मैं रेडियो लानी हाँ ते पूरे तीन घंटे मैं बह के तेनू सुनदी रहनी हाँ ते तेनू पता मैं सुन सुन के तेनू हसदी रहनी हाँ ते मैं हस हस के इको गल सोचनी हाँ हाए मेरे पुत काशिफ नू एनिया गल्लां कित्थों आंदियां ने जबरदस्त सो स्वीट सो क्यूट यार हद हो गई है क्यूटनेस की आज हद हो गई है भाई कसम से मेरा रंग लाल हो गया है कन मेरे लाल हो गए हैं ऐसे जैसे मुझे बुखार हो गया है इतनी क्यूट कैसे हैं आप और इतना मान और मुझे बेटा कहती हैं आप इतनी स्वीट हैं खुद बहुत अच्छी हैं और जिस तरह से आपने कहानी सारी बताई तस्वीर कशी की मैंने भी वैसे ही बातें की और आप पहले ही कहती हैं मेरी बातें सुन सुन के आप हंसती हैं तो अब आपका क्या हाल हुआ होगा मैं तो सोच सोच के मेरा दिल डूबा डूबा जा रहा है आपको कुछ हो ना जाए हंसते हंसते बिल्कुल मैंने आपकी कॉपी की सही कॉपी की ना मिसिस कौर देख ले इतनी स्वीट तरीके से मिसिस कौर बातें करती हैं आपको अंदाजा हुआ कुछ आपको कह रहा हूं मिसिस कौर को नहीं कह रहा आप इतनी क्यूट आवाज उनकी ये आवाज तो मेरी कुछ भी नहीं और इतना क्यूट अंदाज बस कर दे काशिफ कंट्रोल कर बच्चे क्या हो जाता है तुझे ऑफ ट्रैक हो जाता है काशिफ तू स्लिप हो जाता है क्या करूं मीन टाइम जनाब शादम भाई आपने जो बातें की वो भी बस मेरे कानों में गूंज रही हैं और आज मुझे नींद नहीं आएगी उसके ऊपर मिसेस कौर की बातें सुन के क्यूट म्यूट सी और भी मुझे लगता है जो थोड़ी बहुत घंटा डेढ़ मेरी आंख लगनी थी रात को वो नहीं आएगी नींद नहीं आएगी आप क्यों इतनी क्यूट बातें करते हैं क्यों मेरी नींद चुराते हैं
1: नींद चुराई मेरी किसने
0: आपने कसमें रब दी आपने

0: The Sunrise Radio Listener's Choice Award 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues and artists you love. Voting will be exclusive to Listener's Club members. So join free now at sunrise.radio and keep listening for more details.
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300
4: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
0: जी जनाब तारिक जुल्फी भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सालों से आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं इसके लिए जनाब शुक्रिया का लफ्ज आज छोटा लग रहा है एनीवे जनाब आने वाला गीत आपके लिए और आपके साथ है इस वक्त आपके दोस्त मलक इसहाक और उनकी मिसिज हैं जनाब साथ में तो आप बड़ी मोहतरम तीनों हस्तियों के लिए आने वाला खूबसूरत सा गीत बिल्कुल आप सब की तरह जनाब ये तारिक जुल्फी भाई की बात नहीं कर रहा आप सब मतलब आपकी बात कर रहा हूं आप सब सुनने वाले उनके लिए तो गाना हो गया ना हमने बोल दिया अभी आपकी बात कर रहे हैं ये गाना जनाब जब लगेगा आपको पता लगेगा हमने सोचा इतनी देर से हिंदी में कह रहे हैं कि आपके लिए हमारा दिल क्या महसूस करता है शायद ना समझ आया हो फिर हमने उर्दू में भी कोशिश की आपको अपने जज्बात एहसासात का यकीन दिलाने की लेकिन क्या पता उर्दू में भी नाकामी हुई हो हमें आप तक ये इतला पहुंचाने में हमने सोचा फिर कि आपको बताएं कि जब जब आप का ख्याल आपकी मौजूदगी का एहसास हमें इसका यकीन आता है जब कॉल्स आती हैं आपकी आप बताते हैं आप किस प्यार से हमें सुन रहे हैं किस अंदाज में अपने रोजमर्रा के कामों में भी लगे हैं लेकिन हमारे साथ साथ है आपका ध्यान एक एक लफ्ज को आप तोलते हैं जांचते हैं समझते हैं गौर से सुनते हैं तो ये सारा काम सर अंजाम आप देते हैं हमारी बातों के साथ तो आपकी बातों से ये लगा पता कि आप बड़े गौर से हमें सुनते हैं हाय कलेजे को हाथ पढ़ाइए समझ के कि आप इतने गौर से हमें सुनते हैं तो फिर हमें ये गाना लगाना पड़ गया है कि जनाब इतना प्यार आपका जब हम तक पहुंचता है होती रोशनी है स्टूडियो में हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है खुशी के मारे तो दिल कहता है कि वाकई जमाने में अभी भी लोग लोगों से बिना देखे बिना गर्ज के प्यार कर सकते हैं काशिफ तू मान ले ये जान ले तो जनाब खुशी के मारे आंखों के आगे अंधेरा आया और पता नहीं क्या कुछ कहने को दिल चाहा फिर मैंने सोचा इससे भी ज्यादा अच्छा है कि हम गाने में इजहार करें इस वक्त जो ख्यालात हमारे दिमाग में दौड़ रहे हैं 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। दिल करता है कि बाल दे बतियां आप सारी की सारी, खुशी के मारे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, जिस्म सुन हो रहा है, आप मारे हमें संगलों के साथ ताकि जिस्म में पता लगे कि जनाब खुशी के मारे पता लगता है जान ही निकल जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा आपको बताएं कि बालों बत्तियां, क्योंकि काशिफ की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, खुशी के मारे मारो संगला नाल ताकि मुझे यकीन आए मैं कोई ये खूबसूरत सा ख्वाब तो नहीं देख रहा, ताकि मैं फड़कूं जनाब जब संगलों से आप मारे तो मैं फड़क जाऊं और मुझे यकीन आए कि ये ख्वाब नहीं ये हकीकत है जनाब, दुनिया में अभी भी प्यार करते हैं लोग रब के बनाए हुए बंधों के साथ, रब के बंदे प्यार करना जानते हैं, काश हम भी ये इजहार करना जानते प्यार का कि हमारा दिल और इसमें आपके लिए कितना प्यार है। पर क्या करें, सादगी, ये सादगी हमें मरवा देती है हर जगह, जहां जो कुछ कहना होता है, जितना कहना होता है, जैसे कहना होता है, उस वक्त हम कह नहीं पाते हैं। इसलिए ये गाना सुने शायद आपको यकीन आ जाए कि ताली दो हाथों से बजती है। आप प्यार करते हैं तो हम कौन सा यहाँ पे बैठे इनकार करते हैं, हम भी प्यार ही करते हैं।

0: सजना दा छोटा है पर सजन दे जहर दा टोटा है ना ओए होए कमाल है जनाब वहीद भाई क्या हाल है तुसना तुसन ता असा की बेहाल करी छोड़िया जड़िया गल्ला भाइया ने आने काशिफ भाई तू चिकी चिकी गल्ला कढ़ने हो पर कुत्थों कढ़ने हो ए गल्ला ता चंगिया चिकी ता कढ़ने हो ता साढ़े दिलै पर लगनिया पियां ता असा आखिया कोल करिए ते भराऊ की बाई छोड़िए भी असा छलनी हो गए कम हो गया साड़ा चलो तुसा ना कम हो गया ते कम साड़ा भी हो गया ते जे अग तुसा दर लगी है ते असा केड़ा फ्रीजरे च लगे हुए हाँ अग इधर भी चुखी लगी है कम दोवां पासे चुके आ बस और किसे त्रीए बंदे की ना बाया है वहीद भाई त्रिया रलिया तै आखने चुगा गलिया वहीद भाई असी जाने पे मी दिसने पे हो तुसा वहीद भाई असने बहुत सोना हो ते सारिया गल्ला नी तारीफ कीती है ते अपने आसेर की बचाई ता रखिया है वे किधर तुसा ने खूबसूरत खूबसूरत मुस्कुराहट की किधर नजर ना लगी जाए अपने नहीं कुछ नजर लग सी कुछ रख सो छिपाई ता एडा सोना आसा ना छिपाओ उसन हो वै या जनाब आसा हो वै तुसा ने नाला ना खूबसूरत जा ये रब ना दिते होना सारा कुछ माशाल्लाह आखने आसा नी नजर लग रही तुसा कॉल करी लिया करो असा की आइंदा भी ठीक है ते जनाब आखने तुसा सवाल बाया सारे अगे के आने एडिया मिठिया गल्लां काशिफ जी कुत्थों करने हो तक्के मिठा खाई कामने हो केरी डिश खाने हो मैं पापा संडे ने संडे राता ना बचे आ जरदा होना साढ़े घर सैटरडे जरदा बनना मोस्टली तो बचे होना तो सुबह जल्दी बिच हूँ मैं नवा काम शुरू किया जरदा बाना योगट बाना योगट क्या होना आए हुए गोरे हो जनाब दही बाने आ दही जरदा जरदे पर दही तो दही पर दो त्रै चम्मच चीनी तो यह खुराक खाई के तो लाई तो आवना तो फिर अगू गल तो फिर बननिया ना गल बनन ठीक है केस ना बनन बस केस बड़े औखे होने बची बचाई तो गल करने पापे तुसा की खुश करने वास्ते सारे पापड़ बेलना ये सारिया जलेबियां अपने नाजक हथा नाल ते गरम गरम जमाने ने तेले च तलना कि जलेबियां भी तलन जान ते हाथ भी ना सड़न गल समझ लगी है अला जी जरीना जी तुसा नी कॉल लेना बहुत शुक्रिया ते तुसा वास्ते भी गाना असा लाया तुसा की चंगा लगा नी हाले तो लाया ही कोई नहीं ना ये काशिफ और तरेस हो गए एडवांस हो गए गाना तो हाले लासा नजरीना जी ते फिर ये गाना आने वाला तुसा वास्ता उसी जरा ब्रेक तू बाद उसी ने आला ते तुसा बुझने हो तुसें चंगा लगना ते मुड़ भाई इश्तिया कॉल की थी उन्हें साड़ा नवा नाम पाया भाई काशिफ आने भाई काशिफ मैं जी भाई इश्तियाक आने गाने सोने लाने हो ते मैं गल्ला ना बुझने आने गल्लां ते बुझना ताई ते कॉल कीती ते मैं क्या इतराज क्या मारियां गल्लां पर आने इतराज कोई नहीं चंगियां लगियां ते कॉल कीती ना ते भाई इश्तियाक ये गाना आवने वाला तुसा वास्ते भी होसी ब्रेक तू बाद तुसा भी बहुत स्वीट ते क्यूट हो बहुत सादगी सी तुसा नी आवाजा विच माड़ियां गल्लां और तुसा दियां गल्लां मिलनियां ए दोए सादे हां सा मिकी लग रहा गल्लां तू ना मिकी पता लगा तुसा भी मारे यार सादा जे हो ते मैं भी सादा ते सादा सादे की लभ्या ते आने दोए गश पिया ए गल सुनी सुनी लगनी इसे तरह या मैं कोई और तरह पढ़ी है क्या करा सादा ना कोई गल्ला ना कह ना कह बनी जाना सियाने आने गल्लां ध्यान नाल करनियां चाहिए एक नुक्ता नहीं एक नुक्ता अपर ना थला थला ना अपर हो जाना ता मैरम ना मुजरम बनी जाना अगू समझी जाओ सादा कौन है मैं या तुसा समझी तो तुसा गए हो पर देर नाल समझे हो ना अला जनाब और भी कुसे असंगी कोल भाई सी काफी देर पहले ते उन आ गया काशिव मैं सड़ी गई हूं मैं आए क्या होया ने फिर अगला जुमला रब जानना उन आया मैं पुज गई हूं मैं आए क्या होया ने अरे मैं कोला होई गई हूं मैं आए बेड़ा गरक क्या होया कहने सड़ी भी गए पुजी भी गए कोला भी होई गए क्या होया ने असवें पे इस वेला बंद करने पे नाल कुकिंग करने पे किचन इच बत्ती ने बत्ती पता नहीं होनी सुमराज बत्ती हो सनी या कितनी हो सन गल करना पे जनाब आंटी दीबा ने दंदा नहीं जरे कटने पे तमी बड़ी मार पैसी जी जी मैं गला करना ना उन्होंने नाल बड़ी मार पैसी जी जरा मैं उन्होंने हथे चढ़ी गया ना तब मुड़ फिर किसी और ने हथे चढ़ने जोगा ना रहन लगा ये मिकी पता अपने अंजाम में मिकी पता मैं फिर ये सोची के डर ले गया कि अंजाम तो वही होसी जरा होसी काशिव जी चार गल्ला तो भाई किनो कुट खाने तू पहले ते आंटी दीबा अल्लाह तुसें खुश रखे तुसा बहुत हसने पियो मिकी तुसने आसे नी वाज इत्थे तोड़ आवनी पी बी डी फाइव तू इत्थे थोड़ी तोड़ साढ़े स्टूडियो च आवनी पी रब तुसा सारियां की इसे तरह हसना वसना रखे साढ़ा कै वै साढ़ा तै खुजरी गया हसने ना टैम हूँ सहने नी जिम्मेदारी लगी भी तुसें खुश करने नी अल्लाह जी कॉलर बहुत सारे और आई गए लगना अज लेट उठे सारे संडे आले ध्याड़ा तो कोई गल नहीं करने गल पहले अपनी गल तो मुकाई की नहीं है फिर पता क्या होना गला अद्धे च छोरी जाना मैं तो फिर मारे पेटे च होने मरोड़ मरोड़ तो पता नहीं ना कदा ना कदा तुसा की भी तो उठे हो सन कि नहीं चलो आंटी दीपा आने जनाब काशिव मैं सरी गई पुजी गई कोला हो गई वजह यह है कि तू बाकी सारिया नवियां नवियां आंटियां बनाना जुलना है सारिया नवियां नवियां मावां बनाना जुलना है तो जेरी तुहाड़ी मां है पिछले इतने सालां तू मैं तुगी पुत्र बनाया तो तू मिकी आंटी आंटी तो मैं पुत्र पुत्र आखनी थकनी कोना तुकी तो तू सारिया आंटियां गणवाइया सारिया मावां गणवाइया तो इस माऊ की भुली गई है अपनी आंटी दीबा की तू भुली गई तो मैं ये सोची सोची तै सड़ी गई पुजी गई तै कोला होई गई मैं आंटी जी क्या गल्लां करने हो भुला तो मैं तो क्या करने हो ये तो जदू सह बंद हो सन तो भुलसा तुसा सारिया की जिचर सह चलने तुसनिया यादा चलनिया मारे दमागा विच ते दिलै विच ते दुआवां विच ते तुसा डेरा पाया कब्जा किते हमारिया दुआवां विच काबज ग्रुप हो तुसा कब्जा ग्रुप नाल तुसा ना तल्लक है ये आंटी दीबा की ना आखना ये तुसा सारिया की आखना तुसा की कब्जा ग्रुप हो तुसा मारे दिलै पर भी कब्जा तुसा किते आ गल्लां मिकी कोल करी करी के आखने हो मारिया दुआवां च भी तुसा डेरा लाया तुसा समझने क्या हो अपने आप है कि वैसे मी अज पता लगा तुसा बड़े होशियार हो एनीवेज जनाब ब्रेक के बाद गीत आएगा आप सबके लिए और कहीं ना जाइएगा वो गीत सुनिएगा जो आपको बताएगा कि आप हमारे लिए क्या है
1: Sunrise Radio, Trendsetters in Asian Broadcasting. We lead, others follow.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
3: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
2: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
4: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइटन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर अ 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks, and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078-341 77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
5: Sunrise and Music.
0: जनाब कॉल्स जिस स्पीड से आ रही है मुझे वापस आना पड़ता है. दिल नहीं था मेरा, दिल था कि सीधा गाने ब्रेक के बाद आप बोल सुने कि आपकी शान में हमारा दिल क्या क्या गवाहियां देता है. लेकिन जनाब मुदस्सर भाई की कॉल दोबारा आई, हम पकड़ नहीं पाए. उनकी आनियां जानियां फुर्तियां ही इतनी हैं. बहरहाल ये गाना उनके लिए भी, काम काज में मसरूफ हैं जनाब. आप भी जहां जहां हमारे दिल के अलावा भी आपने जहां जहां काशिफ बेचारे के दिल के अलावा भी आपने जहां जहां डेरे डाल रखे हैं हजूर, वहां वहां खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे. मीरपुर में रहे, बलूचिस्तान में, सिंध में, सरहद में, पंजाब में या मुजफ्फराबाद में रहे, शाद और आबाद रहे बस. क्यों? अच्छा बात आई जनाब, इतनी मीठी बात हमने क्यों की? मीठी आवाज पूरा हफ्ता, वो जो होता है ना शायद मनुका नहीं, वो खाने की मुझे जरूरत नहीं है. खालस छत्ते वाला नहीं होता, वो छत्ते में आप हाथ डाल के छत्ता वो चबाते हैं. छत्ता कभी खाया आपने? हनी कॉम के समेत आपने शहद खाया है? ला फिर की पता तानू, हाय हाय. जब तुसी उंज शहद नहीं खादा फिर तुसी कुछ भी नहीं खादा. ए छत्ते समेत जनाब वो जड़ा छत्ते नालू ला के ना बंदा शहद खांदा ना, हाय हाय हाय. अच्छा लियाकत भाई आज तुहाडी वजह तो मैं ऑफ ट्रैक फिर हो गया. एडिया सोहनिया गल्ला, मैनू तो लम्मी लानी पैंदी है ना अपनी गल ते गल दा मतलब समझाण वास्ते. हाय लियाकत भाई तुसी किन्ने चलाक हो, किन्ने तुहानू सिखाइया ने, कौन है तुहाडा उस्ताद, तुहाडे पिछे किदा हथ है मैनू दसो. इंज आयो तुसी इंज ते इंज गल्लां करके अपनी गल दा मतलब समझा के ते तुसी ओ जा रहे हो. साढ़े दिल ने हाले तेज तेज तुहाडियां गल्लां सुन के धड़कना शुरू ही किया सी ते तुसी टुर भी गए हो. किड्डे फनकार हो तुसी वैसे, ना साडा लांदे हो सानू इल्जाम देंदे हो कि असी फनकार हाँ गल्लां दे, ते आपे तुसी कलाकार हो क्या गल्लां करदे हो. सुनियो तुसी आख्या यही आख्या ना कि मैं बड़ी देर तुहाडियां गल्लां सुन सुन के कॉल करने तो दिल करे फिर तुहाडियां गल्लां सुना, फिर मैं आखा नहीं पहले गल्लां सुन लवां फिर कॉल करांगा. फिर तुसी साडियां गल्लां च गुम हो गए, फिर तुसी क्या नहीं हाले मैं गल्लां होर सुनांगा फिर कॉल करांगा. इन्ना ते कहंदे ने सोची पिया ते बंदा गया, लेकिन खैर तुसी सानू फाड़ लिया. चंगा लगा जनाब तुसी आए ते बड़ी रौनक लगी साढ़े दिल दे विच. नहीं है मैं लियाकत भाई नू हुण नहीं कह रहा, सुनियो की करदे हो. मैं क्या मैं कल्ला ही साधा वा, तुसी भी साधे हो सारे ही, ये थाड़ी गल कर रहा थाड़े सारियां दी. हुण बड़े साधे हो तुसी भी, बड़ी रौनक लाई तुसी. शो दे एंड तक आ गए जनाब, हुण बैक टू बैक गाने होणगे, तुसी होवोगे ते साडियां यादां दे विच गुमसुम. जे होगे ते ठीक है, नहीं ते मैं कल्ला ही इस ब्रैडफोर्ड दे विच गवाचिया गवाचिया तुहाडी याद विच. उदास उदास मजनू बनके ऐशे वधी हुई ऐ बाल बिखरे हुए ऐ कमीज दे बटन खुले हुए ऐ पीला पीला रंग चेहरे ते उदासी ते वाइयां उड़ दियां ते गवाचिया गवाचिया जे तुहानू ब्रेडफोर्ड दियां रोडां ते कोई नजर आए ते समझ आइयो ए कोई गैर नहीं होएगा ए थोड़ी याद इच गवाचे आ दीवाना थोड़ा अपना वीर ए बंदा ना चीज काशिफ होएगा ए मेरा हुलिया पछाण लिया जे थोड़ी वजह तू होएगा मेरा हाल हुण जुदाई तू बाद

0: जी जनाब, मेरे रश के कमर हैं आप जनाब, और मजा आ गया आपका साथ, आपका प्यार, आपका खलूस हमें घेरे रखा इस प्यार ने, इस खलूस ने, और मजा आ गया।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है जुदाई का, नहीं मतलब 4:42 हो गए हैं।
2: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंघम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165, Raman 078 341778666, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 07706923788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
7: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
8: Sunrise Music.
0: Fancy a bit of fun? Visit Sunrise, play and help Raj race back to the studio in Sunrise Studio Rush. Test your film knowledge with our Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. sunriseradiogold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
0: तो जनाब, आ गई वो घड़ी जिसका आपको बेचैनी से इंतजार था। थोड़ा भी नहीं बेशुमार था। एक आध बार भी नहीं, बार बार था। वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था, यानी आपकी जान छूटने वाली है मुझसे, आपके अपने काशिप से। जनाब, जाने से पहले बड़े दिल से, बड़े मान से, रब को गवाह रख के, बड़ी उम्मीद से, एक दुआ समझ के, ये आस लेके ये बात करता हूं कि शायद कोई तो मेरी इस बात पे अमल करके देखेगा। और मेरे लिए बख्शिश की वजह, आसानियों की वजह इस जहान में, अगले जहान में, हर जहान में यही बात शायद बन जाए। ये उम्मीद, ये वहम, ये खाम ख्याली मैंने पाल रखी है। तो वो बात क्या है कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल ना टूटे, कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें ही आए, दूसरों की जिंदगियों में खुशियां ही आए, अगर आए आपकी वजह से, गम ना आए, तकलीफें ना आए, मुश्किलात ना आए, आपकी वजह से। और यकीन जानिएगा मेरी इस बात का 100% नहीं 1000% यकीन कीजिएगा कि अगर आप दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की, किसी भी तरह की, किसी भी लेवल पे थोड़ी बहुत जितनी भी आसानियां पैदा कर सकते हैं, उसकी वजह बन सकते हैं, आसानियां बांटना ये रब का काम, वसीला अगर आप बन सके उन आसानियों का रब की मखलूक की जिंदगियों में, रब के बनाए हुए इंसानों की जिंदगियों में, अगर आप आसानियों की वजह या वसीला बन सके, ये कोशिश करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि रब आपको आप ही की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आसानियों के ऐसे ऐसे मौजज़े दिखाएगा कि आपको मुझ नाचीज बंदे की, मुझ कम अकल हकीर फकीर बंदे की, मुझ अनपढ़ जाहिल बंदे की, ये एक बात बड़े काम की लगेगी कि काशिफ ने ये बात बड़े यकीन के साथ, बड़े दिल से पढ़ के ये बात अपनी जुबान से अदा कर रहा हूं, रब की इजाजत से इन सांसों की डोर जिसका अख्तियार रब के हाथ में है, कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं, मैं हूं, मेरा रब है और आप सब हैं। बस ये छोटी सी बात याद रखें, प्लीज, मैं कभी प्लीज नहीं कहता हूं, इस बात के साथ सिर्फ प्लीज कहता हूं, पूरा शो अगर आपने सुना हो या हमेशा सुनते हैं, प्लीज मैं कभी नहीं कहता, इस बात के साथ बराए मेहरबानी, क्योंकि इस बात के साथ कितने लोगों की खुशियां आसानियां जुड़ी होंगी, तो मुझे आपके आगे ये दरख्वास्त करने में, बराए मेहरबानी करके ये इल्तजा करने में कोई उजर नहीं, कोई मुझे एतराज नहीं, क्योंकि इससे रब की मखलूक कितने ही आपके जानने वाले, आपके वास्ते में, आपके ताल्लुक वाले, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके खून के रिश्ते, आपके गैर खूनी रिश्ते, आपकी जिंदगी में जिनसे आपका वास्ता अभी पड़ेगा या पड़ रहा है, अगर उनकी जिंदगियों में आप, मेरी जिंदगी नहीं, अगर उनकी जिंदगी में आप आसानी की वजह या वसीला बन जाएं, मेरी इस बात को याद रखने के बाद, तो बाकी आप समझदार हैं, मेरी जिंदगी भर की कमाई यही बात हो सकती है रब की बारगाह में, ये मेरा वहम हो सकता है कम अकली की वजह से, या शायद यही मेरी पूरी जिंदगी की हकीकत हो सकती है। अगर हो सके अपने बच्चों में, अपनी अगली नस्लों में, अपने घर वालों में, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, खैर की बात पहले अपने घर से, अपने प्यारों से, अपने जानने वाले, अपने दोस्तों में, वहां से शुरू करें। और ये खैर की बात मैं आप सबसे शुरू करता हूं हमेशा, एक उम्मीद लेके हमेशा ये रगड़ लगाता हूं, इस बात की गर्दान रिपीट करता हूं, और कभी मुझे कभी एम्बेरसिंग या कभी कोई भी पछतावा भी नहीं हुआ कि मैं हर शो के एंड में ये बात के लिए दरख्वास्त इल्तजा करता हूं। कोशिश कीजिएगा प्लीज कि दूसरों की जिंदगियों में आप आसानियां बांटे, आसानियों की वजह बने, इससे दूसरों का भला और आपकी जिंदगी में आसानियों के मौजज़े रब आपको दिखाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपने साथ दिया, बड़ा प्यार दिया, बड़ा खलूस दिया, यकीन मानिए दिल से कह रहा हूं, तो रब आपको ये दुआ देता हूं आपकी नियत के मुताबिक, जो मेरा हौसला जिस जिसने बढ़ाया, कॉल की या ना की, साथ देते रहे, सुनते रहे या कॉल करके, रब आप सबको आपकी नियत के मुताबिक उससे बढ़ के उसका अजर दे, और मुझे मेरा रब जिस नीयत से मैं यहाँ पे आके शो किया, मैंने यहाँ ये महफिल सजाने की कोशिश की आपके प्यार के संग संग, रब मुझे मेरी नीयत के मुताबिक उसका इनाम दे, अजर दे, अपनी रहमत के हिसाब से वो रहमान है। अभी के लिए जनाब गड़ियान पहुंची जुदाइयों की, वछोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके ही पास आपके दिल में रहने की इस काशिफ के लिए गड़ियान पहुंची। यादों बातों चाहतों और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत फिर से होगी, तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा आप।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: मूव फॉर 10 इज हियर, द न्यू चैलेंज फ्रॉम डिस्को कैन दैट एवरीवन कैन जॉइन। मूव फॉर 10 मिनट्स 10 टाइम्स अ मंथ। आई हैव गॉट मोर एनर्जी, आई फील मोर कॉन्फिडेंट, आई एम स्लीपिंग बेटर। फ्रॉम अ स्ट्रेच इन द मॉर्निंग to a brisk walk around the park. No pressure, no strict schedule. Just move when it suits you. I've logged 3 sessions already and I'm feeling good. Women across the country are moving for 10 minutes 10 times this month. To join, search This Girl Can Move for 10.

गिरदनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

0: Something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner Sunrise Radio.
3: Move for 10 आ गया है. This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है. बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा. मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी. अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूं और बहुत अच्छा फील कर रही हूं. पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें. सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कान सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
4: ਕਹਿਣ ਲੋਹਾਰ ਆਸ਼ਕੋ ਚਿਆਂਦਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਸਰਾਇ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद द कार एंड इफ यू आर आउट एंड अबाउट, मेक श्योर यू स्टिक अराउंड विद द सनराइज रेडियो। एंड नेक्स्ट ट्रैक इज आई एम गोना बी प्लेइंग फॉर यू द हिट ऑफ द आवर। आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून। एंड यू नो व्हाट, and this track is going out to the person working away in the offices. Maybe you are working away a late shift tonight, and maybe you are behind with your work. This is a track that I will be playing all the Homosh listeners, not forgetting all the Chori Chori Chupke Chupke listeners as well. And this is the track going out to everybody locked in with the station, tuned with the station. This is the track. Enjoy.
1: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून, और आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल्स एज वेल, एंड यू नो व्हाट, थैंक यू, एंड यू मेड माय इवनिंग टुडे एज वेल. एंड मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक व्हिच आई एम गोइंग टू प्ले फॉर, आई थिंक आई बाय ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एज वेल. स्ट्रीमी जी हैं, ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप एंजॉय करेंगे. वी हैड अब्दुल कयूम साहब फ्रॉम फ्राइजिंगोल, राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ देने. फर्दन फर्दन आपके लिए सबके गीत होगा. मीन वाइल दिस ट्रैक आई एम गोइंग टू प्ले फॉर अतीका साहिबा, एंड सिमी जी हैं, ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. और हमारे साथी प्रेजेंटर हैं मैनचेस्टर वाले, वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और उन्होंने बड़ी ही तारीफ की है, बहुत अच्छा लगा. वेलकम जी एन खुश आमदीद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, ऑल योर लव एंड सपोर्ट. दिस इज द ट्रैक दैट आई विल बी प्लेइंग, एंड इफ यू आर ड्राइविंग एंड दिस ट्रैक इज गोना गो आउट यू एज वेल, एंड गोइंग बैक इन मेमोरी लेन, गोइंग बैक इन टाइम. This is one of the movie that I watched and I seen, and this movie is very, very, very, very close to me. And you know what? I do remember this movie, and it was going back in Amir Khan and Juhi Chawla, and it was such a beautiful movie. Two movies that I really enjoy, and one of them is this one, Kiamat Se Kiamat Tak. This is a beautiful movie, beautiful track. And another one that I enjoyed was 2026 was Sayara. If you have not seen the movie, and you definitely need to watch the movie as well, because that's what love is all about, lovey-dovey, romantic, it's all about. And that was the fact of life and true feeling, you know, the feeling you get in when you are in the love, and that's what it's all about. Anyway, this is the track that I will be playing, lovey-dovey track, or aap isko enjoy karenge. Keep it locked.

तहवीर रखकर शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें याद किया और गाने को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि बहुत खूबसूरत गाने प्ले हो रहे हैं। और हीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं। फजाना जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दिया है और कीमती वक्त हमें दे रहे हैं और हमें अच्छा लगे कि आपका कॉल मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। एनीवे मूविंग ऑन टू द ट्रैक व्हिच आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग और वोकल्स बाय कुमार सानू की मधुबरी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। एंड दिस ट्रैक हैज़ बीन नंबर वन ट्रैक एट द मोमेंट एंड हैज़ बीन प्लेड एवरीवेयर, डजंट मैटर व्हेयरएवर आई गो, दिस ट्रैक हैज़ बीन प्लेड एज़ वेल। एंड आई वाज विद ईशान रोकरी अदर डे एंड यू नो ही सेड टू मी दिस ट्रैक इज अमेजिंग एज़ वेल, एंड यू नो ईशान रोकरी शो वाज अमेजिंग। और हमें अच्छा लग रहा है कि उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है, बातें हुई हैं और हमने भी इंजॉय किया, उनकी कंपनी को इंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। और आप दोस्तों का भी प्यार मोहब्बत चाहत है खलूस है कि आपने भी हमें टाइम दे रहे हैं और कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, दिस ट्रैक विल टेक मी टू, वेल अभी टाइम है क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक भी होगी, देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और कहाँ पे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल, एंड कीप इट यू नो लॉक्ड विद द न्यूज़ एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एज वेल, एंड दैट इज़ यू नो हमेशा मैं कहता हूँ कि दैट वॉज ऑल अबाउट, एंड इफ एनीबॉडी नीड्स योर हेल्प एनीवे ट्राई टू try to be there for them, that is very important, all about humanity, is all about insaniyat hai, aur wahi baat ho rahi hai, aur hamesha main baat karta hu ki acha khaye, acha piye, acha samjhe, acha khaye aur jo halal ki khaye, aur wo that is very very important as well, kyunki hamare jo murshid hain Shakir sahab hamesha hi mujhe baat karte hain aur badi achhi guftgu hoti hai unke sath hoti hai aur bada hi acha laga, unhe wo next hour mein wo aayenge aur apni khoobsurat sher shayari bhi karenge। और जो काफ़ी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है तो कहते हैं कि वो आएंगे, मैंने कहा कि क्यों नहीं आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आएंगे, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, कि सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो फर्दें फर्द सबका जो भी आना चाहते हैं और आएंगे, और जो रेगुलर कॉलर्स हैं और एक से बढ़कर एक कॉलर हैं, खूबसूरत कॉलर हैं, बिलीव करें कि एक ऐसी खूबसूरत महफिल है और सब ने एक दूसरे को माशाल्लाह प्यार मोहब्बत करते हैं, खलूस करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाला, और एक खूबसूरत प्रोग्राम है जिसमें आप शिरकत करते हैं और सब दुनिया वाले सुनते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैंने नाम ले चुका हूँ सबका, और गजाला जबीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी मेरा साथ दिया, जाकल्ला खैर के आपने भी माशाल्लाह हौसला अफजाई की है, दुआएँ की हमारे लिए और हमें अच्छा लग रहा है। एनीवे ये गीत आपके लिए भी होगा और आपकी पूरी टीम के लिए होगा और जो हमारे बाकी जो कॉलर्स हैं सबके लिए, जो फर्दन फर्दन जिनका मैं नाम ले चुका हूँ और जो आए हैं जिन्होंने हौसला अफजाई की है, फ्लशिंग की है और मुझसे गुफ्तगू है और काफ़ी कॉल जो मिस हो चुकी हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार ममनून हूँ। एनी वे दिस ट्रैक इज़ गोना बी प्लेड फॉर होल ऑफ द पीपल एंड होल ऑफ द लवली लवली फैमिली फ्रेंड्स कॉलिग्स और सबके लिए, एंड दिस ट्रैक विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कीप इट लॉक्ड एंड कीप दैट नंबर 01274306666 एंड योर लिसनिंग टू योर नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया बिटवीन आवर्स ऑफ 8 and 9. आई मिस्ड क्वाइट फ्यू कॉलर्स एंड आई डू अपोलोजाइज टू ब्यूटीफुल कॉलर्स एंड जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल प्ले अ फ्यू ट्रैक फॉर यू आज इन बिटवीन. और तारिक ज़ुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और असगर खान, वन एंड ओनली वन, द सुपर स्टार असगर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमें मेरा साथ दे रहे हैं और आपने भी कोशिश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एंड दैट वॉज द हिट ऑफ द आवर, आपने इंजॉय किया. और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday the clock, it's 12 minutes past 9 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parvez Khan. Yahan pe choti si break hogi aur break ke foran baad we going to go on to the live call ka silsila hoga. And yes, definitely, aur bahut bahut shukriya aapka bhi, aapne bhi hamara saath de rahe.

0: यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद आई विल डू द मैजिक हियर ऑन सनराइज रेडियो. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द मैजिक एंड हैपनिंग द मैजिक एंड क्रिएटिंग द मैजिक ऑन सनराइज रेडियो.
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं.
2: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है. मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन.
1: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है.
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए. जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड.
1: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732. जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास.
3: तेरी गलियां
4: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
5: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना.
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है. सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं. ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-488-935.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise, your number one hit music station. I don't need to remind anybody, and that was all about. Anyway, we are going to be doing the live calls का सिलसिला होगा आपसे लेके 11 o'clock तक, और हमारे साथ देर हैं, और हमारे अपने हैं और सजन हैं, हमारे साथ हैं और हमारी अपनी फैमिली हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सबका भी. और लाइव कॉल का सिलसिला है, यहाँ भी हम आगाज करने जा रहे हैं. हमारा साथ दे रहे हैं अतिका साहिबा हैं, ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से हैं. उनको वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सद बिस्मिल्लाह कहेंगे, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: कैसी तबीयत आपकी? ठीक है, ठीक है आपकी?
1: जी बस दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: माशाल्लाह,
1: थोड़ा सा गला बस थोड़ा सा खराब है और तो सब ठीक है.
0: जी माशाल्लाह जी.
1: ये भी मौसम के साथ.
0: हाँ, मौसम की वजह से ये हो जाता है. चलो कोई कोई बात नहीं. जी
1: सो आप ठीक हैं?
0: अल्लाह पाक का शुक्र करम है, और यही दुआ करें और हमारे लिए और सबके लिए. और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया, और हमारे लिए क्या लेके आए और क्या गुफ्तगु करना चाहती हैं. जी
1: सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आज की जो महफिल सजी है वो बहुत ही खूबसूरत महफिल हमेशा की तरह आज भी आपने सजा रखी है. बहुत खूबसूरत आपने सॉन्ग लगाए, बहुत खूबसूरत इस महफिल का आगाज किया. तो हमेशा ही आप खूबसूरत महफिल सजाते हैं और हम लोग भी फिर सब खींचे आते हैं.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया.
1: तो इस महफिल के सब सितारों को और चांद सितारों को सलाम. और सबसे पहले तो हमारी वो सुमित्रा जी हैं,
0: जी जी,
1: और गिदर भाई हैं, उनकी खिदमत में नमस्ते.
0: जी
1: तो वो भी आएंगे तो बहुत खूबसूरत महफिल सजाएंगे हमेशा की तरह. तो उनको बहुत बहुत नमस्ते.
0: जी
1: तो उनकी जो मैसेज आते हैं आपके प्रोग्राम के लिए,
0: जी
1: उसके लिए बहुत शुक्रिया. वो सबको जगाते हैं.
0: जी
1: तो हमेशा ही हम उनके शुक्रगुजार होते हैं.
0: जी
1: कि वो बहुत पसंद करते हैं और बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाते हैं. आज भी उम्मीद है कि वो खूबसूरत सॉन्ग सुनाएंगे.
0: जी
1: तो नशीन जी हैं, रेखा जी हैं, शाहपरी हैं, जुलेखा जी हैं, सलीना जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह. तो सितारा जी हैं, तो जवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं. नदीम मंसूर साहब आएंगे इंशाल्लाह.
0: वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो भी हमारे माशाल्लाह आपके बाद वो आएंगे इंशाल्लाह. और उनका जो खूबसूरत अंदाज है और बहुत ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते हैं, और आजकल टप्पे मैया और शेर शायरी भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है.
1: जी जी वो आपकी महफिल को तो चांद जो सितारे होते हैं सारे,
0: जी
1: वो आपकी महफिल जब सजती है तो इनकी वजह से भी बहुत ही खूबसूरत महफिल हो जाती है.
0: जी
1: लेकिन जो महफिल में आपका किरदार होता है,
0: जी
1: वो बहुत खूबसूरत आप निभाते हैं और खूबसूरत इखलाक के साथ.
0: जी
1: ये आप ही की महफिल में होता है सब कुछ, बहुत अच्छा लगता है.
0: जी
1: अल्लाह पाक हमेशा से रखे.
0: आमीन.
1: वो सारी दुआएं हैं. तो नदीम मंसूर साहब हैं
0: जी,
1: और पापा जी हैं, तो शकील जी हैं, शकील जी आएंगे इंशाल्लाह. तो वो भी इस महफिल में हिस्सा लेंगे, वो महफिल को लूटेंगे हमेशा.
0: मेरा प्रोग्राम है, वो शकील साहब ना हो तो ये कैसे हो सकता है? वो तो आएंगे इंशाल्लाह. जी जी
1: वो तो उन्होंने महफिल लूटनी है ना.
0: महफिल लूटनी. जी ऐसे जी
1: बहुत खूबसूरत उनकी शायरी होती है. अब्दुल कयूम साहब हैं, वाजिद भाई हैं, सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं, फिर रहमान साहब हैं, और महबूब इलाही साहब हैं. उम्मीद है कि वो भी जरूर शिरकत करेंगे.
0: वो प्रोग्राम सुनने
1: जी तारिक भट्ट साहब हैं, राना नवीद साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, एहसान भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, और राव अजहर हुसैन साहब हैं. सबको बहुत बहुत सलाम, और सबकी नजर करेंगे. कुछ अशार हैं.
0: जी जी अरशाद.
1: वो जो अपना था वो आखिर गुमा निकला, जिसको समझा था यकीन वो भी गुमा निकला.
0: बहुत खूब.
1: इश्क जिसको हम समझते रहे थे वो भी तो एक रस्म जहां निकला. इश्क जिसको हम समझते रहे थे वो भी एक रस्म जहां निकला. कुर्बतों का जो फरेब नजर था वो भी दूर रहकर मेरे दिल का निहगवा निकला.
0: बहुत खूब.
1: कुर्बतों का जो फरेब नजर था वो भी दूर रहकर मेरे दिल का निकवान निकला, इश्क में रस्म इल्तफात कहाँ थी बाकी, हर तअल्लुक़ की फ़क़्त पर्दा इमकान निकला। जिसको अपना समझा वक्ते ज़रूरत वही, अपनी गर्ज़ों का फ़क़्त साहिब एहसान निकला। शब हिजरा भी अजब रात थी न गुजरी, शब हिजरा भी अजब रात थी न गुजरी, चाँद निकला तो मेरे दर्द का हैरान निकला। जिस शख्स को रखा था हरम में दिल के, बाली एक बुत था मगर दिल ही पशेमा निकला। आखिर इश्क की तफसीर यही ठहरी, आखिर इश्क की तफसीर यही ठहरी, कि जिसको खोना था वो ही हासले अरमा निकला, वो जो अपना था वो ही आखिर गुमा निकला।
0: बहुत खूब।
1: खुली जो आंख तो वो था ना वो जमाना था, खुली जो आंख तो वो था ना वो जमाना था, देखती आग थी तन्हाई थी फसाना था। गमों ने बांट लिया था मुझे यूं आपस में, गमों ने बांट लिया था मुझे यूं आपस में, कि जैसे ही कोई लूटा हो लूटा हुआ खजाना था। मुझे जो मेरे लहू में डुबो के गुजरा है, मुझे जो मेरे लहू में डुबो के गुजरा है, वो कोई गैर नहीं था यार एक पुराना था।
0: बहुत खूब।
1: खुद अपने हाथ से शहजाद उसको काट दिया, खुद अपने हाथ से उसको काट दिया, कि जिस दस्त की टहनी पे आशियाना था। खुली जो आंख तो वो था ना वो जमाना था, देखती आग थी तन्हाई थी फसाना था। मगर दिल को संभलने का कोई इजहार तो होगा, तुम कहते हो मसरूफ़ जहां हो भूलने की जस्तजू में हो, मगर कभी मेरे नाम का एक साया शाम तो होगा।
0: बहुत खूब।
1: मगर कभी मेरे नाम का एक साया शाम तो होगा, अगरचे तुम जमाने की ही गर्दिश में उलझते हो, मगर किसी सुबह के दामन में कोई नूर तो होगा। तुम्हें यादों से बचना है तो मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें यादों से बचना है तो मुझसे दूर हो जाओ, मगर खुद से जो मिल बैठो मेरा एहसास तो होगा। तुम्हें मैं याद आती हूँ फक्त पूछा था ये मैंने, तुम्हें मैं याद आती हूँ फक्त पूछा था ये मैंने, जो तुमने खत में लिखा है वही इकरार तो होगा। कहा तुमने के पगली हो ये आदत छोड़ दो अपनी, कहा तुमने के पगली हो ये आदत छोड़ दो अपनी, मगर तुम जानते हो कि ये दिल का खुमार तो होगा।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: मैं संदेशे हवा के सुपुर्द करके कहीं खो जाऊंगी, मैं संदेशे हवा के सुपुर्द करके कहीं खो जाऊंगी, ये खामोशी भी बोलेगी कोई तल्लुक अस्तवार तो होगा।
0: बहुत खूब।
1: तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती ये माना हमने यह जाना, और दिल को संभालने का कोई इजहार तो होगा।
0: क्या कहने।
1: रात के गिलाफों में ख्वाब तुमने नहीं रखना, रात के गिलाफों में ख्वाब तुमने नहीं रखना, चांद से नहीं कहना कुछ हमारे बारे में, चुगलियां सितारों के बस में है तो करने दो।
0: वाह।
1: चुगलियां सितारों के बस में है तो करने दो, खामोशी की चादर को सर पे तान कर तनखा शायरी पढ़ा करना।
0: बहुत खूब।
1: खामोशी की चादर को सर पे तान कर तनहा शायरी पढ़ा करना, शायरी भी मेरी हो और आईने जैसी, शायरी भी मेरी हो और आईने जैसी, जिसको तुम जहां से भी बढ़ के देख लो तो है तो बस खुद को तुम नजर आओ।
0: वाह।
1: बादलों के बारे में सोचना नहीं ज्यादा, बादलों के बारे में सोचना नहीं ज्यादा, सांवलों की मजबूरी तुम न समझ पाओगे। आंख का कोई कोना खुश्क रह न पाएगा, आंख का कोई कोना खुश्क रह न पाएगा, खुशबुओं का सदियों से जो राबता कायम है तोड़ ही न देना, एक रास्ते पे तुम एक रास्ते पे हम। चल पाए नहीं है जो एक साथ, राबता छूट भी जाए टूट टूट बस न जाना, जिस कदर भी याद आए वो मुख्तसर से राबतों को कुछ लम्हे खुद में दफन कर लेना, खामोशी की सुन लेना।
0: बहुत खूब।
1: जिस कदर भी याद आए वो मुख्तसर से राबतों के कुछ लम्हे खुद में दफन कर लेना, खामोशी की सुन लेना। खामोशी से कह लेना चादर से नहीं, चांद से नहीं कहना। खामोशी से कह लेना चांद से नहीं कहना। रात के गिलाफों में ख्वाब रखने वालों को रास्ते नहीं मिलते।
0: वाजिबा।
1: रात के गिलाफों में ख्वाब रखने वालों को रास्ते नहीं मिलते। खुशबुओं के आपस में राबते नहीं रहते।
0: बहुत खूब।
1: तो ये थी थोड़ी सी शायरी।
0: बहुत खूबसूरत, कमाल की शायरी, कमाल की।
1: तो आज थोड़ा गली की
0: जी
1: वजह से कुछ ज्यादा अच्छी तरह पढ़ नहीं पाई।
0: कोई बात नहीं।
1: बहुत शुक्रिया आपने,
0: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आए हैं और कीमती वक्त दिया, और बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत अंदाज़ा, बड़ा प्यारा अंदाज़ा, बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया।
1: आपने भी टाइम दिया और बहुत ही खूबसूरत महफिल को फिर दोबारा सलाम करते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हम कहेंगे यहाँ पे तालीम की गूंज में अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया दावोज अतिका साहिबा थी और ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने खूबसूरत शायरी की है। और बहुत बहुत शुक्रिया, लाजवाब और कमाल कमाल ही हो गया। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ भी हमने क्या करना है कि यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फ़ौरन बाद हमारा साथ दें और हमारे मौजूद मेहमान हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे। कीप इट लॉक्ड विद द सनराइज रेडियो ऑन 103.2 FM ऑन 100.6 FM। कीप इट locked. The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio. Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: राइट, वेलकम। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, और नदीम मंसूर साहब हमारा साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
4: अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और ये आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं जी मेरे भाई।
4: चलें आज आपकी हाथों सब के लिए, और जो आ चुके हैं उनका सलाम, और जो आने वाले हैं उनका सलाम,
0: उनको भी सलाम। और क्या कहने जी, क्या कहने, ये खूबसूरती क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी।
4: तो मैं अपने ही ख्याल, अपनी ही शायरी आप के साथ।
0: हाय हाय, ऑल राउंडर हो गए जी आजकल तो, छा के दुनिया में छा गए। वाह वाह,
4: ये बस कुछ बातें हैं जो मेरे दिल की हैं, आप सबको सुनाने लगा हूं।
0: जी जी जी जी जी, अरशाद।
4: अपने आंसू को जरा हाथ के छुपा कर देखो, गम की रातों में भी मुस्कान सजाई जाए। ये शेर के मिडल में आएंगे इंशाल्लाह।
0: वाह जी वाह।
4: दिल में उम्मीद का एक दीप जला कर देखो,

सजावट से सजा कर देखो, और जो भी नाराज है एक बार उसे प्यार से मिल।

को जरा पास बुला कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो। गम की रातों में भी मुस्कान सजाई जाए, गम की रातों में भी मुस्कान सजाई जाए, गम की रातों में भी मुस्कान सजाई जाए, अपने आंसू को जरा हंस के छुपा कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो। जिंदगी सिर्फ परेशानी का किस्सा तो नहीं, अरे जिंदगी सिर्फ परेशानी का किस्सा तो नहीं, अरे हर लम्हे को खुशियों से सजा कर देखो। जो भी नाराज है एक बार उसे प्यार से मिल, तेरी पलकों के घने छाओं में रुत है कोई, तेरी पलकों के घने छाओं में रुत है कोई, उस हसी

होठों पे बिखर जाती है, बात करने का जरा ढंग बदला कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो, दिल के आईने में इस अक्स को ला कर देखो, तेरे चेहरे से कहीं और नजर जाती नहीं, तेरे चेहरे से कहीं और नजर जाती नहीं, दिल के आईने में इस अक्स को ला कर देखो।

तुम्हें दिल का ये आलम है मियां, जब से देखा है तुम्हें दिल का ये आलम है मियां, अपनी दुनिया को मेरे नाम सजा कर देखो, दिल में उम्मीद का एक दीप जला कर देखो, फूल मुरझाए तो क्या गम है मोहब्बत।

0: दिल में उम्मीद का एक दीप जला कर देखो, दिल में उम्मीद का एक दीप जला कर देखो, अपनी दुनिया को मोहब्बत से सजा कर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह कमाल कर दिए मेरे भाई, कमाल का ब्यूटीफुल, क्या अंदाज आपने पाया, बहुत ही खूबसूरत, और ऐसे ही क्या कहने जी, और वहाँ पे इतने खूबसूरत अल्फाज आपने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छा लगा, और ये आपकी अपनी बयानियाँ हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और अगले आवर में हम गाना भी सुनेंगे आपकी आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज, बड़ा ही प्यारा अंदाज, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आपका टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे, हम इंतज़ार करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर, और बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे बहुत ही खूबसूरत हैं गुरु जी हैं, गिदन भाई हैं हमारे, वेलकम जी, इन्हें खुश आमदी कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं
1: आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सुनाए कैसी तबीयत है मेरे भाई की? जबरदस्त हो गया जी, वाजी वा कमाल हो गया,
0: बहुत
1: खूबसूरत जी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल
0: जी। तो अतिका जी की पूरी टीम को हमारा सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
0: उसके बाद हमारा शकील भाई बनली वाला, वो मैं भी लुटने नहीं आया ना अभी तक।
1: आ जाएंगे, आ रहे। वाह,
0: वो बिरयानी वो खा जाता है, फिर हड्डी सबके लिए चला जाता है।
1: क्या कहने जी।
0: अच्छा तो शकील भाई को
1: जी
0: हमारा सलाम। उसके बाद जावेद मीर भाई है
1: जी,
0: मोहम्मद हनीफ भाई है, सजीद भाई, राजीव भाई, हमारा उस्ताद चौधरी जी, फरियाद भाई
1: जी,
0: पहलवान इकबाल भाई
1: जी,
0: पापा शेख, डॉक्टर मलिक साहब
1: जी,
0: हमारा रफी साहब
1: जी,
0: और हमारा रॉबिन सन न्यूयॉर्क से, वो भी आज आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: वाह जी वाह, वेलकम जी, यानी खुश आमदीद कहेंगे उनको भी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो पहले आता था रेडियो में
1: जी जी, उनको कहें आए और वेलकम कहेंगे आपको भी, उनको भी वेलकम जी।
0: तो मैंने उसको बोला है तो
1: जी,
0: हो सकता है टाइम मिला तो आए
1: जी जी जी।
0: उसके बाद कयूब साहब, फिर हमारा परवेश खान जी,
1: जी
0: हमारी रीना खान
1: जी,
0: अतिया जी, अतिका जी, सलीना जी, हमारी सम्मा जी, हसीमी जी, रेखा जी
1: जी,
0: हमीदा जी, तारा जी, मित्र नीतीश पटेल, जो जो सुन रहे
1: जी,
0: हमारा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
0: तो ये है जजेस टीम का कुछ है जजलो
1: जी जी।
0: हो तो सुने छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाए मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, हो तो

जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम तेरी अमर कर दो, होठों से लो तुम मेरा गीत।

संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरे।

मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, दीवानों से ये मत

मत पूछो, ओ रो के पिला के रहते हैं और

ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जितनी भी मैं तारीफ करूँ का, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, बड़ा ही अच्छा लगा। और वह अमेजिंग आपकी, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत अच्छा लगा। और ये वो गीत था, और क्या कहने, आहा

0: बहुत खूबसूरत लगती है, वेरी नाइस। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, और आप आए हैं और हमें अच्छा लग रहा है, और आपने महफल लूट ली है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद हम भाभी जान आएंगी और वो भी कमाल ही करेंगी। क्या
1: कहें, आपको वेलकम बैक,
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें अच्छा लगा, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, मैं छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद फिर भाभी जान को वेलकम कहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे गिदन भाई हैं, और हमारी भाभी जान हैं, ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन्स हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल, माशाल्लाह, अमेजिंग कपल। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक,
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: Right, time in the studio is 45 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Sunday Radio. Aur yahan pe choti si nanni munni si break break foran baad hamara saath de rahe hain, bahut shukriya aapka bhi, thank you.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है, मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: Move for 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा, मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो और यहाँ पे हमारे साथ दे रहे हैं और हमारे पापी जान हैं, स्मिता जी हैं ऑल द वे फ्रॉम मिंटन किन से हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, वो उन्होंने टाइम निकाला है और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम भैया।
0: पापी जान हाउ आर यू गुड?
1: फाइन, आपका
0: आवाज सुनकर माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आए और हमें अच्छा लग रहा है जी।
1: आप कहाँ चले जाते भैया, चले जाते हमको छोड़कर।
0: बाबी जान कोई दफा ऐसा हो जाता है और आगे पीछे आपको पता है कि दुनिया के दस्तूर है, दुनिया के कुछ न ऊपर नीचे हो जाती है और आप हमारे लिए दुआएं करते हैं, ये एक खूबसूरती है, आप सब दोस्तों का प्यार है।
1: पूरी करे खुदा
0: जी,
1: हमेशा साथ
0: देगा
1: आपको।
0: आमीन आमीन आमीन आमीन।
1: चलो मैं सबको पिता सलाम बोल दूं।
0: जी गो अहेड,
1: मैं वेलकम बैक आपको,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: चलो इस पहले तो शकील भाई हमारा बंसी वाला,
0: जी
1: मोहम्मद बहनी भैया है,
0: जी
1: बाजी चौधरी फरियाद भैया
0: है, ना उन्होंने फोन किया था लास्ट आवर में, चौधरी फरियाद से पाकिस्तान से फोन किया था तो वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा और वो बीमार भी हैं और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह खैर ही करे, वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ तो हम उनके लिए दुआ गो हैं जी,
1: हम दुआ करेंगे
0: जी,
1: वो आए अच्छा लगता है
0: जी।
1: सज्जाद पहलवान भैया है
0: जी,
1: इकबाल भैया है, पापा शफीक भैया है, हमारे मोहम्मद रफी भैया
0: जी,
1: डॉक्टर
0: और बड़े ही माशाल्लाह उनको कहे हमारे प्रोग्राम में आए, शुक्र किया जी,
1: तो शायद आएगा भी
0: जी,
1: हमारा पुराना पहचान है,
0: बहुत बहुत हमें जानते हैं उनको और बड़ा अच्छा लगता है जब वो आते हैं, रबीन साहब जो आपको पता है वो जानने वाले हैं हमारे और बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे और बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: टाइम होता है लेकिन कोशिश करने वाला है
0: जी जी जी जी, ये
1: आपका नंबर ने सब कुछ पूछ लिया है
0: जी जी जी,
1: हमने बताया है इसको। चलो हमारी सखी सहेली में हमारी अतिता जी है, बहुत अच्छी शायरी बोला
0: जी,
1: जी। बहुत बहुत सलाम सलीना है, सिमी जी है, रेखा जी है, अमीदा जी, सितारा जी, ने जितने लोग आते सब सलाम है, आप फैमिली को सबको खूब खूब
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो मैं गाना गा लेती हूँ,
0: गो अहेड।
1: अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलों की कौन सी न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलों की कौन सी न वो समझ सके न हम,

0: दुआ उठा की राग से ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि चपड़ी हूँ ख्वाब से अजीब दास्ता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलों की कौन सी न वो समझ सके न हम हमार की तुने की तुम किसी के नूर हो गए मुबारकी की तूने तुम किसी के नूर हो गए किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए अजीब दास्ता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलों की कौन सी न वो समझ सकी न हम किसी का प्यार लेके तुम नया जहाँ बसाओगे किसी का प्यार लेके तुम नया जहाँ बसाओगे ये शाम जब भी आएगी तू हमको याद आओगी अजीब दास्ता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलों की कौन सी न वो समझ सके न हम थैंक यू भैया
1: ब्यूटीफुल बाबी जान मैं तो गाने में खो गया था और क्या गीत आपने गुनगुनाया बड़े दिनों के बाद मैंने गाना सुना है
0: आपकी आवाज सुनकर खो जाती
1: है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आप आए और आज गुरुजी ने कमाल भी कर दिया उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाए आपने भी गाना गाया और बहुत अच्छा लगा वेरी नाइस
0: आपको
1: थैंक यू वेरी मच ये आप अपनी आप मेरे अपने हैं और अपने मिस करते हैं अपने को और हमें अच्छा लग रहा है कि आपने हमें याद रखा और आपने आए और जला बजाई करते हैं
0: जितने लोग आते हैं सबका मेरा सलाम
1: जी वालेकुम
0: आवाज बहुत दिन के बाद
1: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया रब रखा That was हमारी बाबी जान और सुमित्रा जी ने कमाल कर दिया और हमारे गिदन भाई ने कमाल किया और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं और उनको भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्योंकि जो आवर है यहाँ पे और उनको मैं कहूँगा थोड़ा सा होल्ड कर लें और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम रूबी जी हैं यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी और वंडरफुल और ये हमारी सुपरस्टार हैं हमारे यूके की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि माशाल्लाह
2: Sure, thank you so much.
1: Thank you very much. And आपने hold करना है और बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. और ये थे रूबी जी all the way from London और लंदन वाले आ गए और छा गए और यहाँ पे हमारा साथ है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु मोहम्मद रफी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी हजूर आप लाइव कॉल में
3: मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो
3: बिल्कुल क्यों नहीं करूंगा जी
1: माशाल्लाह आए हाय हाय सदके जावा कुर्बान
3: नो वरीज
1: बहुत बहुत शुक्रिया लव यू सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अच्छा लगे कि आपने हमारा साथ दिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और ये थे हमारे मोहम्मद रफी साहब हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मोहम्मद रफी साहब रूबी जी हैं हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है इस आवर में और इस आवर में क्या करेंगे कि आपको पता है अच्छा नहीं लगता है कि कोई गाना गुनगुनाता है या कोई कोई शेर शायरी करता है तो उनको कहेंगे जल्दी करें ये करें वो करें वो मेरी वो बात नहीं है मैं कोशिश करता हूँ कि सबको टाइम मिलना चाहिए और टाइम होना भी चाहिए क्योंकि वो एक देखो वो टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं अफजाई करते हैं, वो अपनी देखो वो खूबसूरती उनमें है कि इन फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक आउट द टाइम फॉर मी एंड द सेकंड दे प्रिपेयर द ट्रक एंड द म्यूजिक एंड एवरीथिंग एल्स टू गो विद इट एंड इफ आई टेल समबडी यू ओनली गो 2 मिनट्स और 3 मिनट्स इट डजंट लुक गुड एंड फॉर मी एंड फॉर द लिसनर्स एंड फॉर एवरीबॉडी एल्स एज वेल बिकॉज दे आर beautiful, beautiful callers. I haven't got such a word to explain how beautiful these callers are, how amazing the callers are. And thank you very much once again. Anyway, meanwhile, what I'm going to do is I'm going to play this track that which I ordered, wanted to play. And this track will take me to the news, 10 o'clock news. And after that, we will keep it short and we will do the hit of the hour. And we will come back with the banger. And that is all about. And yehi wo baat ho rahi hai, sab doston ka प्यार है मोहब्बत है चाहत के आप हमें याद करते हैं और आई विल गिव यू लिटिल बिट इंफॉर्मेशन बिकॉज अबाउट सनराइज रेडियो फंसी बिट ऑफ फोन विजिट सनराइज सनराइज प्ले एंड हेल्प राज वांट्स बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज रेडियो स्टूडियो सनराइज स्टूडियो रुश टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर द विच बॉलीवुड character you are play now at sunrise radio join the free sunrise listener club to unlock even more wow that is amazing that is a beautiful and that is amazing as well or Raj we always with you and Raj is the our sunrise you know amazing as well or sunrise ki kya baat hai aur Raj ki kya baat hai aur Raj is you know doing so much for the sunrise radio and so much for the listeners as well and that is the beauty of sunrise we going forward and there's more to come and there will be more to come as well and ye wo baat ho rahi hai yahan pe और वही बात हो रही है कि यहाँ पे वी गेटिंग बिगर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू एवरीबॉडी एंड आई हैव गॉट 2 मिनट्स इन this hour and I can't do anything believe you know what can I do this hour anyway not to worry I will mention a little bit more about wherever you are and thank you once again to the beautiful listeners that has called in between hours of 8 and 9 and that you have called in and you kept me busy and then 9 and 10 you have called in mashallah or you have taken the valuable time out for me for the program as well and this is all about your support and your love as well and because a lot of people they are busy with their life and that's what it's all about and time nikalna kisi ke liye bahut hi mushkil ka time hai believe kare ki itna mushkil hota hai kisi ke liye har banda jo busy hai life is all about like a train you know I mean like a train everybody goes to the train maybe they're gonna get off with the next stop maybe they carry on and that's how it is life is koi aa raha hai koi ja raha hai koi maybe they gone to the right in the end they might be stay with you and ye ज़िंदगी के मेले हैं चार दिन की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को आप इंजॉय करें और यही खूबसूरती है और एक दूसरे के साथ अच्छा करें अच्छा सोचें अच्छा समझें अच्छा खाएं अच्छा पिएं और हक और सच पे लड़ें और सच बोलें हमेशा इट डजंट मैटर आपकी गर्दन चले जाए इट डजंट मैटर और हमेशा ही सच बोलना चाहिए और यहाँ पर हमने न्यूज़ ब्रेक करनी है कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो
4: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
5: From the Sky News Centre at 10, Elon Musk's among tech bosses who've expressed support for slowing the progress of artificial intelligence. The calls have been led by Anthropic Chief Executive Dario Amodi, who's warned AI could take over the entire internet within months. But US President Donald Trump seems to have no intention of slamming the brakes on.
6: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins, AI wins. But I think you have a lot of negative forces that are bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
5: The head of the TUC has attacked the £72 million donations to Reform, warning they're causing a crisis in the UK's democracy. Community Secretary Angela Rayner has suggested ministers could still impose a cap on political gifts. There are warnings Russian drone strikes on a train just a mile from the Polish border represent an escalation. No one was injured in the attack. A fifth fire in as many years is being investigated at a Grade 2 listed building featured in Peaky Blinders and Downton Abbey. Crews were called out to Dalton Mills at Keighley in West Yorkshire last night. Sport now, and the referees' governing body will contact Manchester United to acknowledge the error of judgment in their 1-0 defeat to Manchester City in the Premier League. They say VAR should have recommended an on-field review of Erling Haaland's controversial second-half goal at Old Trafford. Meanwhile, Rangers extended their winning run to 5 matches with a 3-0 victory over Celtic in the quarter-final of the Scottish League Cup. His boss, Derek McInnes.
7: I felt the performance that we gave today was the performance that was required to overcome a team like Celtic. Delighted with the performance for so many today. I don't think we had a failure, and that's what it takes to win. It's a good reference for us going forward.
5: Orlando Norris had to settle for a third place finish at the Spanish F1 Grand Prix. The world champion, who started on pole, crossed the line behind winner Kimi Antonelli in Madrid. That's the latest. I'm Chris Milligan.
4: Sunrise Radio. Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio on 103.2 FM, 100.6 FM across the West Yorkshire. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ दे रहे हैं. और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक, विच इज़ वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Time in the studio is 5:10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked down with the Parviz Khan. Or hum acha lag raha hai ki aap hamara saath de rahe hain. Or thank you very much for taking the valuable time, like I said before as well. Taking the time out for somebody is not easy, believe it or not, it's not easy at all. I appreciate your calls and calls are coming in, and thank you once again. Or yahan pe hamara saath de rahe hain वन एंड ओनली वन, यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं. हमें अच्छा लग रहा है कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं. और रूबी जी हमारा साथ दे रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू.
2: Hi, Walaikum Salaam. How are you?
0: I'm good, good, good. Nice to have your company. It must be a lucky day today to have you with us today. And that is amazing. By the way, you are on a live calls me here. Or I'm here. Chala gaya ki aapne time nikala aur bahut khubsurat aapki awaaz hai jo gaane bhi gunkunati hai. Badi pyare aur badi khubsurat aajkal aapki duniya mein chhai hui hai. Aur bahut acha laga. Ji.
2: Thank you for giving me the opportunity.
0: Always, always, always. Welcome. Sunrise Radio is always here for you. I'm here for you. And that's what we're trying to, you know, the talent like yourself. And, you know, it's amazing. Or I'm going to be welcoming with from here. Now, yahan pe aapke liye ye. All yours.
2: शुक्रिया बहुत बहुत. थैंक यू. चलो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक गाना. फिल्म गुमनाम से है.
0: ओए ओए क्या कहने, वाह.
2: ये फिल्म एक्चुअली 1965 में निकली थी. इट वाज बेस्ड ऑन एगाथा क्रिस्टीज एंड दे वर नन. तो ये गाना जो सा है एक्चुअली गुमनाम ही है ना गाने का भी नाम.
0: जी जी.
2: तो इफ यू प्लीज गिव मी परमिशन आई विल स्टार्ट.
0: ऑल योर्स, ऑल योर, द स्टेज इज योर्स.
2: थैंक यू. गुम

इसको खबर कौन है वो अनजान है कोई, किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना, किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना, आज अगर

यहाँ पर सस्ती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो।

0: Thank you.
1: Wow, wow. What an amazing attack. What an amazing work you have as well. और मैं गाने में खो गया हूँ और क्या कहेंगे. और beautiful. What a beautiful. And you have sung without the music. Can you believe it? If you were with the music, how will it be? Oi, oi, oi. क्या कहने. Beautiful. Amazing, amazing, amazing. और do you want to do another one or you wanna, is that okay for you?
0: Okay. मैं एक थोड़ा सा छोटा सा पाकिस्तानी गाना गाता
1: हूँ. जी जी, go ahead. जी जी,
0: ओके. ये दुनिया है ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, कभी गीत बन के लबों पे सजेगी.

समझता है सारा जहां ये हकीकत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत को दे जाएंगे इतनी अजमत, ये दुनिया मोहब्बत।

0: हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, ये दुनिया रहे न रहे मेरे हमदम।
1: Wow. Beautiful, beautiful. As all of it, you know what? You are all rounder. And what a beautiful track you have sung. And you know what? इतना खूबसूरत आपकी आवाज़ है, उतनी प्यारी जो गीत आपने जो बीले बुस रहे हैं, जो जो हम भूल गए गीतों को, और यू हैव रिफ्रेश द मेमरीज। वाओ, दैट वॉज अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं और आपने इतने खूबसूरत गीत गुनगुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नो, ऑलवेज यू आर वेलकम, एंड आई विल बी ईगली वेटिंग for you on Wednesday evening if you do have a time, or hame acha lagega aap aayenge

0: और इवन दो इफ यू सुंडे एज वेल और बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें थैंक यू वंस अगेन
1: थैंक यू
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह
1: हाफिज
0: वाओ That was a beautiful call और बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ पे हमने क्या करना कि छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा अरशाद देने मोहम्मद रफी साहब हैं वेलकम कहेंगे उनको भी जिये कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है मेहंदी निकाह सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन
2: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है
3: मौका कोई भी हो लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए जना रेस्टोरेंट लीड्स रोड ब्रेडफर्ड
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01-274-733-732 जना रेस्टोरेंट हर मौके को बनाए खास
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहां से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां
5: मैं जानती हूं उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
4: सोफी ज्वेलर्स वो कहां है
5: Sophie Jewelers 119-2121 Oakland Bradford 9 telephone 01274-056-014 Sophie Jewelers
6: Sunrise and Music
0: राइट यहाँ में मेरा साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई हैं हमारे दोस्त हैं जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और उनको वेलकम कहेंगे जिये कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
7: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हैं सर जी
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें टाइम दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सुनाए कैसी तबीयत आपकी
7: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास
0: माशाल्लाह माशाल्लाह और हम आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहते हैं आप मुझे पता है कि आपकी कल बर्थडे है और मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और सनराइज पूरी फैमिली की तरफ से आई विश यू हैप्पी बर्थडे
7: वेरी गुड थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
7: सबका बहुत बहुत शुक्रिया सनराइज का आपकी तरफ से सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू
0: माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने वाह
7: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम सभी से जुदा जिसका अंदाज है सभी से जुदा जिसका अंदाज है फलक ता जमी जिसकी परवाज है वही जिन पे हमको नाज है परवेज खान साहब आप ही की तो वो आवाज
0: हाय हाय हाय हाय सदके जावां बहुत बहुत शुक्रिया और वाह वाह क्या कहने जी
7: तो ये गीत पेश करने चला हूँ आपके लिए मुबीन साहिल अमीर साइम डॉक्टर बशीर पाशा गुरु भाई बाबी सेबा के लिए
0: वाह जी वाह क्या कहने
7: वो मोहब्बत वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं वो मोहब्बत वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं ए गमे दिल जी रहे हैं तुझको देकर हम दुआएं वो मोहब्बत जब से लूटा गर्दिशों ने इश्क तन्हारे गया है उनकी यादों के अलावा अब यहाँ क्या रे गया है काश ख्वाबों में वो आकर हालते दिल देख जाए वो मोहब्बत वो वफा आए किस तरह हम भूल जाए चंद आहों का सहारा, चंद अशिकों पे

प्यारा खुद ही बख्शा तूने प्यार हमको खुद ही दी हमको सजाएं वो मोहब्बत वो वफाएं किस तरह हम भूल जाएं ए गमे दिल जी रहे हैं तुझको देकर हम दुआएं वो हम न थे वो तुम न थे वो हम न थे वो तुम न थे वो रहे गुजर थी प्यार की वो रहे गुजर थी प्यार की लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की पाल की बहार की वो हम न थे वो तुम न थे।

रे जिंदगी शमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे वो तो

सके न तूर पर ही जा सके, कहानी किससे ये कहें, चढ़ाओ की उतार की लुटे जहां पे बेवजह, पाल की बहार की वो हम न थे वो तुम न थे।

0: ओके सर, बड़ी मेहरबानी।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और बड़ा ही खूबसूरत गीत और बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज है, और कीप अप द गुड वर्क, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला।
0: बड़ी मेहरबानी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे मोहम्मद रफी साहब, वन एंड ओनली वन, द सुपर स्टार मोहम्मद रफी साहब। कमाल कर दिया, बड़ा मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। वाओ, व्हाट अ जेंटलमैन। और यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, और जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है। और आज हमारा प्रोग्राम जो है ना मुकम्मल हो चुका है, कि वो आ गए, वो छा गए, और ये हैं हमारे मुर्शिद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
2: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है।
1: अल्लाह पाक का शुक्र, करम करम करम करम मौलाद करम है।
2: तो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: ये रिश्तेदार साहब है, अतीका बहन है
1: जी,
2: भाई है, सुमित्रा बहन है, चौधरी रुखसार साहब है, वाजिद भाई है
1: जी,
2: और सहेल अख्तर साहब है, रियात हुसैन साहब, चौधरी फरियाद साहब
1: जी,
2: डॉक्टर मलिक साहब, शबरेज भाई है
1: जी,
2: अली भाई, और जितने भी सुनने वाले हैं, टाइम थोड़ा इसलिए टाइम नहीं लेकर।
1: जी जी कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम।
2: तो एक छोटी सी गजल है, ये रूप अगर लिखने वाले हैं
1: जी जी अशाद।
2: वो कहते हैं, वो जुल्म तो करते हैं सजा से नहीं डरते।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
2: वो जुल्म तो करते हैं सजा से नहीं डरते, दौर के इंसान शायद खुदा से नहीं डरते।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
2: ऐसे भी हैं कुछ लोग जो दौलत के नशे में
1: जी
2: मजलूम की आहों से दुआ से नहीं डरते।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
2: हर हाल में जीने की कसम खाई है हमने,
1: वाह,
2: हम अहले मोहब्बत हैं, जफा से नहीं डरते।
1: वाह जी वाह, क्या कहने,
2: शुक्रिया।
1: वाह,
2: हम जहर भी पी लेंगे बड़े शौक से, लेकिन
1: वाह
2: डरते हैं मसीहा से, दवा से नहीं डरते।
1: हाय हाय हाय, इसको मुकर्रर करें जी, मुकर्रर, बहुत खूब बहुत खूब। वाह,
2: जहर भी पी लेंगे बड़े शौक से, लेकिन
1: वाह
2: डरते हैं मसीहा से, दवा से नहीं डरते।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने।
2: मर कर भी दिखा देंगे तेरे चाहने वाले,
1: वाह,
2: हैं तालिबे दीदार, फना से नहीं डरते।
1: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
2: हर हाल में मंजिल पे नजर होती है जिनकी,
1: वाह,
2: हर हाल में मंजिल पे नजर होती है जिनकी,
1: वाह,
2: राहों में कभी रहनुमा से नहीं डरते।
1: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
2: तो आखिरी शेर है
1: जी जी,
2: इस दौर में जीना कोई मुश्किल नहीं सागर,
1: आहा,
2: इस दौर में जीना कोई मुश्किल नहीं,
1: वाह,
2: हर रोज जो मरते हैं कदा से नहीं डरते।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। वाह
2: शुक्रिया। तो एक गजल है, नाज़िर शैदरी इनका नाम है
1: जी जी, अरशाद अरशाद।
2: वो कहते हैं, किसी आरजी खुशी का न खुशी, किसी आरजी खुशी का,
1: वाह,
2: ये खुशी न खुशी शिकार होता।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: मुझे गम की अजमतों पर जो ने एतबार होता।
1: हाय हाय हाय हाय, वाह जी वाह वाह, क्या कहने।
2: ये फरोगे दुश्त तो सहरा है शिकस्ते गुलिस्तान से,
1: वाह,
2: न गुलों का रंग उड़ता न कहीं गुबार होता।
1: वाह वाह वाह,
2: मेरे नखले जिंदगी ने कई रुख हवा के देखे,
1: बहुत खूब,
2: कोई रुत कभी ना आती तो सदा बहार होता।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: तेरी याद अगर ना होती तो हयात का सफीना न अबूरे शाम करता ना सहर के पार होता।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। वाह,
2: मेरी अजमत वफा से वो कभी शिकस्त खाकर मेरा अजम छीन लेते अगर इख्तियार होता।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
2: तरो ताजा क्यों न रहते कभी फूल महरो जहां के,
1: वाह,
2: चमन जहां का मौसम तो ना खुशगवार होता।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: वाह जो न टूट जाता तेरे जबरे जबर का तसल्सुल नजर एतजाज करती न नफस कार होता
1: बहुत खूब बहुत खूब
2: मेरे मसल के वफा में तेरी दीद थी इबादत
1: वाह
2: जो नजर ना तुझे पड़ती गुनाहगार होता
1: आय हाय हाय क्या कहने क्या कहने वाह
2: आखिरी शेर कहते हैं मेरा अश्क क्यों है नाजिश मेरे तजर्बे का हासिल
1: वाह
2: मेरा अश्क खून है नाजिश मेरे तजर्बे का हासिल
1: वाह
2: जो जो वफूर गम में हंसता तुझे शाकार होता
1: हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत वाह बहुत अच्छा लगा बहुत खूबसूरत अंदाज आपका बड़ा प्यारा अंदाज है बहुत अच्छा लगा और अपना ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखें और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज आपका बड़ा ही प्यारा अंदाज है और महफिल आपने लूट लिया सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया रब रखा अल्लाह हाफिज़ ये थे हमारे मोहतरम मुर्शिद और क्या कहने इनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम में उनको वेलकम कहेंगे जी हां कहेंगे खुश आमदी कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एफ रहमान साहब बिस्मिल्लाह
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू परवेज भाई कैसे हैं जनाब
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप भाइयों की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह
3: माशाल्लाह हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बहुत रवान दुआ है और बहुत अच्छा जा रहा है और हमारी बहुत आज खुशकिस्मती है कि हमारी कॉल मलाई और जल्दी
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी लाइन एक ड्रॉप हो चुकी है सिमी जी ने फोन किया उनकी लाइन ड्रॉप हुई है आपको मिल गई है और बहुत अच्छा लगा जी जी
3: तो मेरी तरफ से सब जितने भी आ रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और
1: वालेकुम सलाम
3: थोड़ा सा है तो मैं जल्दी से कुछ इशार पेश करूंगा
1: जी जी
3: परवेश
1: शाकर जी के परवेश शाकर क्या कहने वाह
3: तेरी खुशबू का पता करती है
1: वाह
3: तेरी खुशबू का पता करती है
1: वाह
3: मुझ पे एहसान हवा करती है
1: बहुत खूब
3: शब की तन्हाई में अब तो अक्सर
1: वाह
3: गुफ्तगु तुझसे रहा करती है
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब
3: दिल को राह पे चलना ही नहीं दिल को राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है
1: बहुत खूब बहुत खूब
3: जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ क्या कहने
3: परवेज भाई आखिरी शेर है
1: जी जी
3: उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख
1: हाँ
3: उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख
1: वाह
3: दिल का अहवाल कहा करती है
1: आए हाय हाय वाह
3: इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा
1: बहुत शुक्रिया नवादेश आप आए और बड़ी खूबसूरत जारी बहुत बहुत अपनी हाजिरी लगा रहे बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में रखें बहुत बहुत शुक्रिया रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया वाओ दैट वाज अ ब्यूटीफुल कॉलर्स और बहुत शुक्रिया और सुमित जी आप जब भी आपको मौका मिले आप फोन कर सकते हैं दोबारा बहुत शुक्रिया आपका भी और यहां पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे कीप इट लॉक्ड विद द सनराइज रेडियो ऑन 103.2 एफएम एंड 100.6 एफएम कीप इट लॉक्ड सनराइज
4: म्यूजिक Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
5: Move for 10 aa gaya hai. This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक कोई प्रेशर नहीं कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं आप भी ज्वाइन करें सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10
6: Sunrise and music.
1: राइट वेलकम बैक। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मीठा जी हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
7: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चश्मे रोशन दिले माशा बा कमाल लाजवाब, गो ताला बा इज्जत बावकार, बाशोक बाशोक हर दिल सी सकियत, बहुत नफीस बोलती वो शफीक और बाइज्जत जनाब मेरे प्यारे भाई चैंपियन परवेज खान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। जी हजूर,
7: हजूर पहले तो आप ये फरमाया आने में उनको देर लगी, लगे शुक्र है फिर भी आए।
1: फिर भी आए, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपका भाइयों का प्यार है, मोहब्बत है माशाल्लाह। और हमने आपको आपको बताया ना कि आपने हमने आपको नाम दिया था मीठा जी, और आपका भी नाम दुनिया में चल गया और चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा।
7: यकीन करें आपने तो दे दिया, लेकिन मीठा हर बंदे को पचता भी नहीं।
1: ये मैं कहने वाला था क्योंकि आप जो जब मेरी तारीफ करते हो ना तो बस मैं आगे क्या कहूँगा, बस तारीफ करते हैं, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शाद बाद रखे। और वही बात हो रही है कि अच्छे जो दोस्त होंगे ना, आप जैसा दोस्त है, और मैं मुझे फ़ख्र है, बिलीव करने के मुझे फ़ख्र है, यहाँ पर बैठ के मैं कह रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह और सब ने जो भी मेरी शक्ल है उन्होंने मेरा साथ दिया और मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
7: चैंपियन यार मेरी बात सुनो, एक आप तो पता क्या, सबसे पहले तो तारीफ उस खुदा की है जिसको हम जिसने हम सब को पैदा किया है, जो हम सब उसकी मखलूक हैं के
1: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
7: उसके बाद माशाल्लाह आप जैसे अनमोल हस्तियां हैं उनकी तारीफ है जिनको अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत और इतना बावकार और माशाल्लाह सहबान अकल और दानिश पैदा किया
1: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी दुआ है माशाल्लाह। आप मुझे आपकी जो खूबसूरती है ना और जो अच्छा होगा तो वो दूसरों को अच्छा समझेगा, और जो आपके पास है वही आप दूसरों को भी देंगे।
7: बेशक सही फरमा रहे, मौलाना अलैहिस्सलाम का भी यही फरमान है कि वो कहते हैं ना कि जिसके पास जो होगा वही उनको देगा।
1: वही जिनके पास कुछ भी नहीं है वो मुझे क्या देंगे, बेचारे वो खुद उनके पास कुछ भी नहीं है मेरे देने मुझे देने के लिए या किसी और देने के लिए, तो वो बेचारे के पास मैं यही कहूँगा बेचारे हैं और बेचारे ही रहेंगे। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब के लिए अच्छा अच्छा स्वब करे, अच्छा बनाए, अच्छा समझे, अच्छा खाएँ, अच्छा समझें। और वही बात हो रही है कि ये सब जो कमाल है आप दोस्तों का कमाल है, और सबसे पहले अल्लाह का कमाल है, और उसके बाद हमारे पाइन तुम पा का और उनका कमाल है माशाल्लाह, और जो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
7: सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन आप यकीन करेंगे कि मैं शेफील्ड में था और आपका मेरा मुझे रस्ते में जो ना मैसेज आपका हुक्म मिला है, यकीन मैं अभी घर आया हूँ।
1: नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपके ये चाहने वाले ना जो आपके चाहने वाले हैं, और हम भी चाहते हैं जबकि आप प्रोग्राम में शिरकत करते हैं ना, बिलीव करने के अच्छा लगता है और खूबसूरती होती है। देखो हर फूल की अपनी खुशबू है, आप अपनी खुशबू लेके आ रहे हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, क्यों कि ये जो खूबसूरती है ये एक ऐसी महफिल है जिसमें सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं।
7: सर यकीन करें कि जितने मुझसे पहले शख्सियात कितनी पहले हस्तियां आ सकी हैं, और माशाल्लाह मुझसे बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूँ कि करोड़ों दर्जे मुझसे बेहतर और अफजल माशाल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में मेरा ख्याल है अतीका आपकी फर्स्ट होती है, क्योंकि आज तो मैं सुन ही सका
1: क्योंकि
7: मैं
1: सब जी वैसे ही ऐसे ही था जी।
7: सुबह से गए शेफील्ड
1: में मुझे बताते पहले, क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली है माशाल्लाह, और वहाँ पे आपको लुक अफ्ट किया जाता और होता हो, और मुझे बताते तो मैं आपके लिए वहाँ पे गाड़ी भी क्या कहते हैं कि वो पिकअप करते ड्रॉप करते आपके लिए माशाल्लाह।
7: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हम तो वैसे वो जैसे कहते हैं आवारागर्दी करने के लिए।
1: शफील जो है बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत, बहुत वहाँ पे पता है ना, और वहाँ पे एक ऐसे खूबसूरती है कि वहाँ पे माशाल्लाह कि सब जो है ना अपनापन है, वहाँ पे उनका अपनापन है, बिलीव करें
7: खूबसूरत पहाड़ी नजर आ रहे हैं
1: वहाँ माशाल्लाह वहाँ। और ये शफील की ये खूबसूरती है वहाँ पे कि मैं खुद मेरे जो मेरा जो भाई है ना, वो मेरा एक जिगरी दोस्त है भाई है, वो शफील में है माशाल्लाह। और वहाँ पे ये होता है कि एक दूसरे के दुकान पे जा रहे हैं आ रहे हैं तो कोई बंदा कोई कोई चीज़ ले गया कोई, वो पूछते नहीं है, और माशाल्लाह उनको पता होता है कि ये हमारे मलदार है, यहाँ पे हमारा शेवा, वो कोई वो एक खूबसूरती है वहाँ पे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती है
7: और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा और खूबसूरत माहौल है वहाँ पर।
1: वाकई वाकई वाकई वाकई वाकई जी।
6: तो सबसे पहले तो मैं जनाब सभी को सलाम दुआ पेश करता हूँ, क्योंकि मेरे बाद जो
1: आपके बाद जो है ना हमारे चौधरी फरियाज साहब है, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे।
6: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक उन्होंने भी आख्या बा थले भी चौधरी तो उठे भी
1: ऊपर भी चौधरी नीचे भी चौधरी
6: बहुत अफजल और मुझे यकीन करके बहुत प्यारे हैं और माशाल्लाह क्योंकि सभी उनका बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा देर उनको नहीं करूँ क्योंकि वो पाकिस्तान से फोन कर रहे हैं।
1: और आप अपना एक खूबसूरत एक जुमला सुना के जाए ना कि आपने महफिल में आए और शफील से आए और आ रहे हैं और जो दोस्त बाब आपके साथी बैठे उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाए ना, थोड़ा सा हो जाए।
6: आपका हुक्म जनाब मेरे सिरा
1: नहीं, अर्ज अर्ज अर्ज है, हुक्म नहीं अर्ज है।
6: अरे यकीन करो आप मुर्शिद हैं,
1: नहीं नहीं नहीं नहीं मुर्शिद माने वो हमारे
6: चैंपियन। यार मेरी बात सुनो, आपका हुक्म जो है ना वो मेरी सिर सिर और आंखों पर है के
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
6: पैसे दुआ है चोई साहब के लिए कि वो उनकी तबीयत नाराज है, सर दिली दुआ है
1: जी।
6: अल्लाह सदका मोहम्मद का और माशाल्लाह रबीउल के आखिरी अयाम है,
1: आखिरी अयाम माशाल्लाह। आपने हमारी दुआएं करेंगे, हमारे लिए दुआएं करें, हर उसकी दुआ करें जो बीमार है हमारे चौधरी फरियाज से उनकी दुआ करें, वाजिद के लिए दुआ करें जी।
6: मैं उनके लिए सभी के लिए सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ
1: जी।
6: और ये दुआएं जो हैं स्पेशली स्पेशली जनाब हमारे चौधरी फरियाद साहब के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, वाजिद भाई को और जितनी हमारी बहने हमारे भाई हमारे बुजुर्ग हमारे बच्चे जो भी बीमारी जिनको कि मैं नाम नहीं सबके जानता, ठीक है, अल्लाह ताला सभी को सेहत कामला और सेहत आजला अता
1: फरमाए।
6: क्योंकि मैं फर्दर फर्दर सभी के नाम लूंगा तो चौधरी साहब वेट कर रहे होंगे जी, तो मैं सभी को जो है ना अपीका अपीकी या चौधरी साहब की जो लिस्ट है ना सभी को मोहब्बतों भरा चाहतों भरा उल्फत भरा अकीदत भरा बहुत बहुत सलाम। तो ये छोटी जी नज़म में जनाब आपने हुक्म दिया तो मैं सुना देता हूँ, ठीक है
1: जी।
6: क्या लिखता है, मैं रोज करता जिसे शरीक अपने गमों में,
1: वाह
6: दीवार थी और इसमें कोई दर भी नहीं था,
1: वाह क्या कह रहे,
6: क्या दिन थे कि जब तुमने हमें जख्म लगाए,
1: हाय हाय हाय,
6: जब फूल नहीं था कोई पत्थर भी नहीं था,
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
6: उस कंधे पे किस तरह मैं सर अपना टिकाता,
1: वाह
6: वो शख्स मेरे कद के बराबर भी नहीं था,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय।
6: वो आखिरी शेर जनाब मैं जल्दी जल्दी आखिरी शेर आपके
1: सामने जी जी जी जी जी जी जी,
6: हम पहले बहुत पहले खुदा मान चुके थे,
1: माशाल्लाह क्या कहने
6: चैंपियन भाई
1: जी जी,
6: हम पहले बहुत पहले खुदा
1: को मान चुके थे
6: उस वक्त के जब हम में कोई पैगंबर भी नहीं था,
1: हाय हाय हाय हाय हाय बहुत ही गहरा, ओए हो सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
6: अल्लाह ताला
1: बहुत बहुत शुक्रिया
6: और चौधरी फरियाद को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता
1: फरमाए, आमीन आमीन आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। वाह, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, जितनी भी मैं इनकी तारीफ करूँ कम है, चौधरी फरियाज साहब है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू चौधरी,
8: वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह करा जी
1: माशाल्लाह। और आपके लिए इतनी दुआएं हुई हैं, इतनी दुआएं इन्होंने की हैं हमारे चौधरी रुखसार भाई ने, मीठा जी हैं, उन्होंने इतनी दुआएं की हैं, हमने आमीन आमीन आमीन करते रहे माशाल्लाह।
8: बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिसने भी जिस भाई ने मेरे लिए दुआएं की, जिस बहन ने मेरे लिए दुआएं की, मैं सबका शुक्र गुजार हूँ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे और
1: आमीन।
8: मेरी दुआ में आप सब के लिए है और आपकी दुआओं का मुझे इंतजार इंतजार रहता
1: है। हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। अच्छा लगता है कि आप जब ही आ रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे भाई पता है क्या करें, आप पाकिस्तान से वापस यूके में आ जाएं तो आपको टिकट की जरूरत है, मैं टिकट आपको दे देता हूं।
8: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया परवेज भाई, आप सारे जितने भी थोड़ी महफिल इस बारे में माना देने ना
1: जी जी,
8: यकीन करो मेरा इतना सारे ख्याल रखने में ते मैं हर वेले में उन्होंने याद करना रहना कि जेड़े बेलोस
1: जी
8: बिना किसी वजह तो
1: जी
8: मैंने ना याद करने ने या मेरे आके दुआवां करने ने
1: जी। और मुझे ये बताएं कि हमारी
8: पानी निकाल होनी है, पता नहीं पता नहीं मेरी रोजी उधर है या मकान क्या है, कोई पता नहीं।
1: अल्लाह अल्लाह ना ऐसी बात ना करें, अल्लाह को क्या कहते हैं कि हमेशा ही दुआएं करें, कि खेत के लिए दुआएं करें और दुआ करनी चाहिए। और हमारी भाभी जान का कैसी है?
8: और बस थोड़े ठीक हैं, पहले ना थोड़े ठीक हैं।
1: अल्लाह रहम करसी, अल्लाह रहम करसी। मैं यही कह रहा हूँ कि आप
8: कोई ना कोई ना इधर परवेज भाई
1: जी
8: कोई ना कोई ना कुर्बानी रखती है, ये नहीं पता।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। और ये ऐसी बातें ना कि अल्लाह को भी पसंद नहीं, किसी और को भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें ना
8: जी ठीक है नहीं वो तो गल ठीक है, लेकिन सबको
1: जो भी दुनिया में जिन परिंद हर बंदे ने यहाँ पे जाना ही जाना है, और यहाँ पे आरजी जिंदगी है, ये हम समझ जाए ना तो बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं, बड़े बड़े मसले हल होंगे। और बस हम ये नहीं समझते कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, अल्लाह के पास भी हाजिरी लगानी है, अल्लाह के पास जाना है, भावे वो बादशाह है या कोई गरीब है या अमीर है, उसने जाना ही जाना है।
8: जी जी
1: जी
8: परवेज भाई, जरा बंदा ना मुसलमान बाकी दुनिया दुनिया से कौम आने मुस्लिम और गैर मुस्लिम और सारा जरा मजहब है या जरा सारा कीदा है या जे सारे मसले मसायल ने सू पता होना कि अस दुनिया से आए हैं, जाना फिर सारे वास्ते पहली मंजिल जी है कबर है, जिन्हों लोगों कबर ध्यान होगा ना कि वो नेरी कोठी है असि अपने अमलों दुरुस्त रखिए ना एवं जरा शुगर है जी असडे गल करने चेहरों चेहरे बने ये वैसे एक अपने जाति शुगर है
1: जी,
8: जो उधर नजर मारो ना फिर पता लगना के असि मतलब है कि जगह खोते आने ते दिने की करने
1: जी।
8: असि अपने अल्लाह नु याद रखने या नहीं, या असि जरा अल्लाह और अल्लाह के नबी दे फरमान है उन्हां दे पूरे उतरने आ फिर पता लगता है
1: जी। और एक बात मैं करना
8: चाहता हूं, सारे नु अल्लाह तआला और रस्ता
1: और पहली बात ये जो आपने ये बात की माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह खैर। और सबसे पहले जो भी हैं माशाल्लाह जिस खित्ते से जिस कोने से हैं, पहली बात ये सबसे पहली बात ये है कि इंसानियत
8: जी
1: सबसे पहली चीज़ है, इंसानियत है। और उसके बाद जो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और वो हम बात करते हैं और बात करना भी चाहेंगे, और उसके बाद जो भी हैं, और हमने सब ने जाना है, और हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी है, उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया और हमको अमल भी करना चाहिए। और जो आपकी बात कर रहे हैं ना, ये 100% राइट बात है कि हमने सब ने जाना है, और ये ऐसा काम करें कि जो अच्छा काम करें, अच्छा करें और किसी के लिए कोई बुरा ना करें, अखलाक जो है ना वो आपको साथ में लेके जाएं। और हम सब कहते हैं कि दुनिया में सब लोग कहते हैं कि हम अकेले आएं अकेले जाएंगे, ये ठीक है, पोट आपके साथ वो अखलाक जाएगा। आप अच्छे हैं तो लोग आपको अखलाक की वजह से आपको याद करेंगे, अच्छाई की वजह से याद करेंगे, तो ये आपकी बड़ी खूबसूरती है माशाल्लाह। और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे मेरे भाई, लंबी ज़िंदगी दे, और हम आपके लिए दुआ गो हैं जी।
8: रोज पढ़ना है रोज सुनना है, रोज पढ़ना है रोज सुनना है, भूल जाना है सबक पका ते अल्लाह अल्लाह अल्लाह खैर सलाह छुटदा पल्ला नहीं पल्ला फला ते सही। जिक्र और चीज है, अमल और चीज है, जिक्र तो अच्छी करने अमल भी
1: अमल नाल गल बनती है ना,
8: अमल
1: अमल और चीज
8: है, अमल करके वखाते सही आसम दुनिया विच तो जन्नत वेख लेते हैं, अपने अंदर वाला मंदिर टाते सही।
1: आई हाय हाय हाय हाय मियां साहब कमाल, उनका भी खूबसूरत अंदाज बयानी है और बड़ा ही खूबसूरत शायरी है उनकी। और आपको पता है वो कौन सा है, जो दिल है ना आपका दिल, उस दिल को साफ करें। वो कहते हैं कि टा दे मस्जिद टा दे मंदिर और किसी का दिल, वही बात हो रही है कि ये जो ना खूबसूरती ना वो खूबसूरती वो अंदर है, वो आपके अंदर है। और वही बात हो रही है कि इस दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है, वो जिंदगी है। और यही वो ज़िंदगी है, वही खूबसूरती है। और बातें हम सब करते हैं, अमल कोई भी नहीं करता है, ये एक सोचने की बात है। और आगे भी मेरे में प्रोग्राम के लिए मैं आ रहा था यहाँ पे, तो हमारे जो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे मोहतरम में, तो उन्होंने मुझे बात की है, उन्होंने कहा कि आज से 50 साल पहले 40 साल पहले 10 साल पहले 20 साल पहले वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत अदब अदाब था, ख्याल था, सोच थी, समझ थी, और वो एक और दौर था, ये और दौर है, हम वही लोग हैं, पर वो दौर हो रहा है, ये दौर हो रहा है। वहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा भी कोई दुनिया के चला जाए ना या वहाँ पे, तो उसके लिए भी दर्द होता है, हलूस, उसके लिए भी बंदा रोना है कि यार ये हमारा देखो ये पेट है, ये है वो है। तो आजकल के दौर में ये देखा है कि किसी का कोई किसी का नहीं है, कि हम दर्द नहीं है, कोई किसी का भी नहीं है। और बातों में बातें में बातें लगे रहेंगे, आप अपनी शायरी करें, ये ना हो अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ दे रहे हैं, ये ना हो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। जी
8: चलो जी मेहरबानी, सबसे पहले मेरी बहन
1: जी
8: आतिका बाजी और नशीन जी हमेशा मेरा ख्याल रखने, बहुत बहुत सलाम सिमी जी ने
1: जी
8: वो भी ख्याल रखने ने, उन्होंने अम्मा जी गजाला बाजी
1: जी
8: और उमे कुलसूम जी, सीमा जी,
1: जाफरी
8: जी, जलेखा जी, सारा जी,
1: जी
8: भाभी साहिबा ने, गिदड़ भाई ने, फरजाना जी ने, सहमा जी ने,
1: जी
8: सोनिया जी ने, इन्हें सब नो मेरा बहुत बहुत सलाम, मैं थोड़ा सारे शुक्र गुजार हूँ, सारे मैंने याद करने मेरे वास्ते दुआवा कर
1: जी माशाल्लाह।
8: ये मोहतरम आमर भाई ने, महबूब लाई साहब ने, दसल साहब ने
1: जी,
8: अजय सलीम साहब ने, चौधरी मनीर सिंह चक्की अली ने, शकील साहब ने, हीरा साहब ने, राजद भाई ने, युग चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई साहब ने, अब्दुल कयूम भाई ने, उन्होंने मेरा सलाम, नवीद राणा साहब ने, जनाब तारिक बाग साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, चौधरी आसफ यासर साहब ने, डॉक्टर चौधरी मोहम्मद मालिक साहब ने, चौधरी रुखसार साहब ने, अहम खान साहब ने, नदीम साहब और राजा अफकार साहब ने, राजा जुल्कुर नैन साहब, चौधरी मनीर सिंह मेरा भरा, जफर अली हीरो साहब, महमूद साहब ने, शोएब साहब ने, और अनिल भाई ने जीत जीत, और
1: जी
8: अपने इकराम भाई ने, और मनीर साहब ने, एलिक्स और जितने भी संगीत साथी ने, सब मेरा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
8: मैं कोशिश करता चाहूं कि सारी तुम्हारी नजर करा
1: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि
8: सारे पीछे सारे भाई भी ने
1: अब्दुल कयूम साहब ने सारे नाम
8: जी आप जी जी अब्दुल कयूम भाई ने
1: जी
8: मैंने गले न खिंच खिंच के रखे
1: जी जी
8: मुस्वाक रह के ले आ गया, मुस्वाक रह गया थी वो अपना जोर ला खिंच के
1: रख जी जी जी माशा
8: फिल्म से जोर ला अपने हिस्से से जोर ला मैं सारा जोर लाया गले पीछे रखा मेरा सांस चला ना मेरा साथ नहीं देता जे थोड़ी मोहब्बत है यकीन करो वरना किसी सेहत पर है ना तो मेरी मिली मुश्किल जी सब थोड़िया सारी दी मोहब्बत ने मैं थोड़े को दूर नहीं रह सका
1: माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया
8: बिस्मिल्लाह करना इन्हें के लिखने ने के बेशक सारे नबी सन बहुत सोने
1: सुभानअल्लाह माशाल्लाह
8: बेशक सारे नबी सन बहुत सोने पर रीसा नहीं मदनी सरकार दिया
1: माशाल्लाह
8: सारे यार सन बांग सतारिया दे कमरा तोड़िया जिन्ना कफार दिया अबू बकर ते उमर समान ली चारे जिनता सन संसार दिया रुतबे चमां दे बड़े बुलंद अफसर लोड़ा नहीं एवें तकरार दिया
1: वाह जी वाह क्या कहने
8: उन्हें एक जनाब अफसर साहब ने जिंदगी मौत ना भी शेर लिखा
1: जी
8: के ना कर हुसन जवानी ते मान है दे
1: वाह
8: ना कर हुसन जवानी ते मान है दे अनमुल चीजा अनमुल जासन जदों आया बड़ापा तो याद रखिया नखरे नाद गुरूर सब कुल जासन
1: वाह जी वाह क्या कहने
8: रफ्ता रफ्ता उम्र तमाम होसी ओड़क सिर उते पे गुल जासन नाजुक बंदन शहजादियां वांग जेड़े एक दिन खाक अफसर रुल जा सर
1: क्या कहनी वाह
8: ये साडे सुखी अफसर साहब ने तुहाडे नाल ही शहर के सेज मुकीम ने इना दा तलक भी मेरी तसीर नाल है
1: जी
8: और मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने
1: जी
8: ते मजाक ने रंगे जनाब मुझे शहर तुसने चंद शहर पेश करता आखने ने के ना कर ना से नखरे तू नाल मारे
1: वाह जी वाह
8: मिकी लगना तो संगिया प्यारा बमे
1: एक
8: गल तिवारी नहीं चंगी लगती मिलना कट तो लारा तू लाना तू लारा बमे
1: वाह जी वाह क्या कहे
8: एक गल तिवारी नहीं चंगी लगती मिलना कट तो लाना तू लारा बमे फिर भी तादे बगैर नहीं रह सकना कशिश अखियां विच रखना दिलदारा बमे चंगा जदों दा दस्या है महमूद लगना है सजना उदों दा होया तू पारा बमे
1: वाह क्या कहे
8: ਆਖਿਆ ਰਤੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਇਹ ਰਤੀਆਂ ਰਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰ ਸੁਰਖ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਨਕਾਰਿਆ ਕਰ
1: ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
8: ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤਾ ਉਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕਰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਆ ਮਾਈ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ
1: ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
8: ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ
8: ਓਹੀ ਦਿਨ ਓਹੀ ਮਹੀਨੇ ਓਹੀ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਅਗਲੇ ਓਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਓਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਓਹੀ ਸੋਚ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਅਗਲੇ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
8: ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਓਹੀ ਹਸਰਤ ਓਹੀ ਅਮੀਦ ਅਰਮਾਨ ਅਗਲੇ ਚੰਨ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸਾਰ ਨਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਚੰਨ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸਾਰ ਨਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਗਲੇ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
8: ਆਖਿਆ ਗੈਰ ਗੈਰ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਗੈਰ ਗੈਰ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰੋਏ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰੋਏ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸੇ ਲਬਾਂ ਪਰ ਲਾਏ
1: ਹੋਏ
8: ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਰ ਤੇ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆ
8: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਖਾਰ ਤੇ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਸਨ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸਾਨੀਆਂ ਰਹਿਸਨ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸਾਨੀਆਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ਕ ਚੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਛਾਇਆ ਗਮ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਸੋ ਵੀਰਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਸੂ ਵੀਰਾਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ
8: ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਆਖਿਰ ਬਣ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਅਥਰੂ ਨਸਰਾਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ
1: ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ
8: ਅੱਲਾਹ
1: ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
4: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
1: اور یہاں میں ہمارا ساتھ دینے عبد القیوم صاحب فرازی ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ماشاء اللہ
9: گھر آیا میرا پردیسی پیاس بجھی میری اکھیاں کی اب دل توڑ کے مت جانا گھر چو چھوڑ کے مت جانا قسم تجھے میرے اسون کی گھر آیا میرا پردیسی یہ آپ کے لیے
1: واہ کیا کہنے بہت ہی خوبصورت اور کیا کہنے مجھے آپ نے یاد رکھا آپ نے ماشاء اللہ میرے لیے گانا گنگنایا اور میرا فیورٹ گیت ہے میرا فیورٹ گیت
9: واہ چلو بجا دینا اگر ہو چلو یہ کچھ سطرے ہیں شاعری تھوڑی لکھنے سے پہلے میں نے بھول گیا تمام سننے والوں کو جو اس وقت گھروں بازاروں دکانوں فیکٹریوں کارخانوں ریسٹورانوں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں اس پار تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وعلیکم
9: ساحر لدھیانوی کی ایک غزل ہے
1: واہ جی واہ کیا کہنے
9: اوس نصیب نظر کو کہیں قرار نہیں
1: واہ
9: اوس نصیب نظر کو کہیں قرار نہیں میں منتظر ہوں مگر تیرا انتظار نہیں
1: بہت خوب بہت خوب بہت خوب
9: اوس نصیب نظر کو کہیں قرار نہیں میں منتظر ہوں مگر تیرا انتظار نہیں
1: بہت خوب
9: ہمیں سے رنگ گلستاں ہمیں سے رنگ بہار
1: واہ
9: ہمیں کو نظم گلستاں پہ اختیار نہیں اور اچھی نہ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مسترب
10: अभी हयात का माहौल खुशगवार
1: नहीं, वाह क्या कहने,
10: और गरेज किया गरेज का नहीं कायल हयात से, लेकिन जो सच कहूँ तो मुझे मौत नागवार नहीं। आखिरी शेर है
1: जी जी।
10: ये किस मुकाम पे पहुँचा दिया जमाने ने, ये किस मुकाम पे पहुँचा दिया जमाने ने कि अब हयात पे तेरा भी इख्तियार नहीं।
1: क्या
10: शुक्रिया जनाब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया के क्या कहने, और क्या आवाज़ आपने पाई है, और जो शेर शायरी आपने करते हैं कमाल की करते हैं, बहुत खूबसूरत है, कमाल,
10: बहुत शुक्रिया जनाब,
1: कमाल कर दिया और आपने कमाल ही कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे अपने और अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग और से, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बड़ा प्यारा अंदाज है, और वाकई और जो गीत लेके आते हैं, शेर शायरी करते हैं और गाना गुनगुनाते हैं, वाह जी वाह, और वर अ ब्यूटीफुल जेंटलमैन माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, हम शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मुझे दोस्त अहबाब मुझे अभी फ़ोन कर रहे हैं, वो अपने लाइन ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है इस खबर का, और क्योंकि प्रोग्राम का भी, और इंशाल्लाह जल्द आपके साथ से मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह जल्द Wednesday evening between hours of 8 and 11, where we're going to be having a party in the studio as always. Or once again, thank you very much for all your love and your support. जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आपको पता है वो कौन है, और फर्दन फर्दन बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वो खूबसूरती है और सबसे बड़ी चीज़ है, वो हमेशा कहता हूँ कि इंसानियत है, और आपने मेरा साथ दिया, एंड यू नो व्हाट, थैंक यू वेरी मच, और मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते ऑन बैक टू नॉर्मल वेंसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स ऑफ 8 एंड 11। टेल योर फैमिली, टेल योर फ्रेंड, टेल योर कोलिग्स, फावेज खान इज बैक ऑन लाइव कॉल्स में, और माशाल्लाह और सुंदर रेडी पे, और जो आने वाला दिन आने वाला है, और जो वक्त आने वाला बिल्कुल भी स्मशिंग द एयरवेज, और इफ़ यू वांट टू कम ऑन एयरवेज वेल, यू आर वेलकम टू डू सो एज वेल ऑन द फ्यूचर प्रोग्राम विच गोना बी वेडनेसडे बिटवीन आवर्स 8 एंड 11, ऑन वेडनेसडे एंड संडे बिटवीन 8 एंड 11, एंड दैट आई विल बी ईगली वेटिंग मी। अल्लाह हाफिज़ एंड शब खैर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।